मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक सुबह के 5:36 और 35 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, और भोर सुहानी में हम एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं। और अगर हम अपने स्टूडियो की खिड़की से देखें तो धूप हल्की हल्की सूरज निकलने लगी है, और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। इस वक्त जब आप इसको देखते हैं सुबह की रोशनी, तब ऐसा लगता है कि ये दिन बेहद प्यारा बहुत ही खूबसूरत है। और एक नई उमंग के साथ आप अपनी जिंदगी को आज के इस नए सफर पर लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी गमों के बादल छा जाते हैं, लेकिन जो लोग हर हाल में मुस्कुराना सीख लेते हैं वही जिंदगी की असली फलसफे को समझ पाते हैं। कहते हैं मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की जीनत नहीं बल्कि दिल की ताकत भी होती है। ये न सिर्फ हमारे अपने हौसलों को बुलंद करती है बल्कि दूसरों के दिलों में भी उम्मीद की शमा रोशन करती है। जब हालात मुश्किल हों तब भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही असली कामयाबी है। जिंदगी में हमें जिंदगी हर रोज एक नया मौका देती है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने ख्वाबों को नई परवाज देने का। इसलिए मायूसी को अपने करीब मत आने दीजिए और उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखिए। आज का ये अगला बेहद खूबसूरत नगमा इसी पैगाम को अपने

जगजीत सिंह साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म राही से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में मैं हूं आपके साथ फिरोज। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल सफर है, एक सफर में कभी आसान राहें मिलती है तो कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर तरफ इम्तिहान नजर आते हैं, मगर कामयाब वही होते हैं जो हालात से घबराते नहीं बल्कि अपने हौसलों को और बुलंद कर लेते हैं। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि उसके जज्बे, सब्र और हिम्मत से होती है। जब मंजिल दूर लगे, रास्ते वीरान दिखें और दुनिया साथ छोड़ती महसूस हो, तब अपने दिल की आवाज सुनिए, वो आपको आगे बढ़ते रहने का हुक्म देती है, वो आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जिंदगी का पैगाम भी यही कि रुकना नहीं, थकना नहीं बल्कि अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना है। हर ठोकर एक सबक है, हर मुश्किल एक शिक्षा और हर संघर्ष एक तक। इन्हीं खूबसूरत जज्बों को अपने सुरों में समेटे हुए हैं अगला ये नगमा फकीरा फिल्म का। ये जोश और हौसले से भरपूर गीत अपनी दमदार आवाज से सजाया है महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में उम्मीद की शमा रोशन करें, हिम्मत को अपना हमसफर बनाएं और हर रुकावट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का हौसला जुटाएं। मंजिल उन्हीं के कदम चूमती हैं जो सफर की मुश्किलों से डरते नहीं, चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचने का यकीन बनाए रखिए इस नगमे के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 5:53 और 44 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं इस वक्त आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़े कि आज प्रातःकालीन सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुरति। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, जिसमें आप सुन पाएंगे बालकांड भाग 97। 6:55 का वक्त होगा संस्कृत में समाचारों का और 7 बजे एक बार फिर से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। और 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का।

0: और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे। और 8:45 पर वक्त होगा म्यूजिकल दिल लगी का, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुरती जिंदल। अब वक्त हो रहा है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में

0: भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Banga Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. That decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jayashankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं और भगवान का नाम लेकर एक प्यारी सी शुरुआत करें। तो मिलकर कहते हैं जय श्री राम, और इस भजन के साथ करते हैं अर्पण की शुरुआत।

आदाब सामीन, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिचरवार है। साका संवत 1948 ज्येष्ठा महीने की 30 तारीख मुताबिक 20 जून 2026। सुबह के 6:30 और 24 सेकंड हो चुके हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सईद नवाज़ शरीफ।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीटर व्यू 268.18 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय 6:35 होने वाले हैं। पेश है प्रोग्राम सुबुगाही।
1: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम सुबुगाही अजुक शुमार है चेस तुंदिस खदमत संदर हजर। वलियो प्रोग्राम उक दस्तलो تلاوت کلام پاک تا امیوک ترجمه بوزنسی.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया।

0: companies and borrowers, questioning the manner in which large loan defaults are being settled. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohan observed that public money collected from taxpayers is being lent through banks, but effective efforts are often not made to recover these dues. The court said that it was concerned about the misutilization of public money, which should have been spent for the welfare of people. In cricket, the third and final ODI between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. And that is the end of this news bulletin.
1: स्टेशन है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय एक वक्फे के बाद समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा जरा पैकेट दिखा। ओए ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1-800-112100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
9: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
10: हर लेन देन अब है आसान।

0: शरीयत का एहतराम सिखाता है और यही पैगाम आज भी हमारे लिए मशाल रहा है।
1: नवाज, इसी रूहानी फिजा में आइए, अपने दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर करते हैं और समात फरमाते हैं ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: मॉर्निंग लाइव शो
1: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: पयामे सुबह
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। प्रोग्राम है पयामे सुबह। मैं हूँ सैयद नवाज शरीफ
3: और मैं रशीद निजामी। नवाज, देखा जाए तो हर सुबह अपने साथ सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती बल्कि दुनिया भर में बिखरी हुई बेशुमार इंसानी कहानियों की एक नई किस्त भी लेकर आती है
2: जी।
3: कुछ लोग अपने घरों में सुकून से जागते हैं और कुछ ऐसे भी हैं नवाज जिनके लिए घर सिर्फ एक याद बन चुका है।
2: और शायद यही एहसास हमें इंसान होने का सबक देता है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि दूसरों के हालात पर भी नजर रखें, उनके दुख और उम्मीद को भी महसूस करें।
3: बिल्कुल सही नवाज। आज भी हम गुफ्तगू करेंगे जिंदगी, माशरे और उन मसाइल पर जो बराह रास्त इंसानों से जुड़े हैं, क्योंकि सनीचर को हमारा थीम रहता है इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक
2: जी। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी मनाया जा रहा है, इसलिए हम कुछ लम्हे उन लोगों के लिए भी वक्फ करेंगे जो हालात के हाथों अपने घरों और अपने इलाकों से दूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं।
3: बिल्कुल। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में होंगे खूबसूरत नगमे, मजबूत बातें और जिंदगी के मुख्तलिफ रंग। अपने सुनने वालों को यह भी बता दें कि आज चूंकि हमारा थीम रहता है इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक, अपने सुनने वालों को ये बता दें कि आज हम एक दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं 10:30
2: जी,
3: क्योंकि उस वक्त एक मेहमान हमारे साथ होते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं ना, आप हैं प्रोफेसर तारिक अहमद चालकू, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड डीन स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला। और नवाज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम और टेक्नोलॉजी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने क्या कुछ असर डाला है तालीमी मैयार पे।
2: और ये दोनों मौजू हम कह सकते हैं, तालीम और टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर जो है इसके असरात भी रहते हैं, चाहे वो मस्बत हो या फिर मनफी हो।
3: तो प्रोफेसर साहब बताएंगे तो। और तमाम सुनने वालों से ये सीधा है कि उस गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा, सबके लिए उस गुफ्तगू में कुछ न कुछ जरूर होगा। फिलहाल आपके लिए ये नगमा, उम्मीद करते हैं कि नवाज भी पसंद करेंगे और बाकी सुनने वाले भी।
2: बिल्कुल।

यह आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन है और प्रोग्राम जारी है पयाम सुबह। मैं हूँ सैयद नवाज शरीफ और मेरे साथ है रशीद निजामी। रशीद सुबह कात वछे तिमन अशखासन मुतल्लिक यम घर नबर रोजान छे मजबूरन रोजान छे तो बस इतन समाज क्या छे समझान या क्या छे इस करन मगर तत सुत सुत यम सातन से युहुद घर यवान छे कोता मुश्किल आ तिंद खतरा आसान तिमन अशखासन खतरा आसान यम घर नबर रोजान छे मजबूरन रोजान छे पन्ने घर खतर रोजान छे कमावन खतर रोजान छे मगर यम सातन तिम पत घर यवान छे तिमन छु सु मोहब्बत।

0: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस्ब शेख तजम्मुल। गोड़ अख नजर खास खास खबरन हुंजन सुर्खियन पेट। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2400 करोड़ रुपये मालियत माली मुराद राह तकसीम। 500 करोड़ रुपये हंद लागत सी कोल चिनो पे अमोनियम नाइट्रेट तैयार करन वोल मुल्क गोडन कमर्शल प्लांट उड़ीसा मज आज कायम कर। सुप्रीम कोर्टन वोनमुत फुटपाथस पे पकन हक चक बुनियादी हक तो ये नाफिज कर बाप इनजबती अदार कम कर जोर दुत। तो लेबनानस पे इजरायली हमलस मज अकवु नफर जाम भाग सपदन पत अमरीका तो ईरानस दरमियान अमन कथबात हुंद नो दौर मुलतवी सपदमुत। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन के रात नई दिल में एक तकरीब दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2400 करोड़ रुपये मालियत माली मुराद तकसीम। पीएम वीबीआरवाई किस निफाजस तहत यह मुराद तकसीम करुन अके अहम मील कन हैसियत थावान यस रोजगार सित मुनसलिक अक अहम तरगीबती स्कीम छे तो यमुक मकसद रोजगारिक मौके पैद करनस मज बुछ अनुन रोजगार फराहम करनस मज हुरर तो मुख्तलिफ शोबन अंदर समाजी सिक्योरिटी वसत दिन छु। अत मौके पर खिताब करान वोन वजीर अजमन जे अकवुहमी सदी में सपदन तिमन मुल्कन अंदर मौके पैद यम हुनरमंदी पोचर दिन इख्तराकारी मज करन हुरर तो बेथावन क्वालिटी हिंद थद मैार कायम। तमो वो भारत छु ब्रो कुन यथ कैदान किरदार अदा कर बाप तैयार। नरेंद्र मोदियन वो इन वाले वर्यन मन भारतीय नौजवान आलमी तरक्की मज हुरर करनस तो इख्तरा तो कारोबारस वुजार दिनस मज अक अहम किरदार अदा।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: वजीर अजमन वोन पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हुन मकसद चु गड़ने की फिरे रोजगार हासिल करन वाल बाख्तियार बनावन बे नौजवानन तो सन्नस दरमियान अके कदलच काम करन। तमो वोन यराद हुनरमंदी बे भारतीय नौजवान सलाहियत करन विकसित भारत वत बदि।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिकोर वर्चुअल वसील अथ तकरीब अंदर शिरकत। अथ मौके पर उन पनिन ख्याल बावान लेफ्टिनेंट गवर्नर जे अमे स्कीम सित मेले जम्मू कश्मीर किन सास बदन नौजवानन एकिस महफूज तो प्रजलविनिस मुस्तकबिल सित जोड़नुक मौके।
2: ये विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है, ये उस भारत की परिकल्पना है जहां औपचारिक रोजगार सामान्य व्यवस्था बन सके और सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, प्रत्येक नौजवान अपने सपनों को पूरा कर सके। मैं जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने इंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कर्मचारियों को औपचारिक रूप से नियुक्त ही नहीं करते बल्कि उनके भविष्य निधि में भी योगदान करते हैं और एक कानूनी दायित्व जो आपका है उसका भी पालन करते हैं। कर्मचारियों को सम्मान सुरक्षा और भविष्य की आशा भी इससे मिलती है।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन वैत लद्दाख किस त्रेन दोहन हिंदिस दौरस पे रात लद्दाख ये तिम पगह योगा किस बैन अवी दोह किस मौक पे मुनद।

सुबह आज रात के 8 बजे प्रोग्राम पेश होगा वादी की आवाज। रात के 8:30 पर आप सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। रात के 9:30 पर जो प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। प्रोग्राम की मेहमान है डॉक्टर नाजिमा कादरी। मौजू होगा डिग्रीज एंड कोर्सेज इन क्राफ्ट डेवलपमेंट। प्रोग्राम की मेजबान है तनवीर ताहिर। रात के 10 बजे आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे तो हंस फरमाइश। प्रोग्राम की मेजबान है रशीद निजामी। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे आप सुनते हैं मकामी अखबारात की सुर्खियां। प्रोग्राम न्यूज रील पेश होगा सुबह 9:30 पर। सुबह 9:45 पर आप कश्मीरी गजलें सुनेंगे। सुबह 10 बजे आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे सूफी सदा। आज का प्रोग्राम हजरत ख्वाजा हबीबुल्ला नौशेरी के मुतल्लिक है। तहरीर व पेशकश गुलाम रसूल आखून। लाइव इंटरेक्टिव शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निजामी और साइकर सलीम। मेहमान है प्रोफेसर तारिक अहमद चाकलो। मौजू रहेगा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। छक्कर तोड़ो आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। जिसमें अब्दुल सलाम भट्ट कोयमू और साथी पेश करेंगे कलामी शमस फकीर। बज में निस्वा आरस्ता होगी दोपहर 12:40 पर। फौजी भाइयों के लिए पहली निशस्त का प्रोग्राम पेश होगा दोपहर 1:10 पर। फिल्मी नोग में आप सुनेंगे 1:40 पर। दिन के 2:30 पर छकरतुरु सुनेंगे जिसमें अब्दुल सलाम भट्ट कोयमू पेश करेंगे कला में गुलाम हसन मिसगर। फौजी भाइयों के लिए दूसरी निशस्त का प्रोग्राम पेश होगा दिन के 3:00। पहाड़ी प्रोग्राम पेश होगा सुपहर 4:00 और शीना प्रोग्राम 4:30 पर। सुपहर 5:00 आप समाप्त करेंगे गोष्ठी प्रोग्राम गनी वाइन हिंद खतर। ये प्रोग्राम पेश होगा 6:05 पर। हालात हजा का प्रोग्राम शरबीन आप सुनते हैं शाम 7:00। समीन ये थी अब के बाद आज हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 7:59 हो चुके हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20

0: जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: We have been able to achieve that in the first.
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: They are all designed in India now.
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
4: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीटरव्यू 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: प्रोग्राम है पायम सुबह और मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज मेरे साथ हैं नवाज शरीफ। नवाज
0: जी,
1: आइए तारीख के औराक पलटते हैं और देखते हैं कि आज के दिन दुनिया में कौन से अहम वाकयात रोनुमा हुए हैं, किन अजीम शख्सियात ने जन्म लिया और किन नामवर हस्तियों ने इस दुनिया से रुखसत ली।
0: जी,
1: पहले एक नजर चंद अहम वाकयात पर।
0: रशीद साहब, 1837 ईस्वी में आज के दिन बरतानिया की मलिका विक्टोरिया तख्त सल्तनत पर जलवा फरोज हुई। उनका दौरे हुकूमत बरतानवी तारीख के अहम तरीन अदवार में शुमार किया जाता है।
1: 1963 ईस्वी में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वाशिंगटन और मॉस्को को मिलाने वाली मशहूर हॉटलाइन कायम करने का मुआहदा हुआ आज ही के दिन, ताकि हंगामी हालात में दोनों ममालिक के रहनुमा बराह रास्त राबिता कर सकें।
0: जी, 1991 ईस्वी आज ही के दिन जर्मन पार्लियामेंट ने तारीखी फैसला करते हुए दारुल हुकूमत को बोन से बर्लिन मुंतकिल करने की मंजूरी दी।
1: अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 20 जून को आलमी योम महाजरीन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के बेघर और पनाहगुजीन अफराद के मसाइल और उनकी अहमियत और इस्तेकामत को उजागर करना है।
0: और अब जिक्र करते हैं उन शख्सियात का जिनकी पैदाइश आज के दिन हुई।
1: 20 जून 1960 ईस्वी, भारतीय आइकॉनिक ड्यो कॉलोनियल कजिन्स के लेस्ली लेविस पैदा हुए। आप एक बासलाहियत गुलोकार, मूसीकार और प्रोड्यूसर हैं।
0: जी, तेलंगाना के मारूफ सियासतदान एन उत्तम कुमार रेड्डी आज के दिन पैदा हुए 1962 ईस्वी को।
1: 1949 ईस्वी आज ही के दिन आलमी शोहरत याफ्ता मूसीकार और गुलोकार अमेरिका के लियोनल रिची पैदा हुए, जिन्होंने मूसीकी की दुनिया में बेशुमार मकबूल नगमे पेश किए।
0: और अब उन शख्सियात का जिक्र जो 20 जून को ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं।
1: 1837 ईस्वी में बरतानिया के बादशाह विलियम फोर्थ का इंतकाल हुआ, जिनके बाद मलिका विक्टोरिया तख्त नशीन हुई।
0: केरला के 4 मरतबा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे एम ए कटप्पन आज ही के दिन 2023 को वफात पा गए।
1: नवाज, 20 जून हमें याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ वाकयात का मजमुआ नहीं, बल्कि इंसानों की जद्दोजहद, कयादत, इल्म और खिदमत की दास्तान भी है।
0: जी,
1: आइए इन शख्सियात और वाकयात से सबक हासिल करें और अपने माशरे को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें।
0: जी बिल्कुल।

0: बीच में ड्राई रहता है, तो आप देख लेना कितना मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और थोड़ा अनकम्फर्ट भी फील होता है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में बारिश हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में भी रह रहा है।
1: अब देखिए अभी शाम को तेज हवाएं चलती हैं और किसी इलाके में आज हवा चली, दूसरे इलाके में दूसरे दिन हवा चलती है, तेज बारिशें होती हैं, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा?
0: अभी जो ऑलरेडी फोकस्ड है 22 तक ये रहेगा और बीच में उसके बाद जो है 23, 24, 25
1: जी
0: ये 3 दिन जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली ड्राई रहेगा
1: ओके।
0: और फिर भी ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, लाइट रेन, थंडर शावर कुछ एक आइसोलेटेड पॉकेट्स के अंदर ऐसे रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कंडीशन आर जनरली स्टेबल एंड जनरली ड्राई वेदर इज एक्सपेक्टेड एट मेनी डिस्ट्रिक्ट।
1: डॉक्टर साहब अभी भी दूर देहात में कई गांव में धान की पनीरी मुकम्मल तौर पे पूरी तरह से किसानों ने नहीं लगाई, उनके लिए क्या आप एडवाइजरी कहते हैं?
0: अभी फार्मिंग एक्टिविटी कंटिन्यू रखें, खासकर जो प्लांटिंग का काम हो, ट्रांसप्लांटिंग का काम हो या कहीं पे फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, ये सारी चीजें कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे मेजर रेनफॉल या कोई ऐसे कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन का फोकस नहीं है।
1: अच्छा,
0: और जो स्प्रे का काम है, खासकर अभी स्प्रे का काम भी काफी ज्यादा उरूज पे चल रहा है,
1: जी।
0: तो जो स्प्रे का काम है वो जो है खासकर सुबह सवेरे या मॉर्निंग आवर्स में ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद दोपहर जैसे बारिश होती है तो उससे कम अज कम नुकसान हो खासकर किसानों।
1: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।
1: ये थे डायरेक्टर मेट डॉक्टर मुख्तार अहमद।
2: रशीद साहब, हमने इससे पहले बात की थी कि आज के दिन जो है कौन कौन से वाकयात हुए हैं या फिर कुछ शख्सियात के हवाले से भी हमने बात की थी
1: जी।
2: तो एक चीज़ यहाँ पे जो है मेरे जहन में आई और हम सबको वो याद रखनी चाहिए कि हर जो है शुरुआत का अख्ताम होता है और हर जो है वो कमाल का जवाल भी होता है, तो इस चीज़ को हमेशा जो है जहन में रखना ज़रूरी बनता है।
1: बिल्कुल सही कहते हैं कि देखिए जो चीज़ दुनिया में है, कहते हैं कि हर शय फानी है, कोई चीज रहने वाली नहीं है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो है आपके आमाल, आपका अमल जो आप इस दुनिया में आकर करते हैं
2: जी।
1: ये चीजें वो हैं जो रहती दुनिया तक रहेंगी
2: जी। और कोशिश यही करें कि आप दूसरों के साथ जो है अच्छा करें और जहां पर भी हो सकता है, जितना भी आपसे हो सकता है, तो दूसरों के लिए जो है वो अच्छाई का सबब बने और उनके लिए मुश्किलात का सबब ना बने।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
3: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
4: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
5: यारो वन बार यारो वन।
3: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
4: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुबह।
6: सुनो सजना
4: पयामे सुबह।
1: नवाज
2: जी,
1: खेलों के शायकीन को बता दें कि आज अब भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा
2: जी।
1: पहले मैच और दूसरे मैच में भारत ने अच्छी तरह से कामयाबी हासिल की, पहला मैच 7 से, दूसरा मैच 170 रन से जीत लिया
2: और कोशिश करेंगे क्लीन स्वीप करने की।
1: बिल्कुल। और आपको बता दें कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, 11:30 तक आप ये शो समाप्त करते हैं पयामे सुबह। और नवाज, घड़ी का इशारा जो है वो ये कह रहा है कि 8:30 होने वाले हैं
2: और खबरों का वक्त है।
1: बिल्कुल, खबरनामा हम आकाशवाणी दिल्ली से पेश करते हैं आप सबके लिए, चंद ही लम्हों में आप सुनेंगे खबरनामा।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए

0: ते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तियारी तौर पर सरगर्म हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर कुतबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव्वो पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अज़्म को मजीद तकवीत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
0: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में NTA ने कहा कि ये इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनक्किद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीक़ेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निजाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौयत के दीगर इकदामात इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल SKM मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ इस्लाहात की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.8 एक मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए समाप्त करें आज की सुर्खियां।
1: आज की सुर्खियां।
2: तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब सामीन, आज शनिवार है, 4 मुहर्रम 1448 हिजरी बमुताबिक 20 जून 2026। आज के मकामी अखबारात की सुर्खियां लेकर हम हाजिर। मैं हूं सैयद नवाज शरीफ और मेरे साथ है
3: रशीद निजामी। हुकूमत रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए पुरअज़्म, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की।
0: इसराइली फौज की जनूबी लेबनान पर शदीद बमबारी। अमरीका ईरान मुजाकरात मुलतवी। आबनाए हरमोज खोल दी गई। जंग के खात्मे के इब्तदाई मुहादे को खतरा लाहक।
3: भारतीय दिफाई शोबे में खुद इन्हेसारी की तरफ तेजी से रवा, वजीर दिफा। 3 लाख करोड़ की दिफाई पैदावार और 50,000 करोड़ की दिफाई बरामदात का हदफ वक्त से पहले हासिल करेंगे।
0: एक और सुर्खी है, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर एक और बड़ी पेशरफ्त। रामबन बानीहाल सेक्टर के कुछ पुरखतर मकामात को बाईपास करने की तैयारी आखिरी मराहिल में है।
3: बैन अक्वामी योम योगा पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद। वजीर अजम कोलकाता, LG श्रीनगर और नायब सदर लेह में शरीक होंगे।
0: नए फौजदारी कानून के तहत तहकीकात और सजा, टेक्नोलॉजी के लिए फाल इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, वजीर दाखिला।
3: फायर सेफ्टी NOC जारी करने की इवज रिश्वत लेने का इल्जाम। फायर सर्विसेज एहलकार के खिलाफ चार्जशीट पेश, 4 एहलकार मुअत्तल।
0: अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में मौसमी इंतबाह, 22 जून तक बारिश और तालाबारी का इम्कान।
3: हिंद पाक सरहद के करीब असलाह स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश। AK-47 समेत 26 हथियार बरामद, 1 गिरफ्तार सिक्योरिटी फोर्सेज।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विकसित भारत रोजगार योजना को तारीखी पेश रफ्त करार दिया। स्कीम नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने और खित्ते में बावकार रोजगार के नए दौर की अलामत है, मनोज सिन्हा।
3: फ्रांस में वजीर आजम मोदी का भारतीय बरादरी से खिताब। भारत दुनिया का काबिल एतमाद शराकत दार बनकर उभरा है।
0: रिवायती जंगी हिकमत अमली आज भी इतनी ही अहम है जितनी 1947 में थी, राजनाथ सिंह। दिफाई वजीर का कहना है कि खुद इन्हसारी और मकामी पैदावार कौमी सलामती के लिए नागजीर है।
3: सुर्खियां अभी और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा।
4: अनन विजी वनोमो होंडा कंपनी हूँ ब्रश कटर अनतव तुम सारी ब्रश कटर हिवी आसान
5: ये बूझन तीनमे
4: होंडा कंपनी हूँ ब्रश कटर मजबूत पायदार तो गारंटी सान मिलान अत ब्लेड तो रॉड कंपनी हजे आसान पेट्रोल खर्च बाको खुद सठा कम ये सारे बागस जंडा तो कछन नाल वोलमुत ये करह साफ
5: होंडा ब्रश कटर मरम बापत JK स्टेशन मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
6: सेहत चु हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो चु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज चु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान, मगर वन चु अत हल JK सेहत ऐप। ये चु तुहुंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूर तो ख्याल चु थावान। ये ऐप चु एंड्रॉइड तो iPhone दोश्वनी मज दस्तियाब। यात ऐप मज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक की मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिस जानकारी, बेचे आसित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अक साध शहरी छो, JK सेहत चु सारनी सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।
8: रेडियो एक ऐसी आवाज

0: आज की सुर्खियां।
1: ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर। कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: प्रोग्राम है पयाम सुबह, जिसे आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सैयद नवाज शरीफ। नवाज, चूंकि ये जो हमारा वक्त रहता है 9:10 से 9:20 तक, इसमें हम एक गजल पेश करते हैं
1: जी,
0: तो आपने कोई गजल सिलेक्ट करके रखी है क्या?
1: जी जी बिल्कुल, गुलाम अली की आवाज़ में एक खूबसूरत सी गज़ल है और उस गज़ल को हम सामीन के लिए पेश ज़रूर करेंगे।
0: जी ज़रूर पेश करें और उसके बाद हम और बात करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.8 एक मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:30 और 30 सेकंड हुए हैं।
1: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रीड।
2: समईन आदाब, न्यूज रील का ताज़ा शुमारा लेकर मैं शबीरुज़्ज़मा। हमारे आज के शुमारे में वज़ीर आज़म ने फ्रांस में भारत को टेक्नोलॉजी के आलमी मरकज के बतौर किया पेश। टेक्नोलॉजी तक हर किसी की रसाई।

0: तीन जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों और इंतजाम को दी जा रही है हतमी शक्ल। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों गाइड बुक जारी। वज़ीर-ए-आला का गांधरबल और बांडीपोरा अजला का दौरा, अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का किया आगाज और चीफ सेक्रेटरी की टेक्नोलॉजी पर मबनी सर्कुलर फ्रेमवर्क को बामल लाने की ताकीद। अब पेश है मौजूदात की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में विवा टेक 2024 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिरात और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के बतौर पेश किया है। अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी तक हर किसी की रसाई यकीनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आलमी इख्तिराकारों को भारत के साथ बाहम मिलकर काम करने की सलाह दी।
1: दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन के दौर से गुजर रही, ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।
0: G7 लीडरों ने आलमी इस्तेहकाम सलामती से मुतलिक इश्तराक को बढ़ावा देने, नीज मुनज्जम जराइम का मुकाबला करने के लिए मुतअद्दिद एलामिये इख्तियार किए हैं। एक बयान में इन लीडरों ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इस मुआहदे को इलाके में तनाव कम करने का एक अहम मौका करार दिया है। G7 ने एक और एलामिया के जरिए से ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का अजम दोहराते हुए कहा है कि ये बिद्दत कौमी सलामती, सेहतियामा और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसे निकात के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। यात्रा की सलामती के लिए यात्रा के दोनों रास्तों पर कसीर रुखी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं और इंतजामिया यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए लाजमी इकदाम कर रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यात्रा के मुख्तलिफ अमूर की निगरानी करने के लिए मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले 63 अफसरों को तैनात किया है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस साल की यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब पर श्री अमरनाथ जी यात्रा गाइड बुक के 15वें एडिशन का इजरा किया। गाइड बुक का रवां साल का एडिशन यात्रियों के लिए एक अहम मालूमाती रहनुमा के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें सहूलियात, हिफाजती हिदायत, यात्रा के जवाबित रजिस्ट्रेशन के तरीकेकार, तिब्बी सहूलियात, रिहाइश के इंतजाम और हंगामी राबता नंबरों समेत लखनपुर से गुफा तक दोनों रास्तों से मुतलिक जामे मालूमात फराहम की गई है। दरी असना सेहत व समाजी बहबूद की वजीर सकीना ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। न्यूज रील के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी अरेंजमेंट वहाँ जरूरत होते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको प्रायोरिटी में करता है। इस साल भी ऑलरेडी मैंने एक हफ्ते पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग ली है जिसमें मैंने पूरा उनको कहा है कि क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो मेडिसिन रखने की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन लेवल पे क्या क्या नीड है, वो सारी जो है ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। जो हमारे वहाँ से यात्री आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। वो हमारे मेहमान आते हैं और हमारी कोशिश है कि उनके लिए हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहे।
0: वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़रई सेक्टर में बुनियादी ढांचे की तंसीब के साथ साथ आला पैदावारी फसलों की कदर अफजाई के लिए सहूलियात बढ़ा रही है। नुन्नर गांधरबल में महकमा ज़राअत की तरफ से मुनक़द करदा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेवेंडर की काश्त जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली की सिमत में एक नया बाब है।
3: हम अपने किसानों को सिखाएं कि आप यहां कौन सी नई चीज लगा सकते हो जिससे आपकी कमाई जो है कम होने के बजाय हम बढ़ा सकते हैं और जिसमें ना पानी ज्यादा डालना हो, ना दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना हो, और उसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीजों पर जिनमें हमने कोशिश की उनमें सबसे आगे अगर आप देखें तो लैवेंडर आता है। इस दुनिया के कुछ

0: दौरा करके यूटी में कलीदी नौयत के कौमी शाहराओं के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर करके इसके मुख्तलिफ मकामात पर हो रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 बरसों में जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 700 किलोमीटर लंबी शाहराएं मुकम्मल की गई हैं, जबकि 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,300 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम शद्दोमद से जारी है। वादी में इन दिनों मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने के चलते आजादारी और हुसैनी मजालिस का इनेकाद जारी है, जिनके दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसी मुकद्दस महीने के दौरान करबला के मैदान कारजार में शहीदों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक को सदाकत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया था। मुहर्रमुल हराम की फजीलत और बरकत बयां करते हुए मौलाना मियाँ आदिल नूरानी ने न्यूज रील के साथ बात करते हुए कहा,
1: मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं बल्कि तारीख के अजीम शान हक व बातिल के मौके की निशानी भी है। यह महीना शहादत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु के फलसफे को उजागर करता है। गमे हुसैन और शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु के मकसद व अहमियत का पैगाम भी आम करता है। दुनिया का हर मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का रंजो गम अपने दिल में रखता है, मगर कम ही ऐसे हैं जिन्होंने इस मौके का असल मफहूम व मकसद समझा और फिर इस मकसद को जिंदा रखने की जिद्दोजहद की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अनु ने यजीद से जंग अपनी जाती मुफाद के लिए या खानदान की बका के लिए नहीं की थी, बल्कि इस्लामी हुकूमत में बदलते रुझानात को रोकने के लिए की थी।
0: जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और शुमाली जोन कल्चरल सेंटर पटियाला नीज आल जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा के बाहम इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्कदा सांस्कृतिक यात्रा सिंधु दर्शन फेस्टिवल में भारत की सकाफती गुनागोनियत का जश्न मनाया गया और मुनशियात के खिलाफ मुहिम को मजबूत किया गया। मुल्क भर में इन दिनों खेत बचाओ मुहिम शद्दोमद से जारी है। अभियान के तहत जरी जमीन की जरखैजियत और सेहत बरकरार रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में किसानों में जामे बेदारी पैदा की जाती है। जम्मू कश्मीर में भी इस अहम अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं और किसानों को जरी जमीन को तहफ़ बख्शने से मुतलिक इख्तराई इकदाम से रोशनास कराया जा रहा है। इस हवाले से महकमा ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर सरताज अहमद शाह ने न्यूज रील से बात करते हुए कहा,
2: इस पूरे अभियान में जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉइल हेल्थ एनालिसिस और इसकी सॉइल टेस्टिंग करके जमींदारों में ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको समझाना आपको किन अज़ा की जरूरत है इन खेतों में, वही उसी तनासुब से रेशो के हिसाब से वो खादें डाली जाएंगी और नेचुरल फार्मिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जहां कहीं भी उनकी कमी रही है उन सारे स्कीम्स को सैचुरेट करना, जैसे कि पीएम किसान, केसीसी और जो भी हमारे ये जमींदार भाई हैं, इनको हम हर जगह यही समझाते हैं कि वो कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करें।
0: गुज़िश्ते दिनों पार्लियामेंट के संविधान सदन में कौमी सतह का विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 मुनक्कद हुआ, जिसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया, जबकि इस मौके पर नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। इस तकरीब में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाली 757 यूनिवर्सिटियों और इदारों के नौजवान नुमाइंदों ने शिरकत करके विकसित भारत 2047 के नजरिए से मुतल्लिक अपना अपना नुक्ते नजर पेश किया। इसके साथ ही न्यूज रील का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। निगरानी आला अशफाक शाह, तरतीबो तहजीब कोशिकी कश्यप, मुधीर और मेजबान शबीरुज़्ज़मां, रिकॉर्डिंग एडिटिंग आसिफ बशीर, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: जो आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन मीडियम व्यूज 8.8 मीटर एफएम 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन मलिकिया कशर गजल बोजो।
4: ज़रूर नवाज के गजल करो पेश तो पन्न बोजन वाले वनो ये थे जी विकनस प्रोग्राम पायाम सुबह ये प्रोग्राम छो तु बोजान सुबह दह मिनट पे 7 बज पे दुचन साढ़न कहन बजन तम तो इस वक्त विकन आसान यह आसान मौसी हूं वक्त इत कन नवाज सबन वोन जी गजल बोजो गोडन क्या करो पेश नवाज सब
3: अवलन करो इस पेश मुनीर अहमद मीर ने आवाज मज कलामी फाजिल कश्मीरी।
4: फाजिल कश्मीरी उजन छु फाजिल कश्मीरी छु तिमन शायरन मज शुमार यमन अस सफ अवलक शायर तसव्वुर करान छ।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का ही

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोझान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नशर सब्दान।

0: हाँ तो समय ना, आपने नगमा सुना सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और मैंने कहा था कि नगमे के उस पार हम आज के मेहमान से मिलते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, मेहमान के सब अब मुलाकात होगी। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर तारिक अहमद चालकू, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड डीन स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला। चालकू साहब, वेलकम टू द पयाम सुबह।
1: थैंक यू सर।
0: कैसे हैं आप?
1: ऑल ग्रेट सर, आपकी दुआ।
0: आज लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपके साथ।
1: बस आपने बुलाया तो हम आ गए।
0: आज जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और दिलचस्प टॉपिक है। दिलचस्प इस लिहाज से कि आज जब भी कोई बात करता है, अगर वो 10 बातें करता है, 8 बातें इसी टॉपिक पे होती है। वो है कि तालीम और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब हम बात करते हैं ना इल्म की शम्मा जब टेक्नोलॉजी की रोशनी उसको मिलती है ना, इल्म को, तो तालीम के नए उफक खुल जाते हैं।
1: सही।
0: लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको, जब सिर्फ हमारी रसाई कंप्यूटर तक थी
1: जी।
0: और कंप्यूटर तक रसाई सारे लोगों की नहीं थी
1: जी।
0: क्योंकि एक ऐसा आला था जो सबके इख्तियार में नहीं था
1: जी।
0: जो आसुदा हाल लोग थे वही कंप्यूटर तक जा सकते थे। लेकिन आज आपके हाथ में मिनी कंप्यूटर है, छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड मैन तक कंप्यूटर आपके हाथ में है। अगर हम तालीम की बात करें तो चालकू साहब, पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो यही है कि आप क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी और तालीम का रिश्ता आपस में कितना मजबूत हो चुका आज, फिर हम पुराने दौर में जाएंगे।
1: शुक्रिया राष्ट्र साहब। और जब हम तालीम की बात करते हैं, तालीम हमारे आज के दौर की कोई नई बात नहीं है। जब से इंसान इस ज़मीन पर रह रहा है तो हर सिविलाइजेशन की अपनी एक ट्रैक है कि उसने तालीम किस तरह, किस लिहाज की, कब और कैसे हासिल की। सिर्फ जो तब्दीली आई कि जब हमने इंडस्ट्री में देखा कि इंडस्ट्री में कुछ खास तरह के प्रैक्टिसेस, कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस, कुछ इंजन्स, कुछ मोटर्स, इनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो हमने इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक नाम दे दिया
0: जी।
1: और पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आप देखेंगे, जब यूरोप में स्टार्ट हुआ तो जो लोग अपने हाथों से कपड़ा बुनते थे उन्होंने पावर लूम का इस्तेमाल किया, जो बैलगाड़ी और घोड़े पर चलते थे उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हर तरह की जो वो प्रैक्टिसेस बदलने लगी, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। और तालीम कोई एक नई बात नहीं है, ये तब भी थी, आज भी है, और इस पर भी उसका असर आने लगा।
0: बिल्कुल सही।
1: अब तालीम जिस तरह से आप देखें कि किसी जमाने में एक मिट्टी पर इंसान लिखा करता था, वही इंसान आज अपने हाथ में एक मोबाइल डिवाइस लेके लाख 1.5 लाख बच्चों को एक टाइम में पढ़ा सकता है थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी।
0: सही।
1: और वही इंसान आज अपने क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करता है जिसकी एक्सेस सिर्फ उस कंटेंट पर नहीं है जो वो बोल रहा है, उसकी एक्सेस उस कंटेंट पर भी है जो दुनिया भर में डिफरेंट सर्वर्स पर मौजूद है, और उसके पास जो वैरायटी ऑफ कंटेंट है वो बढ़ चुकी है। अब ये डिवाइस सिर्फ उस उस्ताद तक महदूद नहीं रहा, जो बच्चा, जिसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर पर बैठ के कोडिंग सीखा करे, या जो कंप्यूटर पर बैठ के कुछ देर पहले तक एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस में काम करता था या एक्सेल में काम करता था, आज उसके पास हर एक तरह की रिसोर्स अवेलेबल है इसी डिवाइस पर। आपका कहना बहुत बजा है कि कंप्यूटर तक ही हमें महदूद नहीं रहना है। जो इस वक्त कंप्यूटर्स की पेनेट्रेशन है खासतर जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में, वो कोई 45-50% की है, और वो सारे के सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। कुछ डिवाइसेस उसमें ऑफलाइन डिवाइसेस हैं जिसको हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई 25-30% के कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड हैं। जहां अब हम इस डिवाइस की बात करें, इसके ऊपर एक और डिवाइस ने सुपरपोज किया, मॉड्यूलेट किया, जो इस वक्त 90% हाउसहोल्ड्स में है, जिसको आप एक स्मार्टफोन कहते हैं।
0: सही।
1: और

0: आठ खून को फिलिप मिला जब कोविड का वक्त आया, लोगों को जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे, कन्वेंशनल तरीके थे ट्रांजेक्शन ऑफ नॉलेज के, वो बदलने पड़े, क्योंकि ये तीन साल चार साल का जो वक्फा रहा उसमें आपने देखा कि कितना फ्लिप आ गया ऑनलाइन एजुकेशन पर।
1: सही।
0: अब आप इसको लेके चलिए कि स्मार्टफोन की पेनेट्रेशन बच्चों के हाथ में है कि नहीं, और आपको ताजुब होगा कि अगर 90% की परसेंटेज खासकर डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में है, 92-95% पेनेट्रेशन इसकी एडोलेसेंट्स के हाथ में है
1: जी।
0: और ये वही एडोलेसेंट्स हैं जो स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो सीखते हैं। तो अब इस लर्नर की जहां बात करते हैं जिसके हाथ में मोबाइल डिवाइस है, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं कि आप इस लर्नर को कहेंगे भाई तुम क्लासरूम में तो डिवाइस को ऑफ रखो, लेकिन क्या आपकी नजर उसके घर पर है कि जब वो घर पहुंचता है अगर उसके पास अपना डिवाइस नहीं है वो अपने माँ बाप का डिवाइस यूज कर सकता है।
1: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, इस पे प्रोफेसर साहब इस पे हम बात और करेंगे क्योंकि ये बड़ा मैंने कहा कि सेंसिटिव मौजू है। लेकिन जब हम डिजिटल दौर की बात करते हैं तो डिजिटल दौर ने तदरीस और तालीम के रिवायती तरीकों में क्या बुनियादी तब्दीलियां पैदा की हैं?
0: मैं ये कहूंगा कि जो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ये सब चीजें चलती आई हैं। इस वक्त हम एक फेज में हैं जिसको हम एजुकेशन 4.0 का फेज कहते हैं, और इसको कंप्लाइंट किया गया है इंडस्ट्री 4.0 के साथ। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि दुनिया ये चाहती है कि इंडस्ट्री जिसका फोर्थ रेवोल्यूशन इस वक्त चल रहा है, एजुकेशन भी अपने फोर्थ रेवोल्यूशन में आ जाए।
1: जी जी जी।
0: अब इस फोर्थ रेवोल्यूशन में एजुकेशन के पास क्या नया है? वो चीजें नई है जिसमें एक एजुकेटर और जो लर्नर है वो कंप्यूटेशनल पावर का भरपूर इस्तेमाल करके रिसोर्सेज भी एक्सेस कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, और जिस कीवर्ड को हम बार बार सुनते आए हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे देते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे क्या है कि जो मशीनों ने हमसे सीखा आज हम वही चीज मशीनों को वापस मांग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके में, एक कंप्यूटेशनल पावर जिसमें आपको एक काम करने में पहले 20 दिन लगा करते थे, वो लेक्चर आज आपका 20 मिनट में तैयार होगा।
1: सही।
0: वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो रिसर्च प्रोजेक्ट, वो आपका 20 मिनट में तैयार हो सकता है, और ये अब कोई नई बात नहीं है।
1: नहीं, AI देखिए, ये यहाँ पे तो सवालात की बोछार मेरे जहन में आ रही है कि AI, अगर हम AI की तरफ जाएं तो हजारों सवाल मेरे जहन में आते हैं। क्या AI को हम पूरा प्रोसीजर समझें या एक टूल समझें?
0: AI को प्रोसीजर समझें या टूल समझें, इस पर तो डायलेमा है। हाँ। क्योंकि जो लोग इसको अडॉप्ट करके एक प्रोसीजर समझ रहे हैं
1: जी,
0: वो कहीं ना कहीं एक और तरीका जानते हैं कि वो कहीं पकड़े ना जाए जहां इसकी जरूरत नहीं थी, वो ह्यूमनाइज कर देते हैं इसके कंटेंट को, इसके रिजल्ट्स को। AI की एक बात है कि ये आपको एक टूल के तरीके से
1: इस्तेमाल करना है,
0: एक प्रोसेस को फास्ट बना सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
1: रिस्पॉन्सिबल नहीं, वही तो बात है।
0: ये आपके बच्चे को एक काम करके देगा, उसका होमवर्क बना के देगा, उसका असाइनमेंट देगा, उसके पुराने पेपर्स निकाल के देगा। एक प्रॉम्प्ट अगर आज बच्चा लिखेगा, और लिखते भी होंगे, जरूरी नहीं है कि वो अपने टीचर को बताएं, दैट एक्ट एज माय सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड एन एग्जामिनर एंड सेट ए पेपर फॉर मी फॉर क्लास 10th बायोलॉजी एंड कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच वर कवर्ड बाय द प्रीवियस एग्जामिनर्स।
1: बिल्कुल सही।
0: AI टीचर बन गया।
1: बिल्कुल सही।
0: पेपर सेटर बन गया।
1: बिल्कुल सही।
0: और तकरीबन इसकी जो एक्यूरेसी है वो 70-80% हो सकती है।
1: जहां तक मैं तारिक चालकू साहब को जानता हूं, तारिक चालकू साहब एक तारा नजर रखते हैं एजुकेशन पे। आप एक तो माहिर तालीम है ही, दूसरा आपने जो काउंसलिंग सेशंस लिए हैं, जो काउंसलिंग आप करते हैं, उस लिहाज से मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, वो ये कि क्या AI ने एक नौजवान का जहन मफलूज कर दिया? मैं बताऊंगा किस लिहाज से। आपका बच्चा आज जहन में कुछ नहीं रखता है, उसको पता है कि AI से मैं 30 सेकंड में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा।
0: सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि यह आपका एक जाती ख्याल नहीं है, ये एक स्टडी हो गई है। स्टडी में क्या किया गया कि आप एक बच्चे के सामने कंप्यूटर रखिए, उसको बोले जनाब आप जो भी टाइप कर रहे हो ये आपके हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, और दूसरा कंप्यूटर रखिए, उसमें कहिए कि जनाब जो आप टाइप कर रहे हो ये जैसे आप अपनी नजर इधर फेर लोगे तब तक जब तक आपकी नजर है इस पर, ये वहां है कंटेंट, लेकिन एक बार आपने नजर फेर ली ये इरेज हो गया। जो ये पहले टाइप का बच्चा है जिसको पता है कि ये स्टोर करता जा रहा है, वो बड़ा कैलसली, बड़ा रिलक्टेंटली लिखता जा रहा है, इसको पता है कि मैं गलत लिखूं ठीक लिखूं ये स्टोर करेगा। सेम प्लाइट दिस इज स्टडी ऑन गूगल, कि जब इंसान के दिमाग को आज ये पता लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल से रिट्रीव की जा सकती है, वो उस इंफॉर्मेशन

0: को याद रखना बंद कर देता,
1: बंद कर देता, बिल्कुल सही।
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: एक क्राफ्टेड स्टडी है, वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज अमेरिका में हुई है।
1: और मैं आपको पर्सनल अपना मुशाहिदा बताऊंगा, अपना तजुर्बा बताऊंगा। जब तक हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स नहीं थे, तब तक मुझे अपने भाई का टेलीफोन नंबर याद था, मुझे अपनी गाड़ी का लाइसेंस नंबर याद था, मुझे अपनी गाड़ी का नंबर याद था, मुझे रिश्तेदारों के फोन नंबर सारे याद थे। आज एक भी नंबर मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा सारा मोबाइल में है डाटा।
0: आपको कोई अपना अकाउंट नंबर पूछता तो अपना मोबाइल फोन
1: खोल, मैं मोबाइल फोन खोल।
0: आपको अपने घर का कोई एड्रेस पूछेगा, दो साल के बाद अपना मोबाइल फोन खोलोगे।
1: यही सही है ना?
0: ये बिल्कुल सही, दिस इज वेल क्राफ्टेड।
1: अब अगर हम आज के नौजवान को उसकी सलाहियतों पर परखें तो यार सिटी क्या होगी प्रोफेसर साहब?
0: सर देखिए, जो हमारा इस वक्त सबसे एक वेल एक्सेप्टेड मॉडल है एजुकेशन की, लर्निंग टीचिंग में, उस मॉडल का एक पायरामिड है जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो पायरामिड है, इस पायरामिड में सबसे नीचे एक ब्रॉड बेस है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दैट मींस आपको पूछा जाएगा कि जनाब आपका जो मुल्क है वो आजाद कब हुआ, इट्स एन इंफॉर्मेशन, आपको डेट याद है। रिपब्लिक कब बना, आपको वो डेट भी याद है। आप पैदा कब हुए वो डेट भी याद है। दिस इज इंफॉर्मेशन। आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कुछ चीजें हमें जरूरत आती हैं जिसको हम नॉलेज कहते हैं, कि भाई यू आर ए डॉक्टर, यू विल सीक वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंजीनियर विल सीक अनदर, एन इकोनॉमिस्ट और ए बैंकर विल सीक अनदर, ए लॉयर विल सीक अनदर। नाउ दिस इज अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस द प्रोफेशंस। इसके ऊपर एक और लेयर है, इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सेकंड लेयर, दैट इज द नॉलेज विच यू हैव अक्रूड, द इंफॉर्मेशन विच यू हैव अक्रूड, उसकी एप्लीकेशन, अप्लाई। उस एप्लीकेशन के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। उसके ऊपर एक और लेयर है, दैट इज द टॉप लेयर, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। अब देखिए, अलग अलग जो लेयर्स हैं, इसमें जो सबसे नीचे वाली है वहां आपके दिमाग की जो मेमोरी पावर है वो ज्यादा काम करती है। उस मेमोरी पावर में जो आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स हैं, क्या आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आप बायोलॉजी का कंसेप्ट फिजिक्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आप केमिस्ट्री को फिजिक्स के लिहाज से उसमें कहां फिजिक्स अप्लाई होती है वहां कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि जो कुदरत ने कायनात बनाई वो डिमार्केटेड नहीं थी, बायोलॉजिस्ट अलग काम करेगा। इसमें अब एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क का काम है, कि कहां कहां जंक्शन बनते हैं, आपके साइनाप्सिस कहां कहां जुड़ जाते हैं। इस जोड़ में इसने अब अप्लाई कर लिया, उस एप्लीकेशन के बाद इसने उस रिजल्ट को इवेल्युएट कर दिया। और एक बैड न्यूज नाउ, द बैड न्यूज इज कि ओवर द लोअर लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ऑलरेडी टेकन ओवर।
1: यस,
0: दैट मींस जो इस पायरामिड के नीचे वाले दो लेयर्स हैं उसमें मशीन्स हमसे इस वक्त तेज, खासकर एक्यूरेट, फास्ट एंड चीप। क्योंकि जितने भी ये मॉडल्स इस वक्त LLMs वगैरह की बात हो रही है, जैसे आप एक एजेंट ले लीजिए या एक जनरेटिव इंजन ले लीजिए, इसको चैट GPT कहते हैं
1: जी,
0: ये आपको मार्केट में फ्री मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: प्रमोट करने वाले को पता है, बिफोर आई हैव टू गेट द क्लाइंटेल आई हैव टू ऑफर ए फ्री लंच।
1: बिल्कुल सही,
0: वो आपको फ्री लंच में दे रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। उसके ऊपर तो रहा है कि आपके घरों में 90% स्मार्टफोन्स, आपके एडोलसेंट के हाथों में 92-95% स्मार्टफोन्स, इस प्रोसेस को एक अनकॉन्करेबल प्रोसेस, कि आप कितना भी बैन करें, कितना भी रोकें, ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: दिस इज द बैड न्यूज ऑफ द होल जीनोमिक्स ऑफ द स्टडीइंग एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज, कि अगर आपको इस वक्त बचाव है, आपके सिर्फ ऊपर की दो लेयर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए बचाव है। दैट इज यू हैव टू एनी हाउ क्रिएट नॉलेज, और उस क्रिएशन के साथ साथ यू शुड बी एबल टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू यू, कि जो आपको AI दे रहा है एज ए टूल, आई अगेन कम बैक टू योर पॉइंट, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज टूल, वो आपको रेस्पॉन्सिबली खुद हैंडल करना है, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग में आपको उतनी ही लेवल नॉलेज की होनी चाहिए जितनी आपके एजेंट के पास है।
1: बिल्कुल सही, बातें और भी होंगी, कुछ अहम सवाल और हैं जो आप किससे जानने हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए और अपने सुनने वालों के लिए ये आरिफाना कलाम पेश करते हैं।

0: टीचर भी तैयार नहीं था इस चीज के लिए।
1: देखिए टीचर की बात यह है कि द वर्ड टीचर इज ए वेरी गिजेंटिक टर्म। ही वुड ट्रीट हिमसेल्फ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आई एम द सेज ऑन द स्टेज, जो मैं कहूं वो सही है, और ये किसकी मजाल है कि वो मेरे कंसेप्ट को या मेरी आवाज को अपनी आवाज उससे बुलंद करे। ये दौर भी सही है, मैं उस चीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि एक डिसिप्लिन, एक हायरार्की इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो टीचर का कंटेंट है, क्या वो उस बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग पर मजबूर करता है? क्या वो उस बच्चे को एक प्रॉब्लम देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर मजबूर करता है? क्या उसकी इवैल्यूएशन इन एस्पेक्ट्स में होती है? ये ऑटोनॉमी टीचर के और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके हाथ में है
0: जी।
1: और जब तक हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमारे बच्चे 500/500 लेके फिर बाद में हमारे बच्चे, वही बच्चे फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक एग्जामिनेशन में जो उसने एक्सपेक्टेशन लेवल रेज कर दी अपने पेरेंट्स की, अपने सोसाइटी की, अगले एग्जामिनेशन में, अगले मोड़ पर जब वो गिरता है, और कई बार मैंने देखा वो बच्चा उठ भी नहीं पाता है।
0: प्रोफेसर तारिक साहब, एक नफसियाती पहलू मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो ये है कि अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि एआई की मदद आप नहीं लेना
1: जी,
0: जब हम उसको बोलते हैं कि एआई की मदद नहीं लेना
1: जी,
0: ये नहीं उसके जहन में जो सवाल बन के जाता है, ये चोरी छुपे वो एआई फिर खोलता है।
1: बहुत सही आपने कहा, एक क्यूरियोसिटी का जो एलिमेंट है ये एक इनेट एलिमेंट है, ये हमने क्यूरियोसिटी सिखाई नहीं इंसान के दिमाग को, इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही हमारी सिविलाइजेशन बनी, सिविलाइजेशन बढ़ेगी, और आगे का रास्ता इसी क्यूरियोसिटी की वजह से होगा। जब आप क्यूरियोसिटी को सप्रेस करने की बात करोगे, उसकी क्यूरियोसिटी आपने एक तरह से बढ़ा दी, और आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना चोरी छुपे वो जरूर इसका इस्तेमाल करेगा, और आप धोखे में हैं कि भाई ये मुझे कहता है कि नहीं किया, और वो ह्यूमनाइज करके आपके पास कंटेंट लाएगा, आपको समझ भी नहीं आ सकता।
0: सही बात।
1: तो ये मुझे लगता है ये प्रैक्टिस हमें मानना होगा कि दिस न्यू पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कम टू स्टे, एंड इट इज नॉट कि टेक्नोलॉजी विल वेट फॉर द एजुकेशन टू इवॉल्व, द एजुकेशन हैज टू चेंज द पैराडाइम एंड ब्रिंग इटसेल्फ विद कंसोनेंस विद दिस टेक्नोलॉजी, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: सही। अब हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन क्लास की बात करते
1: जी।
0: हैं ऑनलाइन तालीम और रिवायती क्लासरूम में आप किस तरह का तवाजुन कहते हैं कि यह जरूरी तवाजुन रखना है?
1: इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों से बहुत ज्यादा काम करती है। उस टीचर का क्लास में खड़ा होना, जिस टीचर की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, जिसकी वॉइस क्वालिटी, उसका विजन, उसका क्लास क्या अटेंशन ग्रैब करना वो इंपॉर्टेंट था, उस टीचर को जब आप स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप उस बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं
0: जी।
1: उस टीचर का एक बच्चे को पैट करना, पीछे कमर थपथपाना, या कभी उसका कान खींचना, ये उसके ये एक्शन कई लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। आप पूछिए जो प्रीवियस जनरेशन है इस वक्त 40s और 50s में है, उनसे पूछिए, कहीं ना कहीं कहीं बोलेगा कि जिस दिन मुझे ABCD टीचर ने डांटा और मुझे कान खींचा, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं इस टीचर को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं जिंदगी में।
0: और इसके बरक्स एक और बात
1: जी,
0: जिस दिन और जिस वक्त टीचर ने उठ के मेरा माथा चूमा
1: जी
0: कि आपने ये बड़ा अच्छा किया है, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया
1: जी,
0: वो मेरी तहरीक, वो एक इंस्पिरेशन मेरे लिए बनी।
1: बहुत बढ़िया, सो ग्रेट। देयर आर सो मेनी स्टोरीज कि रिजेक्शन ऑफ ए टीचर टू ए स्टूडेंट, वो उसका एक विल पावर घटाने के बजाय उसका विल पावर बढ़ गया कि अगर मुझे रिजेक्शन हुआ है, आई विल प्रूव टू दिस पर्सन दैट हाउ वेल आई कैन डिलीवर इन लाइफ, ही बिकेम ए हीरो ऑन दिस।
0: यानी उसमें बाल आ गया कहीं से,
1: सही
0: वो चीज नहीं है ऑनलाइन में, वो नहीं है
1: उसमें, वो चीज कंप्रोमाइज्ड है। आई नॉट से कि कंप्लीटली एब्सेंट है, कंप्रोमाइज्ड है
0: बिल्कुल।
1: और एक एस्पेक्ट अब ऑनलाइन का यह भी है कि समहाउ अगर आप उस छोटे मोटे कंप्रोमाइज को लेके इसको एक हाइब्रिड मोड में लेके आ जाते हैं कि कुछ कंटेंट आप इस बच्चे को दे दीजिए, भाई इसके वीडियो देख लो तुम 10, लेकिन 10 वीडियो देख के जब तुम मेरे पास आओगे एक स्टिपुलेटेड टाइम पर, उस वक्त मैं तुमसे इस 10 लेक्चर्स की एक प्रेजेंटेशन करवाऊंगा, या तुम अपनी क्लास के सामने यहां पर फिजिकल मोड में खड़े हो जाओगे, तुम उनको यही 10 लेक्चर्स पर अपना एक लेक्चर दे दोगे।
0: सही।
1: इसको हाइब्रिड मोड को अडॉप्ट करें, that would be much better, leaving it for the student to learn. Bilkul. And I believe ki this hybrid mode is going to help at one aspect, education is going to become cheap

0: एंड क्वालिटेटिव डे बाई डे।
1: क्या टेक्नोलॉजी ने तालीम को ज्यादा काबिल रसाई बनाया या चैलेंजेस खड़े कर दिए?
0: टेक्नोलॉजी ने काबिल रसाई बनाए, रिसोर्सफुलनेस बढ़ा दी। इंटरनेट पर आपके पास कोई भी किताब आप मांग लीजिए जो पहले 10,000 रुपए की आपको बाजार में मिलती थी, वो ऑलमोस्ट आपको फ्री मिलेगी। आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए जिसको आपको 300 रुपए देने महीने के, उस इंटरनेट कनेक्टिविटी से आप लेक्चर दे सकते हैं। ओपन कोर्स वेयर एन नंबर्स में है, आपके जो ओपन ये सोर्सेज हैं रिसोर्सेज नॉलेज की वो एन नंबर में है। सो आई थिंक रसाई बढ़ा दी है।
1: जी जी, एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इनका आपस में रिश्ता भी है। पहला सवाल यह है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जदीद आलात तालीम के मैदान में किस तरह से ये मुतासिर होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, और क्या तलबा में तख्लीक और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग में टेक्नोलॉजी का जबरदस्त हाथ है?
0: जहां तक आपका पहला पार्ट है सवाल का कि किसी भी सूरत में एक इंसान की टेंडेंसी है, ये हर वक्त में इसको शॉर्टकट तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। जिस करंट को आपने एक सर्किट में छोड़ा वो करंट खुद ब खुद मिनिमम रेजिस्टेंस का रास्ता ढूंढेगा। देयर इज अ लॉ ऑफ मिनिमम एक्शन ऑल्सो, देयर इज अ लॉ ऑफ मिनिमम टाइम ऑल्सो। लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट बिकॉज इट टेक्स मिनिमम टाइम। इसी तरह से जो ह्यूमन एफर्ट है ये ढूंढने की कोशिश करेगा सहूलियत, लेकिन जो अब उस क्लास को इवेल्युएट करता है जिसको मैं उस्ताद कहूं, उसने किस लेवल पर उस बार को रखा है कि भाई तुम्हें इस बार को क्रॉस करना है, जिस तरह से हम हाई जंप में एक बार क्रॉस करते हैं, हाउ हाई ही हैज रेज्ड द बार, दैट इज द क्वेश्चन। रादर देन आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस, लेट अस क्रिएट द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय द लर्नर्स एंड गिव देम द ओपन चैलेंज। भाई जा, अब जिस जनरेटिव इंजन पर जाना है उधर चले जाओ, जिस किताब को ढूंढ सकते हो इंटरनेट से ढूंढो, जिस रिसर्च पेपर को ढूंढ सकते हो ढूंढो, मगर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। और मैं आपको सही बताऊं, ये कॉम्पिटेंस इस वक्त 11वीं 12वीं का बच्चा ओवर क्वालिफाइड है इस कॉम्पिटेंस को पाने के लिए, प्रोवाइडेड वी शेप अवर टीचिंग एंड लर्निंग एंड वी रीशेप अवर क्लासरूम्स, मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए पार्टनर, मेकिंग टेक्नोलॉजी एज ए पार्टनर, नॉट द सब्स्टिट्यूट।
1: सही बात है, सही बात है। और ये जो तख्लीकी सलाहियतें हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, क्या इंटेलिजेंस से बड़ी है या कम हुई है?
0: एक स्टडी के मुताबिक जहां पर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि एक क्लियर कट मैपिंग नहीं है कि जो इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ वो इंसान सबसे बड़ी इनोवेशन करेगा, ऐसा कोई मैपिंग नहीं है। हां, देयर आर पॉसिबिलिटीज की अकरेंसेज हैं लेकिन 100% एश्योर्ड नहीं है। समटाइम्स जो मीडियोकर्स भी रहे हैं हमारी टाइप की क्लासरूम में, जिसको आप 60-70% होल्डर कहते हैं अगर आप इंटेलिजेंस को क्वांटिफाई करते हैं विद द मार्क्स, सो देयर आर स्टोरीज कि पीपल गेटिंग लेसर देन 50% हैव आल्सो इवॉल्वड इनटू द नोबल लॉरिएट्स। आई हैव नंबर ऑफ फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस जो बिल्कुल मीडियोकर होने के लिहाज से एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि बाकी दुनिया के लिए वो बाकी दुनिया दंग रह गई कि ये इस तरह का कंसेप्ट से कहां से लाया, कैसे क्रिएट किया। उस लिहाज से व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि क्या आप एक लर्नर को, आर यू एबल टू ट्यून हिज ब्रेन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टेक अ डिसीजन एंड रिलेट द लर्निंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, प्रोबेबली दैट इज द लैकिंग फैक्टर, दैट इज द मिसिंग लिंक। जिस दिन आपकी ये लिंक बराबर हुई, आपके जो तख्लीक और तहकीक है उसमें चार चांद लग जाएंगे।
1: आज ये जो हमारा डिस्कशन है, हमारी जो गुफ्तगू है, मुझे लगता है कि ये फ्रूटफुल है टीचर्स के लिए ज्यादा, क्योंकि आपने जितनी भी बातें की उसमें ज्यादा ज्यादा रोल टीचर का ही बनता है। एक और सवाल ये है कि ये जो हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किताब पढ़ने की आदत कम हो गई है।
0: ये एक बहुत बड़े सानिह की बात है और इसको आप फील करेंगे इस तरह से कि देर इज एनदर स्टडी विच हैज बीन डन कि डिस्ट्रैक्शंस आर द एनिमी, एक्चुअल एनिमी। जब आप एक बच्चे के साइड में एक मोबाइल फोन रखते हैं, सो देर इज दैट फीलिंग, ही फील्स कि अगर मैंने मोबाइल फोन को 2-3 बार नहीं देखा एक घंटे में, द वर्ल्ड आउटसाइड में बी मिसिंग मी। ही फील्स कि मेरे बगैर शायद ये दुनिया इनकम्प्लीट है, और ये फीलिंग फिर से उसकी एक साइकोलॉजिकल, एक मान लीजिए इनेट फीलिंग है, इसको हम नहीं बदल पाएंगे। मगर ये डिस्ट्रैक्शन को अगर हम रिड्रेस करें इस तरह से कि वी थ्रो लॉट ऑफ कंटेंट, चाहे वो रीडिंग मटेरियल है चाहे वो लर्निंग मटेरियल है, मिक्सिंग इट विद दोज एस्थेटिक्स जो हमारा ब्रेन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, वन ऑफ दोज एस्थेटिक्स जिसकी थ्रेशोल्ड हमारा बच्चा क्रॉस कर चुका है टू ए वेरी

0: लेवल इज द डोपामाइन किक्स विच ही गेट्स आउट ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप इन बुक्स को एक रिक्रिएशनल अंदाज में, एक एंटरटेनिंग अंदाज में उसी ब्रेन के सामने रखते हैं जिसका डोपामाइन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बहुत ऊपर है, एक सादा किताब पढ़ने से यू आर सक्सेसफुल। बट आई फील कि रीडिंग को रोकना और रीडिंग को डिस्करेज करना, दिस इज एज गुड। देयर इज अ गुड फिलोसोफर, ही सेज दैट ए पर्सन हु कैन रीड एंड डज नॉट रीड इज नॉट बेटर देन द इलिटरेट पर्सन। That means we are people with qualifications who are enabled by our education that we can read, and we are not reading. We are as good as the illiterate people who cannot read the book.
1: क्या बात है, बहुत जबरदस्त।
0: This is devastating.
1: बहुत जबरदस्त।
0: So reading needs to be promoted and protected.
1: कुछ इलाके हैं जो कटे रहते हैं
0: जी,
1: सर्दियों में कटे रहते हैं, रास्ता खराब हुआ कटे रहते हैं, बाढ़ आ गई कटे रहते हैं। उन इलाकों तक रसाई के लिए और तालीम हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी के क्या रोल अदा कर सकती है?
0: किसी जमाने में एक बहुत ही सीरियस टर्म डिवाइस हुई, दैट वाज कॉल्ड एज डिजिटल डिवाइड
1: जी।
0: व्हेन दीज कॉस्टली टेक्नोलॉजीज कवरिंग द बैंडविड्थ, कवरिंग द डिवाइसेस, ये आई तो लोगों ने समझा कि ये गरीब इंसान इसको कैसे खरीद पाएगा। मगर आज आप देखिए कि आपके हाथ में जो एक मोबाइल डिवाइस है 6,000 रुपए का या 5,000 रुपए का, इसकी कितनी जो इसकी फंक्शनैलिटीज हैं वो कितनी डाइवर्स हैं। ये उस कंप्यूटर से कम नहीं, उस जमाने में जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का मिलता था,
1: जो मैंने पहले ही कहा कि
0: आपने बिल्कुल सही कहा,
1: सबकी रसाई नहीं थी।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दैट डिजिटल डिवाइड हैज लिक्विडेटेड, द ओनली थिंग नाउ रिमेन्स कि जैसे आपने कहा कि कहीं एक स्नैप हो गया, बैंडविड्थ जो प्रोवाइड कर रहा था इंटरनेट, एक मान लीजिए केबल स्नैप हो गया बर्फ की वजह से, बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, एक इलाका उससे दूर हुआ। बट स्टिल उस इलाके में जो ऑफलाइन डिवाइसेज हैं जिन पर स्टोरेज गीगाबाइट्स में है, आज आपके मोबाइल फोन में भी गीगाबाइट्स की ये स्टोरेज है। जो पहला कंप्यूटर मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया उसकी हार्ड ड्राइव 1 गीगाबाइट की थी, तो आज मेरे हाथ में 500 गीगाबाइट का डिवाइस है। तो उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को तो यूटिलाइज किया जा सकता है।
1: सही सही।
0: और देर आर अदर वेज ऑफ हैंडलिंग थ्रू VPN एंड अदर्स, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जहां आप एक उस टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या टेक्नोलॉजी उस लिहाज से उसको बेनिफिशियल है? आई से वेरी ट्रू।
1: ओके,
0: टेक्नोलॉजी का हाथ मत छोड़िए, मगर टेक्नोलॉजी को एक सस्ते तरीके से जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है उसको हार्वेस्ट करने में कोई एफर्ट ना छोड़े।
1: बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। अब देखिए, चूंकि हम आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं
0: जी,
1: ऑनलाइन क्लास है, बाकी चीजें, छोटे छोटे बच्चों, अब एक निगरानी रखनी भी बहुत जरूरी है
0: जी,
1: कि हमारा जो छोटा बच्चा है इसका जो माइंड है, ये एक ऐसी जरखेज मट्टी होती है ना, कोई भी बीज उसमें डाल दो आप उम्मीद करेगो कल इसमें समर मिलेगा, मुझे फल मिलेगा
0: जी।
1: लेकिन अगर साथ साथ में बच्चे कहीं भटक जाए
0: जी,
1: गलत रास्ते पे जाए, उसको रोकने के लिए किस तरह की निगरानी माँ बाप को, और टीचर्स तो खैर दूर होते हैं घर में, माँ बाप कैसी निगरानी रख सकते हैं?
0: सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कंट्रीज ने, अभी आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ने 16 साल के बच्चे तक मोबाइल फोन को बैन भी कर दिया, प्रोबेबली इनसाइड द क्लासरूम, दैट मींस एटलीस्ट फॉर 8 आवर्स ड्यूरिंग द डे ही इज अवे फ्रॉम द डिवाइस, फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम व्हाट डज ही डू? अब वो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, क्योंकि क्लास का टीचर उस या क्लास का प्रिंसिपल उस टाइम तक रिस्पॉन्सिबल है जब तक बच्चा उसके पास है। ज्यादा टाइम बच्चा पेरेंट के पास है तो पेरेंट को भी एक टाइम मैनेजमेंट पैटर्न बनाना होगा, 1 या 2 घंटे अगर बच्चे को मिलता है, बट दैट हैज टू बी हाईली सुपरवाइज्ड। लेट्स नॉट एक्सपोज द टीनएजर्स टू द कंटेंट व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल, जो उसके लायक नहीं है, दैट अगेन एड्स टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ हिज माइंड एंड डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ हिज माइंड।
1: एक और सवाल यहां पे बड़ा अहम है, एक बार सोशल मीडिया
0: जी,
1: कोई होता है कि उसको कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का शहसवार है
0: जी,
1: ये सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डाल सकता है, कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकता है, कोई भी रील डाल सकता है। दूसरा हुआ तालीमी प्लेटफॉर्म
0: जी,
1: यू हैव टू परफॉर्म ऑन स्टेज
0: जी,
1: आपको वहां पे कम्पीट करना है, वहां पे पेपर पढ़ना है, आपके 10 दाएं बाएं प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो एक स्टूडेंट को इन दोनों में फर्क करना कितना जरूरी है, और तालीमी प्लेटफॉर्म उसके लिए कितना जरूरी है, किस एज तक जरूरी है, और क्या क्या उसको करना चाहिए?
0: देखिए, मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताऊं कि जो ये अटेंशन स्पैन बच्चे का इतनी इंफॉर्मेशन के होते हुए कम हुआ है, इस पर भी एक स्टडी है कि क्या वो ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट बनता है जो मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होगा, इधर उसने मोबाइल देखा, इधर उसने किताब देखी, इधर इसने रील भी देख ली, इधर इसने क्लास भी अटेंड की, इधर इसने टीचर का भी सुना, या वो ब्रेन जो फोकस रहता है एक एक्टिविटी पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम।

0: and the findings to a psychologist have been very annoying. He says that multitasking decreases the efficacy of the brain rather than increasing it.
1: Achha.
0: Yes. और साथ ही साथ जब इस मल्टीटास्किंग के एस्पेक्ट में आज के बच्चे को आप देखते हैं, आप मुझे बताइए कि किस बच्चे के हाथ में एक ना एक डिवाइस नहीं है, चाहे वो पीसी की शक्ल में है, और उस पीसी के कंटेंट को अगर हम कंट्रोल में रखें, उसमें हम एक टर्म आज यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट, मेक द एजुकेशन एंटरटेनिंग, क्योंकि जो उसकी डोपामिन लेवल चली गई है रील्स को देख के, एक्साइटिंग कंटेंट को देख के. किसी जमाने में एक बच्चे को एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर मिलती थी मूवी देखने के लिए हफ्ते में, आज वो दिन में 20 भी देख सकता है, 10 भी देख सकता है. तो उसकी जो एक्साइटमेंट लेवल है ब्रेन की, वो क्लासरूम के उस कंटेंट के लिहाज से बहुत ही ऊंची है. दैट्स वाई उसका जो अटेंशन स्पैन है वो 15-20 मिनट के बाद सर में बोर हो गया, सर में बोर हो गया.
1: बिल्कुल,
0: ये बोरिंग जो है दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग, कि हम उसके दिमाग को अपने मार डालेंगे. Will not kill him for this. भाई तू क्यों कहता है मैं बोर हो गया. You have to find the cause and effect.
1: बिल्कुल.
0: जो उसका cause है, वो cause वही है जैसे मैंने कहा, make the content proper to conducive for his learning.
1: तारिक साहब आपने जबरदस्त बात बोली. ये जो dopamine की बात आपने कही,
0: जी सर,
1: हमने कई बार अपने इस प्रोग्राम में माहिर नफ्सियात के साथ बात की है.
0: जी.
1: ये सारा खेल dopamine का है.
0: जी.
1: जब हम देखते हैं ना आजकल अगर कोई बच्चा किसी गलत राह पे भी जाता है
0: जी.
1: तो उसकी वजह भी यही है.
0: सही.
1: आपने उसको यहां से मोबाइल थमा दिया हाथ में, उसका लेवल जो डोपामिन का है वो अलग तरीके से खारिज होता है, निकलता है. जब आप उसे ये छीन लेते हैं, उसको उसके हाथ में किताब देते हैं
0: जी.
1: या उसको कहते हैं कि आप अपने मजहब की तरफ आ जाओ
0: जी,
1: उसको लगता है कि कहीं उसकी लेवल से उसकी परेशानियां बढ़ जाती है, नफ्सियाती दबाव बढ़ जाते हैं, जहनी तनाव बढ़ जाता है.
0: सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ए मदर हैज बीन किल्ड बाय द चाइल्ड because she snatched the device from his hand or it is from this valley very valley
1: to how do you must see kasan
0: or how do you now I don't account ki it is for the people who have crossed the level of adulthood it is for them to devise a solution child ka jo brain hai 3 saal ke baad wo device apne haath mein liye baitha hai aaj wo 16 saal ka ho chuka hai ab 13 saal ke baad abruptly aap use kheench lete hain this is also not proper to him wo to react karega और उसकी रिएक्शन वही है जैसे आप एक ड्रग एडिक्ट को एब्रप्टली उसका ड्रग्स बंद कर देते हैं. इट्स द सेम इंपैक्ट. वो तो सुसाइड पर आ जाता है, ही बिकम्स अ किलर. तो यू हैव टू डिवाइस द प्रॉपर एसओपी, ए प्रॉपर प्रोसीजर कि भाई ये काम कैसे करना है. और फिर से मैं इसी बात पर आता हूं दैट द रोल ऑफ टीचर हैज इमर्ज्ड वेरी चैलेंजिंग बट इट इज द टीचर हु कैन डू द जॉब.
1: बिल्कुल सही. क्या हमारी सारी तालीमी दरसगाहें, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के तकाजों से हम आहंग हैं या मजीद इकदाम की जरूरत है?
0: मजीद इकदाम की जरूरत है और साथ ही साथ जिस तरह की जो हमारी टीचिंग ट्रेनिंग ये सारी चीजें हैं इनके पैराडाइम्स को किसी तरह से एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड के साथ मिलाने की जरूरत है, अलाइन करने की जरूरत है. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जितने भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, दे हैव कम टू स्टे, दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे सो इजिली नाउ. और आप ही को अपने आप को रीएडजस्ट करना होगा और रिशेप करना होगा अपनी पॉसिबिलिटीज को, और उसमें आपकी जो एनहांसमेंट है दैट विल बिकम मैंडेटरी.
1: अच्छा तारिक साहब, आपसे ज़ाती सवाल ये है कि आप
0: जी
1: बसीरत एक प्रोफेसर, मुस्तकबिल की तालीम को आप किस शक्ल में देखते हैं, खसूसन मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग के तनाजुर में?
0: एक सीरियस स्टडी हुई है वेयर अ पर्सन सेज कि बाय द ईयर 2028 देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट व्हाट मशीन्स कैन नॉट डू वी हैव टू मेंटोर द चिल्ड्रन फॉर दैट. वन ऑफ देम इज दैट यू हैव टू कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव एट वट एवर कॉस्ट. उस क्यूरियोसिटी को अलाइव रखने के लिए प्रोडक्टिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड मोस्ट सीरियस इज इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, क्योंकि मशीन में इमोशंस नहीं है. इट इज ए रूटीन स्ट्रक्चर्ड डिवाइस जो वो रूटीन करके रहेगा जो आपने उसको सिखाया है या जो आपने उसको दिया. लेकिन ह्यूमन ब्रेन कैन रीएडजस्ट समटाइम्स. यू कैन सी ऑन द सर्जिकल टेबल व्हेन अ पेशेंट इज देयर, डॉक्टर कब कभी रोक देता है सर्जरी को, भाई इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता. लेकिन एक रोबोटिक डिवाइस वो सर्जरी करके रहेगा, एक्यूरेसी कितनी है उसमें क्या है, मगर वो रुकेगा नहीं. सो देयर आर सर्टेन डिसीजंस व्हिच वी हैव टू टेक एट टाइम्स बिकॉज ऑफ द इमोशन एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमनिज्म इन अस. उसको प्रमोट करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी किसी भी लेवल को टच करे. दैट इज द ओनली यूएसपी वी हैव नाउ एज ह्यूमंस.
1: बिल्कुल सही, आपकी ये बात बिल्कुल सही है. और

0: का सब्स्टिट्यूट आया है किंडल, जिसको हम कहते हैं, इट्स ए डिवाइस जिस पर आप बुक पढ़ते हैं. तो पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग टू एडवांटेजेस. एक, वो किसी कंसेप्ट को हाइपरलिंक कर देते थे उसी डिवाइस पर, और उस हाइपरलिंक में क्या होता है कि आपने एक टर्म पढ़ा डेमोक्रेसी, उसके नीचे एक अंडरलाइन है. अब डेमोक्रेसी एक वर्ड आया, आपको इसकी समझ नहीं है, तो डेमोक्रेसी का हाइपरलिंक आपको
1: मिलेगा,
0: जैसे विकिपीडिया में होता है. लेकिन स्लोली जो ह्यूमन एस्थेटिक्स है, ये कुदरत की बनाई हुई, जो इंसान का ब्रेन है, ये ब्रेन एक वेल प्रोटेक्टेड और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो तब्दीलियां हैं वो तब्दीलियां इतनी जल्दी उसको बदल नहीं पाएंगी. तो ह्यूमन ब्रेन की इमोशन में, जो ह्यूमन ब्रेन की इमोशन है उसमें जो उस किताब का पेजेस का टर्न होना, ये कई दहाइयों से, कई हजारों सालों से चलता आया है. बेशक किताब चाहे पत्ते पर लिखी गई हो, कलम से लिखी गई हो, या प्रिंटिंग मशीन से लिखी गई हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. और उस किताब का जो अपना एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में पेजेस का होना, शायद कहीं ना कहीं जो एक स्टडी दिखाती है कि जो ये स्क्रीन रीडिंग है, दिस स्क्रीन रीडिंग इज, एक तो ये अब एक तरह से लीनियर बन गई, इफ देयर आर नो हाइपरलिंक्स इन द बुक. तो आपको पहले पेज नंबर वन को अगर आपको 50 तक जाना है, सी हाउ मच टाइम यू हैव टू मूव द कर्सर, और 50 पेज आपको जंप करने हैं, और आप कई बार थक जाते हैं, अरे आया क्यों नहीं 50वां पेज.
1: बिल्कुल.
0: सो दिस इज प्रोबेबली नॉट मेकिंग दैट इंपैक्ट कि वहां आप किताब में एक मार्कर रखा करते थे, एक छोटा सा पेज का निशाना रखते थे, भाई इधर तक मैंने पढ़ी, इसके आगे पढ़ूंगा. और साथ ही साथ जब एक डिजिटल डिवाइस जो डेडिकेटेड ना हो किताब पढ़ने के लिए, जब आप उस पर देखते हैं, देर आर अदर, आपका एक पॉप इन आ गई मैसेज, वो एसएमएस आ गया, एक व्हाट्सएप आ गया, सो यू अगेन फॉल इनटू दैट ट्रबल कि भाई पहले मैं इसको अटेंड करूं. तो ओवरऑल आई फील कि रीडिंग ए बुक फ्रॉम पेपर एंड ए बाउंड बुक इज प्रोबेबली मोर एडवांटेजियस एज पर द एस्थेटिक्स ऑफ ब्रेन रादर देन रीडिंग इट ऑन द स्क्रीन.
1: आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी ने तालीम को क्या दिया तारिक साहब की नजर में, और आज के स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हिसाब से करना चाहिए?
0: अगर टेक्नोलॉजी को हैंडल करें तो टेक्नोलॉजी ने एक रिसोर्सफुलनेस दी, एक ईज ऑफ प्रोसेस दी, एक इकोनॉमी दी, इसको सस्ता बनाया, एक एक्सेसिबिलिटी जो जिसको हम कहते हैं कि आई कैन रीच आउट टू द कंटेंट ऑफ द आउटसाइड यूनिवर्सिटीज, ये दी. और अगर सही से इस्तेमाल करें स्ट्रेंथ दी, ना कि हमें इसको एक, जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसको हमें पार्टनरशिप में लेना है, ना कि एक सब्स्टिट्यूट बनाना है. अगर ये काम आप करेंगे, यू आर द विनर.
1: बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे. तारिका मचालकू साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला, हमारे लिसनर्स के साथ बात की, हमारे साथ बात की, और बहुत अच्छी रही आज की ये जो महफिल आपके साथ रही, आज ये जो डिस्कशन और गुफ्तगु आपके साथ रही, फ्रूटफुल रही उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए. और मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि 80% ये टीचर्स के लिए भी थी ये गुफ्तगु. इंशाल्लाह अगले महीने फिर आपसे बात करेंगे. इस वक्त आपसे लेते हैं इजाजत, अपने सुनने वालों से लेते हैं इजाजत. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.
0: आई फील बेस्टोर्ड एंड आई फील लकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया. थैंक यू वेरी मच.
1: और अपने सुनने वालों को बता दें कि अब 11:30 बज रहे हैं. अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत. अगली आवाज होगी लाहूदा फरहान की.
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब. समीन, आप समाप्त कर रहे थे लाइव इंटरेक्टिव शो पैम सुब ईच आकाशवाणी हूं श्रीनगर स्टेशन मीडियम मीटर तैफेम खतरा शहरिया 5 समीन सुपूची 11:30 वलियो छकर तो रोबोजो ईशु कलामी शमस फकीर सदाकार शे अब्दुल सलाम कैमू तिहिंद हम नवा.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का

0: मान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency or NT has said that it is fully prepared for the smooth, fair, and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across

0: सबिन, आपने फिल्म बजरंगी भाईजान से ये नगमा समाप्त किया, आवाज थी के की। आपको बता दें कि ये फिल्मी नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। ठीक 12:30 हो रहे हैं। आइए अब खबरें समाप्त करते हैं, पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवरुल हक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत मुतल्लिकीन में 2,400 करोड़ रुपए के मुराद तकसीम किए। इस पहल को PMVBRY की अमल आवरी में एक संग मील से ताबीर किया जा रहा है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टरों में समाजी तहफ्फुज़ को दवाम बख्शना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PM विकसित भारत रोजगार योजना पहली मरतबा के मुलाजमीन को बाइख्तियार बनाने, नीज नौजवानों सन्नतों के दरमियान दूरियों को कम करने में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के ताल्लुक से कन्वेंशन सेंटर जम्मू और बड़ी ब्रह्मणा सांबा में खसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 1,522 मुलाजमीन ने 74 लाख रुपए के मुराद हासिल किए और 304 एम्प्लॉयर्स के बैंक खातों में बराह रास्त 25,42,00,000 रुपए मुंतकिल किए गए। यूटी सतह की तकरीब से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर तक इस स्कीम को देने के लिए शुक्रिया अदा किया।
2: मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। ये उस भारत की परिकल्पना है जहां औपचारिक रोजगार सामान्य व्यवस्था बन सके और सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, प्रत्येक नौजवान अपने सपनों को पूरा कर सके।
1: बैनुल अक्वामी सतह पर कल योगा डे 2026 मनाया जा रहा है। इस साल योगा के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है योगर फॉर हेल्दी एजिंग। इस सिलसिले में वजारती कल्चर की तरफ से मुल्क भर के 100 अहम मकामात पर योगा तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुनक्किद होगी। इधर जम्मू कश्मीर में भी योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। इस जिम्मे में डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर अजय तिक्कू ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मेन इवेंट एसकेआईसी

0: नगर में हो रहा है और दूसरा मेन इवेंट हम जम्मू पीजी कॉलेज गांधी नगर में करवा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सब वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस योगा दिवस में वो बढ़ चढ़ कर योगदान देश में 21 तारीख को वो सुबह 5 और 6 बजे के बीच में जो जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है या मेन इवेंट है वहां पर आए और योगा का लाभ उठाएं।
1: उधर मुख्तलिफ जिलों के तरक्याती कमिश्नरों ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में इन अजला में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके योगा तकरीबात के असन निकाद को यकीनी बनाए। शुमाली कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल

0: कमरा चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह, नमवें कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजन शरावत के अलावा सोलहवें कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा भी थे। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। इस दौरान कानून साज असेंबली की मेंबर देवयानी राणा भी लोक भवन श्रीनगर में एलजी से मुलाकात हुई। सेहत व तबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कोयल पुलवामा में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कल तुलमुला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर का दौरा करके वहां 22 जून को मुनक्किद होने वाले सालाना खीर भवानी मेले के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉ बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कल लोगरीपुरा अशमकाम में माता रागनीय भगवती मंदिर का दौरा करके वहां 22 जून को माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 का इम्तिहान दोबारा लेने से पहले आज कौमी सतह की मॉक ड्रिल का इनेकाद कर रही है, जिसका मकसद कल मुनक्किद होने वाले इस इम्तिहान के आसन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं। एक तरफ इस लानत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ तालीमी इदारों नीज अवामी अहमियत के मकामात पर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम की सदारत में कल जिला सतह की जायजा कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ माली इदारों के कामकाज और फ्लैगशिप की स्कीमों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हुंद बुलेटिन है। चुस बू मंजूर अहमद। वजीर अजम नरेंद्र मोदी यन रात नवी दिल्ली एकिस तकरीबी दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत तोलुक दरन में 2400 करोड़ रुपयन हिंद मुराद बगरम। ये कोशिश है पी एम वी बी आर वाई च अमल आवरी मज अक मीलकन हिंद रंग तबीर कर युक मकसद रोजगार मौक पैद कर मुख्तलिफ सेक्टरन में समाजी तहफुजस थजर बख्शन। अत मौकस पे वो तमो पी एम विकसित भारत रोजगार योजना से गोडनच लटि मुलिम बाख्तियार बनानस बमई नौजवान तो कारखानन दरमियान बैन कम कर असरदार साबित सपदान। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हवाले सपज कन्वेंशन सेंटर जमि तो बड़ी ब्राह्मण सांभास मज खूसी तकरीब मुनद। जम्मू कश्मीर सलुक थवन वालो 1500 मुलिमों कर 74 लाख रुपये हंद मुराद हासिल तो 304 एम्प्लॉयर कन बैंक खातन मज आई सद 5 करोड़ 2 लाख रुपये मुंतकिल कर। यूटी सूत्र की तकरीबी वर्चुअल तरीक खिताब करान कर् लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद जम्मू कश्मीर अम स्कीम दस वसत दिन बापत शुक्रिया अदा।
2: मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। ये उस भारत की परिकल्पना है जहां औपचारिक रोजगार सामान्य व्यवस्था बन सके और सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, प्रत्येक नौजवान अपने सपनों को पूरा कर सके।
1: बैन अवी सूत्रस पे यी पगह योगा डे 2000 मनाने यहस योगा की बैन अवी दुक मौजू योगा फॉर हेल्दी एजिंग थवन आमुद। अत सिलसिलस मु कल्चरल वजारत तरफ दुरुस मुल्क कन अकिस हतन अहम जायन पे योगा तकरीबन हंद सज कर। कौमी सूत्र सारवी खुद बड़ तकरीब सपद कोलकाता किस तारीखी रेड रोडस पे वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंदिस क्यादत मज मुनद। यपर्च जम्मू कश्मीर मज योगा की बैन अवी दोह नस्बत तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमित। इमे हवाले वोन आयुष जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर अजय तिकवन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कत करान।
3: मेन इवेंट एसकेआईसी श्रीनगर में हो रहा है और दूसरा मेन इवेंट हम जम्मू पीजी कॉलेज गांधीनगर में करवा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सब वासियों से उनसे मैं अपील करता हूं कि इस योगा दिवस में वो बढ़ चढ़ कर योगदान दे। इसमें 21 तारीख को वो सुबह 5 और 6 बजे के बीच में जो जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है या मेन इवेंट है वहाँ पर आएं और योगा का लाभ उठाएं।
1: यपर मुख्तलिफ जिलन हिंदो तरक्याती कमिश्नरों बिन बिन मीटिंगन दौरान योगा की बैन अवी दोह के हवाले पन्न पन्न जिलन मज कर तैयारियों हंद जायजा। तमो दु मुतलक महकमन हिदायत जिम बनविन बाहमी अथवा सत कर योगा तकरीब रुत पे मुनद कर यकीनी। शुमली कमानक जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा

0: ये इसके लिए मुकरर किया इन्होंने, किया ये 21st of June, तो ये 2015 से स्टार्ट हुआ
1: जी।
0: तो क्योंकि इस दिन जो है जो डे टाइम इसमें होता है सबसे ज्यादा लंबा होता है, ताकि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा योगा की ओर रुजू करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी जो फिजिकल मेंटल बेनिफिट्स है वो ले पाए
1: जी। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि इसके बहुत सारे फायदे हैं
0: जी,
1: पहले हम फायदों की बात ही करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है देखा है योगा की तो बहुत सारे फायदे हमने सुने हैं, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, आप तो इसी फील्ड से मुंसलिक हैं। ये बताएं कि क्या वाकई में योगा के बहुत सारे फायदे हैं?
0: जी बिल्कुल, योगा के बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आजकल आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो जहनी तनाव से गुजर रहे हैं,
1: बिल्कुल स्ट्रेस बहुत होता है,
0: बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है एड्रेनलिन रश होता है बॉडी में, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। समटाइम्स कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस हो जाती है, कुछ लोगों को बीपी रेज होता है, जो डायबिटिक होते हैं ज़्यादा स्पाइक देखते हैं हम उनकी शुगर लेवल में, तो जो योगा है तो उस चीज़ को बहुत हद तक काबू में रखता है। तो योगा में हम एक्सरसाइज करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो उन ब्रीथिंग एक्सरसाइज की वजह से जो हमारा स्ट्रेस रिलेटेड ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड वो रिलैक्स्ड होता है, वो पूरा ज़्यादा तनाव फ्री होता है, और उसकी वजह से जो हमारी इंटरनल बॉडी है उसमें एक चेंज आती है, पॉजिटिव चेंज आती है, जिसकी वजह से जो एड्रेनलिन है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, और कोई भी जो आप देखेंगे एबनॉर्मल फंक्शन हमारी इंटरनल बॉडी नहीं करती है, तो उसकी वजह से जो डायबिटिक है वो मेंटेन रहते हैं वहाँ पे, जो जिनको प्रॉब्लम होती है बीपी में प्रॉब्लम होती है उनका नॉर्मल रहता है बीपी। तो ब्रीथिंग के बहुत सारे फायदे हैं, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमें जो माइंड है उसको रिलैक्स करने में।
1: योगा करने के क्या अवकात होते हैं, यानी टाइमिंग कौन सी बेस्ट टाइमिंग क्या है योगा करने की?
0: जी सबसे बेहतरीन जो टाइमिंग है जब अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम पे जो इंसान होता है वो फ्रेश होता है, और जैसे ही हम योगा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली स्ट्रेच होती है। प्रॉपरली स्ट्रेच होने के साथ साथ जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिवली सीक्रेट होता है। तो उसके बाद जो है हमारा जो आप देखेंगे जो ब्लड फ्लो जाता है हमारी बॉडी में तो एक पॉजिटिव चेंज देता है, तो जो पूरा दिन है वो एक पॉजिटिविटी के साथ गुजरता है। तो इसीलिए जो माहिरीन का कहना है कि जो योगा है एम्प्टी स्टोमक अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बहुत सारे आसन हम होल्ड करते हैं योगा में तो उसमें हमारे एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो योगा है एम्प्टी स्टोमक किया जाता है, क्योंकि हमारे हमारा जो स्टोमक है हमारे जो इंटेस्टाइन है इस पर अगर हम अपने अगर हम कुछ खा के करते हैं योगा तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेहतर यही है कि जो योगा है निहार पेट ही बेहतर है।
1: जी जी, अच्छा ड्यूरेशन क्या रहनी चाहिए, मतलब कितनी देर हमने योगा करना है?
0: अब ये डिपेंड करता है एक इंसान की फिजिकल कंडीशन पे
1: जी।
0: हाँ, अब अगर कोई फिजिकली फिट होता है, ज़्यादा फिट होता है फिजिकली, लाइक जो हमारे फ्रॉम एज 4 to 30 तो उनकी ड्यूरेशन रहती है 1 आवर 30 मिनट्स 2 आवर्स उनकी रहती है, फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि किसकी कितनी फिजिकल कैपेबिलिटी है, तो उसको हम उसी हिसाब से बोलते हैं, उसी हिसाब से उसकी क्लास जो ड्यूरेशन है वो डिज़ाइन करते हैं, तो उस हिसाब से वो देखते हैं। बेस्ट जो है 45 मिनट्स
1: जी
0: 45 मिनट्स अपने लिए निकालिए, ताकि जो आप खुद देखेंगे जब एक इंसान एक 45 मिनट तक योगा करता जाता है तो एक महीने के बाद उसकी बॉडी में जो है वो एक पॉजिटिव चेंज आती है, उसकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है,
1: स्ट्रेंथ आ जाती है।
0: बिल्कुल कंटिन्यूटी, इस साल की थीम भी यही है कि योगा फॉर एजिंग। एक कहावत है, कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, इट्स नेवर टू लेट, तो फॉर एजिंग उसके लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि आप देखेंगे विद एजिंग बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप देखेंगे कि जो फीमेल्स में खास तौर से उनमें ऑस्टियोपोरोसिस रहता है
1: जी,
0: तो विद एजिंग वो एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है बॉडी में,
1: वर्स होता जाता है
0: बहुत ज्यादा। कश्मीर में सबसे ज्यादा जॉइंट प्रॉब्लम है फीमेल्स में, नी प्रॉब्लम है, शोल्डर प्रॉब्लम है।

0: क्योंकि ये इसी वजह से होता है जो हमारी जो फीमेल्स है कश्मीर में, वो कहती है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम काम करते हैं घर का, ये एक्सरसाइज होती है। हालांकि ये एक्सरसाइज कम, एक्सर्शन ज़्यादा होती है इनको,
1: जी
0: बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होती है इनको। तो उसके लिए अगर ये योगा करेंगे तो योगा क्या करता है, जो हमारी जो जॉइंट्स है, जॉइंट की मोबिलिटी को बरकरार रखता है, तो जिसकी वजह से विद एजिंग मोबिलिटी बराबर रहती है बॉडी में, और जो ये प्रॉब्लम होती है वो ना के बराबर होती है।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताएं, जैसे कि आपने अभी डायबिटीज़ का जिक्र किया, आपने बीपी का जिक्र किया, या स्ट्रेस लेवल के बारे में आपने बात करी, क्या हम ओबेसिटी या जो हम मोटापा कहते हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं योगा की मदद से?
0: जी बिल्कुल, हम बहुत हद तक योगा की वजह से इस चीज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो योगा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप देखेंगे जैसे ही आप योगा में, सबसे पहले आपको बोलेंगे कि डाइट का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो आप डाइट लेते हैं तो उस पर बड़ा फोकस रहता है। फिर उसके बाद जब आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, आप डिफरेंट आसन्स करते हैं, होल्डिंग करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है।
1: जी
0: तो बहुत हद तक जो मोटापा है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अलॉन्ग विद डाइट।
1: जी
0: खाली योगा नहीं, बट इसके साथ हमें एक अच्छा जो है बैलेंस्ड डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है।
1: जी योगा सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: योगा सीखने के लिए आजकल बहुत सारे, आप देखेंगे बहुत सारे जरिए हैं,
1: जी
0: तो यूट्यूब है एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो बहुत सारे टीचर्स हैं, वो वहाँ पे जो है योगा आसन डिमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रॉपरली, परफेक्टली। तो वो चीज़, उस चीज़ को हम अगर हम देखेंगे तो वो वहाँ से हम सीख सकते हैं। और हमारे कश्मीर में एक दो जगह है जहाँ पे योगा सिखाया जाता है,
1: जी
0: और योगा एज अ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है
1: ये
0: बच्चों
1: बड़ी
0: के लिए।
1: खुशाइन बात है। जी
0: जी ये हम यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे श्रीनगर में, वहाँ
1: जी
0: पे सिखाते हैं। अनंतनाग में इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे सिखाते हैं। गांधरबल में इंडोर स्टेडियम, वहाँ पे सिखाते हैं। तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स है, तो वहाँ पे बाजाबता योगा की ट्रेनिंग होती है, योगा एज अ स्पोर्ट्स भी होता है, और योगा एज अ वेलबींग भी वहाँ पे कराते हैं।
1: अच्छा ये बताइए,
0: जी
1: जो एक स्टार्टर होगा मेरी तरह, जिसने कभी योगा नहीं किया होगा, तो उसको योगा किस आसन से शुरू करना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और दिन ब दिन वो इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बढ़े?
0: जो योगा की बात करेंगे हम, योगा में बहुत सारे आसन्स हैं,
1: जी
0: तो हर एक आसन की अपनी अपनी इंटेंसिटी है। तो जैसे ही आप योगा से तारुफ हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिंपली बैक स्ट्रेच, बैक एंड फोर्थ सिखाएंगे, स्ट्रेच कराएंगे बैक एंड फोर्थ, साइडवेज स्ट्रेच देंगे वहाँ पे, साइडवेज आसन्स कराएंगे, तो आप बहुत सारे आसन्स वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जितनी आपकी फिजिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिटेशंस है उनको ध्यान में रख के आपको करना है। आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। एक जो बिगनर है उसको जैसे कोई भी आसन करता है तो उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को। दूसरी चीज, उसको जो भी स्ट्रेच जो बॉडी लेती है तो वो एक कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का जो आप देखेंगे मेथड भी है, अगर हमें किसी किसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी है, इट्स स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। तो उस चीज से हम जो है योगा स्टार्ट कराते हैं विद ओन लिमिटेशंस, बॉडी लिमिटेशंस, हम ज्यादा पुश नहीं करते हैं। तो एक बिगनर के लिए वो एक एक आप मान लीजिए एक स्टार्टअप होता है, स्टार्ट होता है, तो उसकी उसकी वजह से जो स्ट्रेच वहां पे वो अर्लियर लेता है तो वो इंजॉय करता है स्ट्रेच को, और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी की जो लिमिटेशंस है वो बढ़ जाती है, तो फिर वो बहुत सारे एडवांस आसन भी परफॉर्म करता है वहां।
1: तहर साहब ये बताएं कि ये तो एक तो आपने बताया कि हम योगा, जैसे बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास, यूट्यूब है या
0: जी
1: सोशल मीडिया हमारे
0: बिल्कुल
1: पास है, अब इनफरादी तौर पर अगर जैसे आपने बोला कि हमने वहाँ पे जाना है, स्टेडियम्स हैं जहाँ वहाँ पर सिखाते हैं, अब ये हर एक के बस की बात तो नहीं है। जैसे हमारी ख्वातीन हैं जो घरों में ज़्यादातर रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी कि वो कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि हमें ऐसी ख्वातीन भी मिलती हैं जिनको वाकई में सोशल मीडिया उतना इस्तेमाल करना नहीं आता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएं ताकि वो शुरुआत तो कर सके, जैसे आपने

0: एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया।
1: बिल्कुल, जो आप देखिए योगा जो है ये सबसे सेफेस्ट, इजी और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। आप घर बैठे ये चीज़ सीख सकते हैं। तो अगर कोई भी बिगनर है जो करना चाहता है योगा, जो योगा से फ़ायदे लेना चाहता है
0: जी।
1: योगा से अपनी हेल्थ को, जो अपनी लाइफ है, लाइफ लॉन्गिलिटी को डिजीज़ के बिना चलाना चाहता है, तो वो स्टार्ट कर सकता है स्टैंडिंग। हम करते हैं योगा 5 पोजीशंस में, मोस्टली स्टैंडिंग पोजीशन में, जिसमें हम अपवर्ड स्ट्रेच देते हैं, उसको कहते हैं ताड़ासन
0: जी।
1: तो सबसे आसान स्ट्रेच है, सो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं ताड़ासन। तो उसके बहुत सारे आप देखेंगे वहां पे फायदे बहुत सारे हैं। उससे जो हमारी स्पाइन की जो हमारी स्पाइन जो है वो प्रॉपरली इलोंगेट होती है। बहुत सारी फीमेल्स में स्पाइनल प्रॉब्लम होती है, आप देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस होता है, लोअर बैक में इश्यूज होते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए वो आसन उस चीज के लिए बहुत ज्यादा सेफ है और हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी उससे मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद वो एक और आसन वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंड, उसको बोलते हैं पादहस्तासन, जो हम आगे बेंड करके टोज की ओर झुकते हैं, तो हमारी दोनों हाथ जाते हैं टूवर्ड्स टोज डायरेक्शन इन स्टैंडिंग पोजिशन। फिर उसके बाद बैठ के लॉन्ग सिट पोजिशन, जो दोनों जो लेग्स है उनको मैट पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं, उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम रीच आउट करते हैं टोज की ओर। अब जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसको हम सजेस्ट करते हैं उतना ही परफॉर्म करने के लिए
0: जी।
1: तो उससे भी जो स्पाइन जो है बैक एंड फोर्थ मूव करती है, अगेन जो स्पाइन की इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है, उसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स इन्वॉल्व होती है, उसमें कॉर्डिसेप्स इन्वॉल्व होती है और उसमें जो है काफ मसल्स इन्वॉल्व होती है। जो भी थकान दिन भर रहती है वो सारी चली जाती है उसकी वजह से। जो तीसरा स्ट्रेच है, जो हम तीसरी एक्सरसाइज में रिकमेंड करता हूँ, उसको बोलते हैं भुजंगासन, कोबरा पोज। उसको क्या करते हैं, लेट के करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलाइन पोजिशन पे लेट के करते हैं, दोनों जो हाथ है वो रखते हैं हम बिसाइड्स ओवर शोल्डर। फिर उसके बाद अपवर्ड स्ट्रेच देते हैं
0: जी।
1: तो उससे जो है बहुत हमारा एब्डोमेन इन्वॉल्व होता है, तो जो फैट एक्युमुलेट हुआ होता है एब्डोमेन पे वो डिप्लीट होना स्टार्ट होता है। तो मिनिमम 10-12 सेकेंड्स होल्ड विद इनहेलेशन ब्रेथ। फिर उसके बाद एक और आसन हम परफॉर्म करते हैं बेली फैट के लिए, उसको बोलते हैं उत्थित पदासन। तो स्पाइन लाइन पोजिशन पे लेट के पहले राइट लेग को लिफ्ट करते हैं, फिर डाउन, फिर लेफ्ट दूसरी लेग को, अपोजिट लेग को अप। तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो स्पाइन को, वो बहुत ज्यादा जो हमारी मसल्स अराउंड आवर स्पाइन है तो उनमें वो उनको वो टोन कर देता है
0: जी।
1: और साथ ही साथ हमारे एब्डोमेन को भी टोन कर देता है और एक फिर से जो हमारा एब्डोमिनल फैट एक्युमुलेट होता है वो डिप्लीट होना स्टार्ट होता है
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है। फिर उसके लास्ट में ब्रीथिंग कराते हैं हम, ताकि जो तनाव होता है, जो एक इंसान, हर एक इंसान में तनाव होता है अपने अपने,
0: आज तो बच्चों में भी तनाव होता है
1: बहुत ज्यादा, उनको स्टडीज का तनाव होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर और तनाव आजकल इसकी वजह से भी होता है कि लोग जो है ज्यादा देर तक जगे रहते हैं। सो ज्यादा आप मान लीजिए जो स्लीपिंग आवर्स है वो लाइक 4-5 आवर्स आजकल है। आजकल के जो बच्चे हैं उनका जो है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा रहता
0: है,
1: इंसोमेनिया बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से भी तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, जब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है बॉडी को। तो योगा में ब्रीथिंग है, एक टेक्निक ब्रीथिंग है, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। वो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है उसको रिलैक्स कर देता है, तो जो उसकी वजह से हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे योगा के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपकी डाइट का
0: जी।
1: डाइट और योगा अगर आप एक बैलेंस पोजीशन में लेंगे तो ये मेडिसिन की तरह काम करेगा
0: जी।
1: तो जो भी ये फैटी लिवर जो है, ये जो है योगा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने में, खत्म करने में। और साथ ही साथ आप देखेंगे पीसीओडीज होता है, बहुत कॉमन है आजकल, तो हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। बहुत हमें, आप मान लीजिए बहुत हमारी जो सक्सेस रेट है लाइक 90% है।
0: माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
1: बहुत सारी फीमेल्स आई ये प्रॉब्लम लेके हमारे पास, तो जिनका एक प्रॉपर वे

0: एक एक ऑर्गेनिक मेथड से हमने उनका इलाज किया है, तो उनकी बॉडी जो है वो उसको हील करना खुद ही स्टार्ट कर दिया है विदाउट एनी मेडिकेशन।
1: जी जी, ये तो बड़ी खुशहाल बात है। प्रोग्राम के आखिर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सामिन कराम को योगा के हवाले से?
0: जी, यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें जो ये जिस्म मिला है इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, आप देखेंगे फिजियोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अब अगर आप अपने लिए 45 से 60 मिनट निकालते हैं, योगा करते हैं, योगा में बहुत सारे आसन्स परफॉर्म करते हैं, आप प्राणायामास करते हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो फ्री फ्रॉम डिजीज, आपकी जो लाइफ लॉन्गिलिटी है वो बहुत ज्यादा हेल्थी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छी मालूमात आपने दी योगा के बारे में, आसनों के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है समन किराम आपकी इस दी हुई जानकारी से इस्तेफादा ज़रूर करेंगे। समन किराम, इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह रहमान अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नया मौजू और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
2: समीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बज़्म निस्वां। समीन, प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रही थी शहनाज रहीम। प्रोग्राम में आज के मेहमान थे मोहम्मद ताहिर और इस प्रोग्राम की मावनत करते हैं शौकत अली और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। दिन का एक बज रहा है, आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी में खबरें समाप्त करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले

0: मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Center and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrah in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agrah is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Diwas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform.

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, पहली निशस्त के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे और अपना प्रोग्राम सुन रहे होंगे। आइए दोस्तों, समाप्त करते हैं प्रोग्राम की पहली सौगात।

फाजी भाई, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में प्रीतम की मौसीकी में इरशाद कामिल का अशआर समाअत किए। यह आवाज़ें थी शान और उस्ताद सुल्तान खां की। दोस्तों, फिल्म का नाम जब वी मेट।

अरे भाई, आपने अमल मलिक की मौसीकी में कुमार के अशार समात के। आवाज़ें थीं अमल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की। फिल्म का नाम, जी हाँ दोस्तों, आपको फिल्म का नाम बताते चलें। फिल्म का नाम है एयर लिफ्ट। दोस्तों, अगला नगमा सुनवाने से पहले आपके नज़र एक शेर करना चाहेंगे। परवीन शाकिर का लिखा एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, न हाथ थाम सके न पा सके दामन, न हाथ थाम सके न पा सके दामन, बहुत करीब से उठकर बिछड़ गया कोई।

जिन दोस्तों ने अपने रेडियो सेट सभी अभी ऑन किए हैं उन्हें हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH पर और हम आपसे मुखातिब हैं आप ही के मोबाइल फोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के जरिए। आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR पर भी।

0: आइए वाजपेयी, आप अलका याग्निक और सोनू निगम को सुनते हैं। शंकर एहसान लॉय की मौसीकी में जावेद अख्तर के अशआर हैं। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।
1: तुमको भी है खबर

जी फौजी भाइयों, हम तो आपको अलविदा ज़रूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ सपहर की दूसरी निशस्त तक, जो कि 3 बजे आपके खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान लाहौता फरहान को सपहर की दूसरी निशस्त तक इजाज़त। तब हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और फिल्मी नगमों के साथ। खुदा हाफिज़। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 1:50 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करते हैं खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0 के मुकाबले 3 से हराकर पहली जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉ. हरिबाबू कंबमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संथाली जहेरा गोशानी पीठ और हो जहेरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखने गए, जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत भी की। बाद में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने एक अहम आवामी प्रोग्राम में शिरकत की, जो मोहन चरण मांझी की जेर क्यादत उड़ीसा सरकार के 2 पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तिताह किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह के फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहरीन की एक कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 मीटिंग का एहतमाम करेगा, जो पीर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफदों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादले ख्याल करेंगे।

आइए दोस्तों, अब आखिर में लता मंगेशकर और मुकेश को सुनते हैं। आर डी बर्मन की मौसीकी में ये हैं साहिर के बोल, और फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगे।

सिमिन, आपको बता दें कि आप समाप्त कर रहे थे पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे। ये जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव ज़्यादातर 8.8 मीटर तो FM ज़्यादा 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन दूची ढाई बजे वलियो छक्कर तो रूपोजो यीशु कलामी गुलाम हसन मिसकर सरकार शे अब्दुल सलाम बट कोई मुतु तिहिंद हम नवा।

हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर जमीन से पहर के ठीक 3 बज रहे हैं। पेशा खिदमत है फौजी भाइयों के लिए हमारी आज की दूसरी निशस्त का प्रोग्राम।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, पहली निशस्त में हमने आपसे वादा किया था कि सपहर की दूसरी निशस्त में आपसे फिल्म लाके होंगे, सो हम हाजिर हैं। हम हाजिर हैं फिल्मी नगमे लेकर, प्यारे प्यारे और मीठे मीठे फिल्मी नगमे आपको सुनाएंगे, आपसे बात करेंगे। आपका हमारा साथ 3:50 तक है। आइए समाप्त करते हैं प्रोग्राम की पहली सौगात।

पिया तो से नैना लागे रे। जी हाँ दोस्तों, ये शैलेंद्र के लिखे अशआर आपने समाप्त किया एस डी बर्मन की मौसीकी में। दोस्तों आपको बता दें, ये गाना लता मंगेशकर का गाया है, इसे हमने लिया है फिल्म गाइड से। दोस्तों बहुत सालों पुराना ये नगमा है, लेकिन आज भी दिलों में इसकी जो इसके लिए जो ख़ास मकाम है वो अभी भी कम नहीं हुआ, क्योंकि लता जी की आवाज़ ही ऐसी है पुरकशिश और कानों को सुरीली लगने वाली। हमेशा से उनकी आवाज़ मीठी रही है, और आपको बता दें कि आज भी ये गाना उसी ख़ासियत का मतलब हामिल है, आज भी उसी हैसियत से लोग इसको सुनते हैं, पसंद करते हैं, और आज भी ये दिलों को लुभाता है। गाइड फिल्म से हमने आपको ये नगमा सुनवाया, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आइए इसी फिल्म से एक और नगमा सुनते हैं, लेकिन इस बार मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फौजी भाइयों माजरत चाहते हैं, ये नगमा हम सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

फौजी भाई को प्यारा सनकमा आपने समाप्त किया। आवाज़ें थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, नौशाद के अशार आपने मजरू सुल्तानपुरी की, नौशाद की मौसीकी में आपने मजरू सुल्तानपुरी के अशार समाप्त किए। दोस्तों, इंसान को पहली बार

बोलने में करीबन 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में सारी उम्र गुजर जाती है।

हाँ जी दोस्तों, हसरत जयपुरी का कलमबंद किया हुआ नगमा अपने शंकर जयकिशन के मौसीके में सुना। यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की और इस नगमे को हमने लिया है फिल्म आरजू से।

वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो, आज भी हम तेरी वफाओं पर मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो, तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो।

0: जी हाँ फौजी भाइयों, यकीनन जो लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और आपके दिल का, उनके दिल का ताना बाना आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर जो वो चले भी जाते हैं लेकिन लौट कर फिर आते हैं, क्योंकि उनका ठिकाना आपके दिल के सिवा कोई नहीं होता। फौजी भाइयों, बहुत ही प्यारा नगमा आपने सुना ओपी नैयर की मौसीकी में, मजरू सुल्तानपुरी के अशआर, आशा भोसले की मीठी सी आवाज़। दोस्तों, प्रोग्राम में नगमे और भी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: जी फाज भाइयों, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

जी भाइयों, आप मुकेश को सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम में। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी के अशआर आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में समात किए।

फौजी भाइयों, आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफी को सुना। ओपी नैयर की मौसीकी में ये थे एस एच बिहारी के अशार, फिल्म का नाम कश्मीर की कली। दोस्तों, आइए एक बार फिर इसी फिल्म से नगमा समाप्त करते हैं। ओपी नैयर की मौसीकी में एक बार फिर है एस एच बिहारी के अशार, और इस बार फिर आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

तो फौज भाइयों, इस नगमे के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम का जो इंतखाब है नगमों का, वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी नगमे के साथ दीजिए अपने मेज़बान लाहुत फरहान को इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। ठीक 3:50 हो रहे हैं। आइए समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह, कई एक का रखा संग बुनियाद। इल्म और रूहानियत के अजीम विरसे का अहिया नौ हम सब का बुनियादी मकसद, श्रीनगर नालंदा डायलॉग से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। योगा के बैन-उल-अक़वामी दिन के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कोलकाता में करेंगे मुल्की सतह की तकरीब में शिरकत। और नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान के आसन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए एनटीए की जानिब से मुल्क भर में मॉक ड्रिल मुनक्कद। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में अराय रंगपुर के दांदाबौस इलाके में एक अवामी तकरीब में शिरकत की। उनके हमराह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी थीं। इस मौके पर उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए से जायद मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा उन्होंने कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के हर खित्ते यकसां तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से धान खरीदने के लिए उन्हें 3,100 रुपए फी क्विंटल देने का फैसला किया गया है, जबकि सुभद्रा स्कीम के तहत मुल्क की 1 करोड़ से जायद खवातीन को माली इमदाद फराहम की गई है।
2: स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है उसकी भी मुझे जानकारी मिली है, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है। यानी स्वच्छता से स्वागत, मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक रेजिडेंशियल स्कूल का भी दौरा किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का भी दौरा किया। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इल्म और रूहानियत के अजीम विरसे का अहिया नौ और भारत की तहजीबी और तमद्दनी रिवायत को मजबूत बनाना हम सबका बुनियादी हक है। इसके आईसीसी श्रीनगर में मुनाकदा श्रीनगर नालंदा डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की मुस्तकबिल शनासी में से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शानदार माजी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर नालंदा डायलॉग विकसित भारत के नए नजरिए को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने का एक मुनफरिद मौका फराहम कर रहा है।
3: हमें शासन, संस्कृति, विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परंपराओं से जुड़ेंगे, जब भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा। इसके साथ हमें अपनी सॉफ्ट पावर को और सशक्त बनाना होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी को और प्रमोट करना होगा। विश्व को जानना चाहिए कि जो नॉलेज हजारों वर्ष पूर्व भारत से निकला था उसने पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया।
1: वाज़ह रहे कि इस तकरीब का इनकाद नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, नवालिंदा महावीरा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने मगरबी बंगाल के यौम तासीस के मौके पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल ने मुल्क की जंग आजादी में कलीदी किरदार अदा किया और साथ ही वहां के लोगों ने अदब, आर्ट, संगीत और साइंस के शोभाजात के इर्तका में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह रियासत तरक्की और नमो के मजीद मनाजिल तय करेगी। शुमाली कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने

0: कल लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उनके हमरा चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह, नौवीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजन शारावत के अलावा 16वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा भी थे। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। इस दौरान कानून साज असेंबली की मेंबर देवयानी राणा भी लोक भवन श्रीनगर में एलजी से मुलाकात हुई। सेहत तबी तालीम की वजीर सकीना इतो ने कोयल पुलवामा में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज के सफाई कर्मचारियों के एक वफद ने श्रीनगर में वजीर आला के राबता दफ्तर पर वजीर आला के मुशीर नासिर असनवानी के साथ मुलाकात करके अपने मुतालबात उनकी नोट्स मिलाए। वफद ने कैजुअल सफाई कर्मचारियों की मुस्तकली का भी मुतालबा किया। नासिर असनवानी ने वफद के जायज मुतालबात पर हमदर्दाना गौर का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने कल तुलमुला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर का दौरा करके वहां 22 जून को मुनक्द होने वाले सालाना खीर भवानी मेले के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा सेहत तबी तालीम महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और कई दीगर आला अफसरान भी थे। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मेले के सिलसिले में श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिबी निगादाश्त और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दीगर सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। 12वां बैनुल अक्वामी योगा डे कल मनाया जा रहा है। इस साल योगा के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस सिलसिले में विजारत कल्चरल की तरफ से मुल्क भर के 100 अहम मकामात पर योगा तकारीब का इनकाद किया जा रहा है। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुनक्द होगी। इधर जम्मू कश्मीर में भी योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वादी में सूबाई सतह की सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्द होगी, जबकि जम्मू में ऐसी ही तकरीब पीजी कॉलेज में मुनक्द हो रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन तकरीबात के आसन इनकाद के लिए आयुष महकमे ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर आयुष डॉक्टर अजय तिक्कू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को तफसीलात देते हुए बताया।
1: हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। SKICC में हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मैडम सकीना तो जी और साथ में हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर दुलू जी बुला रहे हैं और मुझे आशा है कि इसमें कम से कम 6-7 हजार लोग आने की पूरी हमें संभावना है। वैसे ही जो गांधीनगर में हम जम्मू में हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और वहाँ पर भी 4 हजार लोग वहाँ पर आ जाएंगे। लोगों से ये अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कल सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है कार्यक्रम। हर जगह ये कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है।
0: इधर मुख्तलिफ जिलों के तरक्याती कमिश्नरों ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में इन अजला में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में दीगर मसरूफियात के अलावा भारतीय बहरी फौज के 3 प्लेटफार्म INS दुनागरी, INS संशोधक, INS आगरे भी कमीशन करेंगे। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मनुष्यात के खिलाफ LG का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी।
0: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کل یعنی 21 جون کو دوبارہ لیے جانے والے نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کے امتحان سے پہلے آج قومی سطح کی موک ڈرل کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا مقصد اس امتحان کے آسان اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانا ہے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے

0: ये पूरी तरह से तैयार है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि ये इम्तिहान मुल्क भर के 551 शहरों और बेरोन मुल्क 14 शहरों में लिया जा रहा है, जिसमें 22,79,000 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये इम्तिहान कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लिया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सपहर के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पहाड़ी प्रोग्राम सुनने वालों को ख्वाजा परवेज दी तरफो अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तुसी खैरियत नाल होसो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल हमेशा दी तरह आज भी सुन दे होसो। सब तो पहले तुसा वास्ते प्रोग्राम दी पहली सौगात पेश है आरफ नाज दी आवाज़।

0: जी सामीन, इस गीत दे नाल ही अस्तियाई दे पहाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुकम्मल हो गया। अपने मेजबान ख्वाजा परवेज और प्रोड्यूसर मारूफुन निसा को दियो इजाजत। अल्लाह बेली।
1: आप समाप्त कर रहे थे आज का पहाड़ी प्रोग्राम। आइए आप पहाड़ी में खबरें समाप्त करते हैं।
2: सामीन, 4:20 होए, ये आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। पहाड़ी बुलेटिन दे नाल मैं सैयद उमर मुख्तार। सब तो पहला खास खास खबरां ते एक नज़र। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी सुन ओडिशा विच 47,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा मालियती प्रोजेक्टां दा कीता इफ्तिताह। कईआं दा रख्या संगे बुनियाद। इल्म रूहानियत दे अजीम वरसे दा अहिया नू असां सारिआं दा बुनियादी मकसद। श्रीनगर नालंदा डायलॉग नाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा खिताब। योगा दे बैन अलाकवामी ध्याड़े दे सिलसिले विच तैयारियां मुकम्मल। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता विच कर सन मुल्की सतह दी तकरीब विच शिरकत। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान दे इनकाद को यकीनी बनाने वास्तै NTA दी तरफों मुल्क विच मॉक ड्रिल मुनक्कद। और पेश है खबरां दी तफसील। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी सुन अज ओडिशा विच राय रंगपुर दे दांद बूस इलाके विच एक अवामी तकरीब विच शिरकत कीती। उन्हां दे नाल सदरी जमहूरीयत द्रौपदी मुर्मू भी आसी। इस मौके ते उन्हां सुन 47,000 करोड़ रुपए थों ज्यादा मालियत दे कई तरक्याती प्रोजेक्टां दा इफ्तिताह करके उन्हां को कौम दे नाम वकफ कीता। उन्हां सुन कई प्रोजेक्टां दा संगे बुनियाद भी रख्या। उन्हां सुन आखिया जे मरकजी सरकार मुल्क दे हर खिते दी एक शान तरक्की वास्तै काम कर रही है। उन्हां सुन आखिया जे किसाना कोलों ताई खरीदने वास्तै उन्हां को 3,100 रुपए फी क्विंटल देने दा फैसला कीते गया है। जबकि सुभाद्रा स्कीम दे तहत मुल्क दी 1 करोड़ थियों ज्यादा कुड़ियां को माली इमदाद फराहम कीते गई है।
3: अब देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहाँ चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है।
2: वज़ीरे आज़म सुन उत्थे स्किल डेवलपमेंट सेंटर ते एक रेजिडेंशियल स्कूल दा भी दौरा कीता। इस थों पहला वज़ीरे आज़म सुन सदरी जमहूरीया द्रौपदी मुर्मू दे आवाई ग्रां पाड़पुर दा भी दौरा कीता। उन्हां सुन सदर द्रौपदी मुर्मू को इन्हां दे 68वें जन्मदिन ते मुबारकबाद दिती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या है जे इलम ते रूहानियत दे अजीम वरसे दा अहिया नो ते भारत दी तहजीबी ते तमदनी रिवायत को मजबूत बनना असां सारियां दा बुनियादी मकसद है। SKICC श्रीनगर विच मुनाकिद श्रीनगर नालंदा डायलॉग नाल खिताब करदिआं होइआं उन्हां सुन आख्या है जे इस तरह दी मुस्तकबिल शनासी नाल असदी नौजवान नस्ल को अपने शानदार माजी ते जदीद टेक्नोलॉजी दे नाल जोड़े जा सकता है। उन्हां सुन आख्या जे श्रीनगर नालंदा डायलॉग विकसित भारत दे नवे नजरिए को हिम्मत नाल अगे बदलने दा एक मुनफरद मौका फराहम कर रहा है।
4: हमें शासन, संस्कृति, विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परम्पराओं से जुड़ेंगे, जो भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा। इसके साथ हमें अपनी सॉफ्ट पावर को और सशक्त बनाना होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी को और प्रमोट करना होगा। विश्व को जानना चाहिए कि जो नॉलेज हजारों वर्ष पूर्व भारत से निकला था, उसने पूरे विश्व को जोड़ने का काम।
2: वाजिया रेवे जे इस तकरीब दा इनकाद नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल नावा नालंदा महावीरा ते कश्मीर यूनिवर्सिटी दे बाहमी इश्तराक नाल कीते गया आसा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन मगरबी बंगाल दे योमे तासीस दे मौके ते उत्थे दे लोकां को मुबारकबाद दिती है। एक सोशल

0: 551 शहरां ते बैरून मुल्क 14 शहरां विच कीते जा रहे हैं, जिस विच 22,79,000 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। यह इम्तिहान कल दोपहर 2 बजे थी शामी 5 बजे तोड़ी कीते गए सी। अस्ता अगला बुलेटिन 5:50 तय गोष्ठी विच नशर कीते गए सी। इस दे नाल ही यह बुलेटिन मुक गया। अल्लाह बेली।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 MHz पर 4:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आज का शीना प्रोग्राम।

और उस वक्त की कोई हुकूमत असल छह नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हुकूमत मजबूर भी गोराइट पहली बार असम्बली का नशन दूनी कर और महमद अनवर शंगरू साहब से जगतों में भरपूर रोल अदा था और बस फकून हंस के एक सदो वजी एक आम इंसान से अच्छा कोशिश थी उन्होंने चाहे गोराई ऐसी तहसील बनो जलिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई गोराई डरे लो सस्य बड़ कोई रोल हो महमद अनवर शंगरू साहब होने दे छियानवे जी पहली बार महमद अनवर शंगरू से भी जाती कोशिश हो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत असली वजीर अला सो वक्त को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला असल ससी पूरी कोशिश थे ऐसी गोराइट पहली बार एक असम्बली का नशन सी रहो और कश कोई हूँ अश एक हफ्ते बन वाला हूँ महमद अनवर शंगरू से कोई हूँ कलील लाटे मट बीमार के दायरे सेहत ससी ठीक ना हासिल पत्नों बयालाई ससी वफात नरी करालपुरा श्रीनगर से दफन थी एक अजीम रहनमा असल एक अजीम एक आवाज़ असल गरीब आवाज़ असली और सदो वजी कौमी अवामी खिदमत थी कर एक इंसान हमेशा सगड़ याददारों को वर्सुस अवामी बेहतरी कर जो क्रम थी कर कोशिश थी हर एक इंसान मुस्कराए नमस हर एक इंसान।

0: आप समाप्त कर रहे थे शीना प्रोग्राम पेशकश समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक

नई उड़ान दें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जी शामिन, तुमने सुन लिया था, शामिन सेहतमंद जिस्म एक कामयाब जिंदगी की बुनियाद है। खेल जिस्मानी सेहत ना बरकरार रखने को बेहतरीन जरिया है। दौड़नों, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और दूजा खेल जिस्म का तमाम एजाना मुतहरक रखें। खेलों के जरिए खून की गर्दिश बेहतर वह दिल मजबूत वह फेफड़ा की कारकर्दगी माँ बादो वह और जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहे। डिजिटल दौर में मोटापो, डायबिटीज़।

हाई ब्लड प्रेशर और दूजा तर्ज जिंदगी के मुतालिक बीमारी जुड़ी हैं तेज़ी ना बढ़ रही हैं। इन बीमारियों की एक बड़ी वजह जिस्मानी सरगर्मियों की कमी है। खेड न सिर्फ इन बीमारियों से बचाव को जरिए हैं बल्कि एक मतवाजन और सेहतमंद जिंदगी गुजारन में भी मदद दें। मौजूदा दौर में जहनी दबाव, बेचैनी, डिप्रेशन और तनहाई का मिसाइल आम होता जा रहे हैं। मुसलसल मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल नाल जहनी थकन और नफसियाती मसाइल में वाधो हो रहा है। खेड जहनी सुकून और खुशी फराहम करें। खेड़ों के दौरान जिसम में ऐसा हारमोन्स खारिज हुए जो इंसान ना खुश, पुरसकून और पुरजोश बनाए। खेड जहनी यकसोई, फैसला साजी, सब्र और बर्दाश्त की सलाहियत ना भी फरोग दें। जो नौजवान खेड़ा में ऐसा लें वे अमूमन ज़्यादा पुरएतमाद, मुस्बत सोच रखने वाला और जहनी तौर पर मजबूत हों। सामीन आगे पेश है यू नगमो।

जी सामीन, तम नगमो सुन रहा था ते गल हो रही थी खेडन की। खेड इंसान की शख्सियत ना निखारन मा अहम किरदार अदा करें। खेड़ा का मैदान मा नज़्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, मेहनत, दयानतदारी और टीम वर्क जैसी खूबी पैदा हुए। एक खिलाड़ी जीत और हार दोना कबूल करना सीखे, जो कि अमली जिंदगी में कामयाबी के वास्ते इंतहाई ज़रूरी है। खेड नौजवानों में कायदाना सलाहित भी पैदा करे, टीम की क्यादत, मुश्किलात को सामनो और इज्तिमाई फैसलों करनो, ऐसी खसूसियातें जड़ा खेडन के जरिए परवान चढ़ें और मुस्तकबिल में इन्हीं कामयाबियों ना शहरी एक रहनुमा बनने का असूल अपना लें और उनमा रहनुमा बनने की सारा जड़ा सिकल्जें वे आ जाएँ। खेड मुख्तलिफ ज़बाना, मज़ाहिब, इलाकों और सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद ना एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठो करे। खेड़ा के जरिए भाईचारों, रवादारी, एहतराम और आपसी तावन को जज्बो फरोग पर। खेड़ का मैदान में रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक ख़त्म हो जाए और सिर्फ काबिलियत, मेहनत और खेड़ को जज्बो बाकी रह जाए। इस तरह खेड़ माशरा में इतिहाद, अमन और यकजहती का फरोग में अहम किरदार अदा करे। सामीन, आगे पेश है यह नगमा।

0: समीन तम नगमो सुन रहा था। समीन आगे मारे को एक इंटरव्यू है और मारी आज की मेहमान है आबिदा चौधरी। इना को ताल्लुक बांडीपुरा नाल है और ये इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। इनके नाम गल की हैं मोहम्मद यूनुस कालूखेल साहब और ने।
1: सामीन नजरात एक वक्त वैत हो कि लोग लड़कियों की तालीम ना उनकी तरक्की ना मायूब समझें था। तो ख़ास तौर पर अगर हम अपनी बरादरी की गल करें, हमारी बरादरी के बीच जित बच्चा ना पढ़ाया था और बच्चों की जी तालीम है वह बहुत घट थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वक्त बदलियो, दौर बदलियो, वक्त जिस टाइम नज़ाकत तब्दील हुई तो लोगों ने देखा देखी पर जिस तरीके नाल बाकी कौम अगे गई, तालीम हासिल की, इल्म हासिल की और इस तरीके नाल अज हमारी बरादरी की जी बच्ची हैं वे भी तालीम का मैदान में भी और ज़िंदगी का मुख्तलफ शोबा में काफ़ी अगे निकल गई हैं। तो यह हमारे वास्ते एक बड़ी फख्र की गल है। तो इसी तरीके के नाल खासी सारी बच्ची जी हैं उन्हें तालीम के नाल नाल कुछ और ऐसा शोभा भी चुनिया है जिनमें उन्हें बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। मेरा रो बरो तशरीफ फरमा है आबदा जी। आबदा जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
1: तुम अपनो तारुफ दियो, थारोपुर के ना है ते कित के रहने वाली है।
2: जी मेरो नाम आबिदा अख्तर है, हूँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर का चिट्ठी बांडी इलाका में रहने वाली हूँ।
1: जी नो भी तारीखी तौर पर यो चिट्ठी बांडी जुड़ो है ना, यो पहला इनते बड़ो सरफेस तरी हुआ है।
2: जी जी बिल्कुल
1: जी। आप तो जी तमने दसेंगे कि थारी जी इब्तदाई तालीम है वह तमने किस माहौल में शुरू की, कार को माहौल कैसा थो, तो इस तरह फिर शुरू करना बाकी गल।
2: जी इब्तदाई तालीम में अपना इतने इलाका में ही हमारे 10-15 कदम दूर है हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हुआ था उस टाइम में। तो उससे मेरी स्कूलिंग हुई है बेसिक स्कूलिंग,
1: ठीक,
2: गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिट्ठी बाणी बाला।
1: जी
2: उस तो बाद मिडिल हमारा दूजो ग्रां है, तो 2-3 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल थो जी एम एस आरा गाम ते मेरी मिडिल स्कूलिंग हुई है। उस तो बाद हायर सेकेंडरी स्कूल आरा गाम ते 12th की हो में, तो उस तो बाद डिग्री कॉलेज बांडीपुर ते बीए की।
1: जी बहुत अच्छा।
2: जी
1: कार को माहौल कैसा था, तालीमी माहौल थो?
2: जी उतनो ज़्यादा नहीं थो क्योंकि वालिद साहब की वफात हो गई थी तब, वो 1 साल को जाई महीने की थी।
1: ठीक।
2: कार माँ बड़ो पाई थो, वो नानियाल चले गए थो, नानियाल का साइड में थी पढ़ाई को थोड़ो।
1: अच्छा
2: जी अच्छो रुझान इस हमारा ग्राम उतना ज़्यादा नहीं थो, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिना मतलब बचपन ते शौक थी हूँ अजा स्कूल जान ते पहला 3.5 साल की उम्र में मतलब फिर कार का के क्यों कार ही माँ तख्ती वगैरह भैया हर चले था स्कूल उन्हें की ले कहते लिखू थी, तो शौक में ना बचपन ते थो।
1: जी
2: जी
1: तो तमने पाया कर क्यों या थारी बहन महंगी उन्हें भी पढ़िया लिखियो?
2: जी जी बिल्कुल।
1: अच्छा।
2: भाई तो मेरा तो बड़ा है, उन्होंने भी तालीम 12वीं तक की है। उस तो बाद कार का वो माली हालात उतना वसी नहीं था कि आगे भी अपनी तालीम जारी रख सकता।
1: जी
2: उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह वे भी जॉब उनकी लग गई, तो फिर उन्होंने आगे तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकी।
1: जी जी
2: जी
1: तो आप तो जी अगर हम बच्चे की तालीम की गल करें, कोई मुश्किल आता है?
2: बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज का अगर इस ना देखा आज उतने नहीं है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। घर तो कतरी की जात ना मतलब बाहर नहीं चलावे था, वालदेन भी माहौल ही नहीं था बिल्कुल भी अच्छा तक भी मतलब मेरा यादाश में मैं लगे हमारा एरिया की पहली कदरी हूँ थी जोड़ी कॉलेज गई है।
1: ठीक
2: जी
1: तो देख के
2: जी जी
1: तो कितनी बच्ची जुड़ी थी हमारी बरादरी की विकाल जब पहुंची?
2: बहुत ज़्यादा आज तो माशाल्लाह पूरा ग्रां की हमारे काफ़ी सारी जड़ी गदरी हैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले और उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की है। लेकिन उस टाइम में कोई नहीं थी हमारा मेरा क्लास में मैंने अजा भी याद है हम मेरी जड़ी प्राइमरी या मिडिल स्कूल की क्लासमेट थी वे 10th में चल के हम खाली 3 गदरी रह गई थी।
1: ठीक
2: जी उस तो बाद कॉलेज में सिर्फ हम 2 पहुंची थी।
1: जी
2: जी
1: आप दी जी तुमने सूरत हाल दसी बच्चे की तालीम की यानी थारा वक्त के बीच या खाली थारे चिट्ठी बांडी को यू हाल है कि ना पूरा बांडी को?

0: पूरा कुछ उससे दे रही है।
1: नहीं नहीं पहाड़ी पूरा पूरा कोई भी हाल है, हमारी जड़ी बरादरी है गुजर बरादरी, उसमें बहुत का अच्छा भी हमारा जड़ा कुछ इलाका है जिस तरह बांडीपुरा को कुडारा एरियो है
0: ठीक,
1: सिलंदर है, और उसमें अच्छा भी गदरिया की तालीम चढ़ी है वह बिल्कुल ना
0: बराबर है
1: होने के बराबर है। जी
0: जी,
1: बिल्कुल
0: तो बाकी इलाका में यह तब्दीली आ गई है।
1: जी, अब बाकी इलाका माउंट काफ़ी सारी तब्दीली आ गई है, काफ़ी सारी हमारी बच्चे जड़ी यूनिवर्सिटी में पीजी करें या
0: ठीक
1: बाकी कोर्सेज करें प्रोफेशनल कोर्सेज करें हमारी बरादरी की, और काफ़ी तब्दीली आ गई।
0: जी, तो अब दाजी इस टाइम वो थारा इतने कार बैठो भी है,
1: जी
0: थारो सोना मकान है और इसके नाल ये कछो कमरों भी है,
1: जी
0: ते कमरा के बीच एक सोनी जी शो अलमारी है,
1: जी
0: खासी बड़ी अलमारी है। ते इसमें जिस टाइम मेरी नज़र पड़ी ते कम से कम कोई 35-40 के करीब इसमें मेडल है, गिफ्ट है, प्राइज है, जरा तुमने इनाम मिल लिया है और नाल नाल खासा सारा सर्टिफिकेट भी है।
1: जी
0: ते यू खैर ये किस तरह का था इसका वाला मतलब दसो।
1: जी मैं स्कूलिंग के नाल नाल असल में जब हूँ मिडिल स्कूल में थी, 6th 7th थी
0: ठीक
1: टाइम हमारा सिर्फ गदरिया को स्कूल हुआ था वो, तो उसमें हमना गेम्स क्लास हुई थी, तो फिर हमना जो हमारा पीटी सर थो वो हमना मतलब इंटर स्कूल इवेंट में ले जाए थो,
0: ठीक
1: तो वो तो ही मेरे अंदर गेम्स को भी मतलब शौक पैदा हुआ
0: ठीक
1: जी, तो मैं पढ़ाई के नाल नाल गेम्स में भी हूँ पार्टिसिपेट करती रही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, लेकिन ज़्यादातर मेरो गेम्स में पार्टिसिपेशन रहती, उतनी
0: ठीक
1: बाकी एक्टिविटियाँ में नहीं उतने ज़्यादा करूँ थी लेकिन गेम्स में मुझसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँ थी
0: जी
1: जी। तो फिर आगे चल के जिसले हायर सेकेंडरी में पहुँचा 12th में, तो फिर शुरू में मैं स्टार्ट किया था खो खो हैंडबॉल वॉलीबॉल थी, फिर
0: ठीक
1: आगे चल के मैं 12th में जिसले वो पढ़ूँ थी उस टाइम हमारा स्कूल में जो मेरे फिर बाद में चल के कोच रहे हो
0: जी
1: उन्होंने एक मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम एक किया, उसमें भी
0: ठीक
1: आया उन्होंने हमने मार्शल आर्ट की अवेयरनेस दी थी
0: ठीक
1: जी। तो फिर मैं भी चल के सोचो उन्होंने हमने जिस टाइम मार्शल आर्ट के बारे में दस्यो, तो वीकेंड लगा कि यह एक गेम के नाल नाल एक लड़की वास्ते जो है सेल्फ डिफेंस भी है,
0: ठीक
1: मेरा फिर शौक थोड़ा मतलब और ज्यादा बढ़ गया उसमें
0: जी
1: जी। मैं फिर टीम गेम के नाल नाल टीम गेम भी वो खेलू थी, लेकिन उसके नाल नाल मैं फिर ज़्यादातर अपना टाइम देनो मार्शल आर्ट ना स्टार्ट कियो
0: ठीक
1: जी। तो फिर चल के मैं 12th के बाद कॉलेज का टाइम अभी मैं अपना स्टेट ना रिप्रेजेंट कियो नेशनल लेवल पर, तो
0: जी
1: फिर बीए तो बाद मैं जो है स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था, फिर
0: ठीक
1: मैं अपना इसना प्रोफेशनल इसना लिंक करना सोचो,
0: ठीक
1: तो बीए के बाद मैं फिर कियो बीपीएड की हुई फिजिकल एजुकेशन में
0: अच्छा
1: जी, तो उसके नाल मैं अपनी गेम भी कंटिन्यू रखी, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टेट ना और अपना मुल्क ना भी बैन अवी सतह पर रिप्रेजेंट कियो।
0: माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक। तो आप तो चिता मेरा दसो कि तब देखियो कि स्टेट रिप्रेजेंट कियो
1: जी
0: यानी यो मुल्क है भी जा के
1: जी
0: तो
1: जी
0: कित के जान को मौको मिलियो।
1: जी मिना अल्हम्दुलिल्लाह मिना लगे कि मैं पूरा हिंदुस्तान में मेरा मतलब विजिट किया हुआ है, तो
0: ठीक
1: स्टार्टिंग में मैं हमारा जो नेशनल था गोवा में हुयो, तो बेंगलोर कर्नाटका यानी कि साउथ इंडिया में भी यूपी बिहार महाराष्ट्र में, तो मैं बीपीएड यू तो ही किया हुआ है,
0: ठीक
1: तो उसके उस दौरान भी हमने मतलब हर एक जगह में दिल्ली
0: जी
1: चंडीगढ़ जी मैक्सिमम स्टेट में मैं रिप्रेजेंट किया हुआ है
0: जी
1: नेशनल लेवल पर अपना स्टेट
0: ते इस वास्ते पैसा की भी जरूरत पड़े, यो माली जरूरी या बजट है इसको कैसा हुआ है तो
1: जी। शुरू में तो ट्रेनिंग वगैरह पर इंसान ना होवे पैसा की जरूरत हो,
0: ठीक
1: पैसा की बहुत ज्यादा मतलब एक मुश्किलात भी रही है क्योंकि हम ना स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़े उन्हें ना खाली हम इवेंटा के दौरान पैसा गवर्नमेंट जी है वह मुहैया करे,
0: ठीक
1: आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी सारा सेंटर ऐसा खुल गया है, एक्सीलेंसी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोले हैं बच्चा की ट्रेनिंग वास्ते फ्री ट्रेनिंग, लेकिन हमारा
0: ठीक
1: टाइम ऐसा कुछ नहीं था
0: जी
1: और अपना खर्चा पर फिर मारो मेरे जो कोच थे उन्होंने को भी बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की है
0: ठीक
1: जी। काफ़ी सारे मतलब जगहों पर जड़ी फ़ी वगैरह थी उन्होंने मेरा तो फ़ी नहीं ली
0: जी
1: क्योंकि मेरा वाल साहब ना को इंतकाल हो गया था,
0: ठीक
1: माली हालात उतना नहीं था, ते उस करके उन्होंने मेरी इस चीज़ ने लेकर काफ़ी हेल्प की,
0: ठीक
1: लेकिन आम हर किसी बच्चा ना मतलब वे भी या और कोई होवे को वे मतलब नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग ऊपर जो खर्चा
0: ठीक
1: होवे एक एथलीट की वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं हुई थी ہم اپنا ہی مطلب سمجھو کہ اپنا بلبوتا پر اپنی لگن اپنی شوق کی وجہ سے اس لیول تک پہنچی.
0: تو جس وقت ہم ملک میں چلے تھی
1: جی.
0: تو جس وقت ہم جیت کے

0: थी, एक से
1: जी
0: इनाम मिले था,
1: जी जी
0: तो इसके पीछे पैसों मिला तो
1: जी नहीं, पैसों
0: ऐसा
1: नहीं मिला। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज मतलब स्पोर्ट्स ने बढ़ावा देने
0: ठीक।
1: वास्ते काफ़ी सारी स्कीम रखी, और आज जो अगर बच्चों रिप्रेजेंट करे ना स्टेट ना नेशनल लेवल पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आला ना, बाजाबता पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की
0: जी
1: स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसके अंडर बच्चा ना स्कॉलरशिप मिले। लेकिन बाकी स्टेट उस टाइम भी दे थी, लेकिन
0: ठीक
1: हमारे स्टेट में स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब बैकवर्ड एक हिसाब तो हमारा
0: ठीक
1: स्टेट जी,
0: जी
1: तो अवेयरनेस उतनी नहीं है स्पोर्ट्स की, ना उतना कल्चर थो कि मतलब हम ना मिलती है, लेकिन इतनो ही थो कि हम ना किरायो वगैरह रेंट सेंट वो सारा फ्री थो
0: ठीक।
1: जी
0: तो
1: इवेंट में।
0: आप जी फरमाए थे कि तम ना मुल्क की जो तमने वगैरह प्रेजेंटेशन तमने की है,
1: जी
0: तो इसको मतलब है तम मुल्क से बाहर गई है,
1: जी जी बिल्कुल
0: किस किस मुल्क में गई है तम?
1: जी, मैं 2017 में इंडिया ने रिप्रेजेंट किया हुआ है मलेशिया में
0: ठीक
1: जी, इंटरनेशनल लेवल पर वुशु मार्शल आर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सेकंड पोजीशन रही है, जिसमें हमारी उस कैटेगरी में मैं अपने वेट 52 के अंडर खेड़ी और मैं सेकंड पोजीशन ली है, सिल्वर मेडल में हासिल की है
0: माशाल्लाह बहुत
1: जी।
0: खूब। तो मेरा लगा कि मारी बरादरी की शायद जम्मू कश्मीर की तम पहली औरतें बच्ची हैं जी बाहर जाके इस तरीके नाल जीत के आई हैं
1: जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और उस तो बाद मैंने लगे मैंने देख के आज हमारी बिरादरी की
0: जी।
1: काफ़ी और बच्ची हैं जिड़ी मुल्क ने रिप्रेजेंट करें लगी
0: माशाल्लाह बहुत बड़ी
1: जी
0: गल है। तो देखो ना जो जो खेल कूद का सिलसिला है, तब बॉक्सिंग है या मार्शल आर्ट है,
1: जी
0: इसके पीछे कारगरों को सपोर्ट लाजमी है,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कई लोग है जितना अपनी बच्ची ने पढ़ाता नहीं थे,
1: जी
0: और
1: जी
0: खेल कूद में हिस्सा लेना तो बड़ी गल है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: कैसे रही हो तुमने जो देहरा की तरफ से एक स्पोर्ट?
1: जी, शुरू में तो आई मुश्किलात क्योंकि
0: ठीक
1: माहौल सो नहीं था
0: जी
1: इलाका में, मतलब बच्चियां ने पढ़ने वास्ते स्कूल कॉलेज नहीं चलाना था, तो फिर एक मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ना ट्रैक सूट ला के जाना बहुत मुश्किल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है, मेरा जो बड़ा भाई है उन्हें को काफ़ी सपोर्ट रही है,
0: जी
1: दो भाइयों को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है, माँ को सपोर्ट रही है
0: ठीक
1: जी इस चीज़ में कि तो अगर अपनी मतलब कोई पहचान बढ़ाने वास्ते करे तो हम इसमें कोई हर्ज नहीं है, और मतलब कोई अगर अपनी डे में कोई गलत चीज़ नहीं है इसमें,
0: जी।
1: तो उन्हें की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है
0: जिस वक्त है तब एक बावकार तरीका के नाल मुल्क में
1: जी
0: गई, मुल्क से बाहर गई, और
1: जी
0: उसी इज्जत के नाल एक वकार के नाल
1: जी
0: तब घर वापस आई, जीत के आई,
1: जी
0: कामयाबी लेके आई।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उस वक्त फिर घर आला के कहता या बाकी बरादरी का लोग जो पहला
1: जी
0: नुकताचीनी
1: ये
0: करता
1: चीज़
0: है?
1: हम बिल्कुल तुमने याद दहानी की मेंशन करना चाहूंगी कि एक और चीज़ों का कहना भूल गई थी मैं, एक दो बार मेरा नेशनल इस चीज़ तो मिस भी हो गया था कि मेरा बीच में एग्जाम आ गया था
0: ठीक
1: जी, तो एग्जाम और उसना बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा
0: मुश्किल
1: मुश्किल
0: है
1: हो गया था, तो
0: ठीक
1: इवन फैमिली मेरी तैयार हो भी गई थी, लेकिन मेरे कुछ एक मतलब समझो तुम टीचर एक थो एक उसने टाइम नहीं मन मतलब यूँ मशवरा देते हो कि ना वह नेशनल खेल ना चले या एग्जाम दिए,
0: ठीक
1: तो उस टाइम एक वो एक मतलब रुकावट एक समझो मेरा कैरियर में स्पोर्ट्स कैरियर में वह भी आई, लेकिन उस तो बाद और भी बाकी जिस लगू चलूँ थी बार आसपास का के था कि ना बच्ची है इतना करूँ बार तुम क्यों चला मैं
0: ठीक
1: माहौल नहीं है ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन वही लोग फिर जिस लगू मेडल लेके आई तभी फिर मुबारकबाद नहीं आया
0: जी जी
1: जी
0: तो कुदरती इंसान जिस वक्त घर से निकले ना, मुश्किलात जरूर आए,
1: जी जी
0: और जब
1: बिल्कुल
0: उनको मुकाबला करके जिस वक्त कामयाबी हासिल करा तो फिर
1: जी
0: सारा ही अपना हो जाए।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: खैर यू है कि जिंदगी को एक अहम हिस्सा एक
1: बिल्कुल
0: पड़ा है,
1: बिल्कुल
0: तो इसमें इंसान आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी
0: और इस मेरा दो चीज सवाल आए लगा,
1: जी
0: एक तो स्पोर्ट
1: जी
0: खेलकूद और
1: जी
0: नाल तुमने सेल्फ डिफेंस की गल की।
1: जी जी बिल्कुल
0: पहला सवाल मेरा यू रहेगा कि गेम्स जुड़ी हैं
1: जी,
0: खेलकूद का, इसका क्या फायदा है?
1: गेम को फायदा जी हम तुमने दसूँ कि अगर आज जो कैरियर अगर किसी ने बनाना है वो स्पोर्ट्स एक बड़ी वास्ट मतलब है, इसमें बहुत सारा का फील्ड है कि
0: ठीक
1: जिसमें इंसान कैरियर बढ़ा सके, फॉर
0: जी
1: एग्जांपल एक अगर एथलीट है वो मतलब खेल के जरिए अपना कैरियर बढ़ावा है, को उसमें
0: ठीक
1: स्टेट ना नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने आज बाजाबता एक स्कॉलरशिप भी दिया, और
0: जी
1: अगर कोई ओलंपिक या एशियन वगैरह इवेंट में जो वर्ल्ड का बड़ा
0: जी
1: बड़ा इवेंट है उन्हें अगर पार्टिसिपेट करा है उसने बाजाबता SRO एक बने, या
0: ठीक
1: नेशनल लेवल पर भी एक SRO जो कुछ गेम ऐसी है जी SRO में SRO के अंडर जी गेम आवे
0: ठीक
1: उन्होंने अगर कोई उन्हें कोई अगर मेडल करेगा उसने बाजाबता SRO के तहत जॉब मिले।
0: ठीक
1: दूसरी चीज ये है कि मेन चीज असली जी मेन वजह है स्पोर्ट्स की गेम्स की मेरे नजरिया में, और मैं उस चीज पर अपनी मतलब जिंदगी में भी अमलाई जड़ी है कि फिजिकल फिटनेस रहे बंदा के
0: ठीक
1: अंदर, काफी सारी बीमारियां थे हम दूर रहा,
0: एक डिसिप्लिन भी आ
1: एक
0: जाए
1: डिसिप्लिन रहे, एक टीम मैनेजमेंट रहे, एक
0: ठीक
1: लीडरशिप क्वालिटीज इंसान के अंदर
0: ठीक
1: बने
0: जी
1: जी। तो दूसरी चीज यह है कि स्पोर्ट्स

0: कमा भी काफी सारा और उसका पार्ट है, जहाँ के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है,
1: ठीक
0: स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है,
1: जी
0: स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है वगैरह,
1: ठीक
0: मैक्सिमम मतलब फील्ड है जिन्हें के अंदर इंसान अपना कैरियर चुन सके।
1: जी ते
0: जी
1: कई दफा जैसे हमारा बच्चा खैर बाहर आंगनी में खेलना शुरू करे या बाहर ग्रामा तो
0: जी
1: माँ बाप बिल्कुल उन्ना ठाक लेना तो पाड़ी पाड़ते यो खेल कूद में सो ना ले के कहीं तो
0: ओ यो मैसेज देना चाहूंगा पूरा अपना बिरादरी का लोका ना, और पूरा स्टेट या मुल्क का लोका ना, कि जड़ा भी मारा मतलब गुजरी बिरादरी नहीं पूरा ना, कि
1: जी
0: बच्चा ना आजकल देखो तो मतलब बच्चा बच्चा जड़ा मारा है उन्हें ना खेल तू नहीं रोकना चाहिए
1: ठीक
0: जी, इस वजह से कि वे अगर मिट्टी में भी खेड़े आज साइंस

0: आपस में सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए, हम बचना ज्यादातर मतलब कहाँ के बाहर ना जाइए, चाट जाए कोई वो उस चीज पर मतलब रोकथाम नहीं लानी चाहिए, बचाना छोड़ना चाहिए ताकि उनको इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो,
1: ठीक
0: वे फिजिकली भी फिट हुए। दूसरी चीज यह है कि बच्चा ज्यादातर टाइम मोबाइल पर देख है बिल्कुल मारे, तो सोशली दूर होने
1: ठीक
0: लग गए। तो मेरी सारा मतलब वालदेन ने यही मैसेज है कि बच्चा ना खेड कूदन ते नहीं रोकना चाहिए,
1: ठीक
0: उन्होंने टाइम देना चाहिए पढ़ाई के नाल नाल, बाहर जोड़ा खेड वास्ते जाए उन्होंने। वे मेन चीज एक और वो मेंशन करना भूल गई कि स्पोर्ट्स जोड़ो है वो इंसान की जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन
1: ठीक
0: और फजूल टाइम ते इंसान ना दूर रखे, और
1: ठीक
0: खासकर जड़ी आज का दौर में एक बुरी लत या नशा की लत।
1: जी
0: मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं अपना मतलब इस लाइफ के अंदर अपना स्पोर्ट्स में जड़ा भी मतलब मारे नाल जड़ा कुलीग्स रहा है मेरा स्टार्टिंग से लेकर आज तक जड़ा भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें के अंदर मुझ सारी चीज चेंज देखी है मैं, ये कि उन्हें के अंदर मतलब जड़ी बाकी आम लोगों के अंदर बुरी आदतें आम लोगों के अंदर वे एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर नहीं होती हैं, वो इना बिदाता थे उना इना फजूल चीज़ा थे दूर रहे, वो अपना टाइम जो अगर आजकल का बच्चा अक्सर मतलब गलियां कोचा में बैठा रहे फिर एक दूजा नाल लग के बुरी सोहबत में आके गलत काम करने में मुलव्वस हुए,
1: जी
0: नशा में मुलव्वस हुए, वो टाइम अगर एक बच्चों एक नौजवान अपनी गेम ना देगा अपने खेल कूद ना देगा वो एक तो फिजिकली फिट रहेगा
1: ठीक
0: दूजो बुरी चीज़ों से दूर रहेगा।
1: जी क्या इस खेल कूद नाल इंसान की पढ़ाई पर कोई असर पै?
0: बिल्कुल भी नहीं मेरे
1: अच्छा
0: मिन्ना में यो मतलब मैं अपनी लाइफ से यो एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम जड़ो मतलब टाइम अगर पढ़ाई में दे के इंसान काफी
1: जी
0: ज्यादा टाइम अगर बैठो भी रहे कोई एक जगह
1: ठीक
0: तो वो इंसान कुदरती मतलब बोर हो जाए,
1: स्मार्ट बन जाए
0: यो हो जाए ना नहीं, अगर
1: जी
0: काफी टाइम एक जगह बैठो रहेगा तो थोड़ा मतलब लेजीनेस फील करे,
1: ठीक
0: अगर वो बीच में टाइम जो ब्रेक को टाइम है ले वो अपना अपना रिफ्रेश करे गेम के ना
1: स्मार्ट बन जाए
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी कोई असर मतलब मेरी लाइफ में मेरी पढ़ाई पर गेम्स के जरिए बिल्कुल भी नहीं आई, मैं बल्कि इसमें सुधारी हुई है।
1: जी तम के थारे को मतलब है कि एक तो स्पोर्ट इंसान ना आगे जाके एक कैरियर भी दिया है,
0: जी बिल्कुल
1: रोजगार का वसार भी
0: बिल्कुल
1: बन
0: जी
1: जाए
0: बिल्कुल
1: और ना ना इंसान बुराई भी बचे।
0: जी बिल्कुल
1: ठीक खैर मैं एक सवाल पूछू थो लेकिन नाल एक सवाल और रह गया थो,
0: जी
1: तब निकाल की थी सेल्फ डिफेंस की
0: जी जी
1: और खास तौर पर आजकल जो जो
0: जी
1: माशरों बिगड़ गया है
0: जी बिल्कुल
1: हमारी जी बची है वे
0: जी
1: भी हूँ जिस तरीके नाल पहला बार बची गैर महफूज अपना अपना समझे थी
0: जी
1: और
0: जी
1: भी हालात इतमारी वादी के बीच भी आ गई है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: सेल्फ डिफेंस खास तौर पर बच्चियां वास्ते क्यों मुफीद है? तो यू है सेल्फ डिफेंस पहले की चीज़ है
0: सेल्फ डिफेंस को मतलब है हमने अपना तहफ़ खुद करना है।
1: ठीक
0: सेल्फ डिफेंस ये है कि मार्शल आर्ट के जरिए जो मैं सीखी हो कि हम मतलब एक हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाए,
1: ठीक
0: हम वे टेक्निक सीख लिया कि जिसना हम अल्लाह ने करे अगर हमारे ऊपर कोई
1: हम लोग करें
0: हम लोग करे कोई
1: जी
0: जानवर ही है कोई इंसान ही कोई मतलब दरिंदो ही कोई
1: ठीक
0: इंसान पर अगर हम लोग करे हम ना उस तो किस रंग बचना है हम ना अपना आप किस रंग बचाना है
1: जी
0: एक लड़की ना, इसमें हम मार्शल आर्ट में जो सेल्फ डिफेंस में हम टेक्निक सीखा
1: जी
0: किकिंग है पंचिंग है बाकी मुझ सारी टेक्निक सीखा कि हम ना किस रंग अपना अपना बिचाणो है किस रंग उसना अटैक करना है दूजा
1: ठीक
0: पर। जी
1: हाँ
0: एक तो इंसान के अंदर खुद मुख्तारी खुद हिम्मत आ जाए, दूजा वो
1: ठीक
0: टेक्निक के जरिए अपना अपना बचा के
1: जी
0: किसी भी मतलब अनहोनी से अपना अपना बचा सके।
1: जी
0: जी
1: लेकिन उन बारी बदकिस्मती समझो कि हमारे ग्राई इलाका में इस किस्म की चीज़ें भी सिखाई नहीं जाती,
0: जी
1: क्या
0: जी
1: स्कूलों के बीच या कितने कॉलेजों में इस किस्म को कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि बच्चे ने ये इस किस्म की ट्रेनिंग भी सिखाई जाए?
0: बिल्कुल जी होना चाहिए, हमने थारे गल इस चीज में भी थोड़ा मेरा इशारों मिल गया कि हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में 1-2 साल पहला एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है तम बखूबी वाकफ होएगा,
1: जी
0: तो उसके अंडर हम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमना हर एक डिपार्टमेंट थे एक एक मेंबर चुने थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसके एक मेंबर रही थी, तो हमने फिर कुछ जया में कराया था पहला भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समग्र शायद मैंने लगे कि
1: जी
0: उसके फंड इसके मतलब इम्प्लीमेंट की थी और
1: ठीक
0: स्कूला में यो निज़ाम कियो तो एक एक साल वास्ते
1: जी
0: जी, तो उस तो बाद वो फिर तो दोबारा बंद हो गया है, ऊँचा हुआ कि मेरी या अगर मैसेज आला काम तक पहुँचे तो वो यही मैसेज देना चाहूँ कि वे दोबारा इसना सिलसिला ना जारी जारी करना चाहिए, एक या दो बार ना मतलब ये नहीं होता क्योंकि वे कुछ बच्चा ड्रॉप आउट हो जाए कुछ पास आउट होकर चले जाए
1: ठीक
0: बाकी जड़ी हमारी आने वाली जनरेशन है उन तक भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमारा यूटी J&K में या पूरा मुल्क में ऐसा प्रोग्राम्स होना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स सेल्फ डिफेंस का, फॉर फ्लंग एरिया में भी और सिटी का बच्चा में भी यह चीज़ पहुँचनी चाहिए।
1: जी तो जिस वक्त तुमने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थारो एक नाम भी مشہور ہو گئی ہو, علاقہ کی بچی بھی اور باقی بچی بھی تھارا رابطہ کرتی رہیں گی
0: جی جی
1: کہ یہ
0: بالکل
1: کس طرح اپنا سیکھنا چاہیے, گیمز میں کس طرح آنا چاہیے.

0: तो उन तब किस तरह की सलाह देती रही?
1: जी बिल्कुल, उस टाइम से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना बीपीएड करने तो बाद पीजी भी कियो, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में ही हूँ, कम भी करूँ और मेरी
0: अच्छा,
1: पोस्टिंग
0: तब
1: आज
0: सरकारी जॉब है थारी,
1: जी।
0: ठीक।
1: तो स्कूल का बच्चा ना भी, और बाकी आउट ऑफ स्कूल मतलब बाकी भी इलाका के बच्चे या डिस्ट्रिक्ट की जित कितने पहचान है, बच्चा अप्रोच करें, बच्चा
0: जी
1: मतलब सलाह लें, खासकर फीमेल फोक जड़ी है विले। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हर जगह इंसान वो सब पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यह
0: ठीक
1: प्रैक्टिकल चीज़ है,
0: जी
1: या एक बार दसन नाल या मतलब
0: जी
1: वर्बली के नाल इंसान नहीं सीख सकता है।
0: ठीक
1: इस वास्ते प्रॉपर टाइम और प्रॉपर मतलब इसका टेक्निक से जड़ा सिखाना, कम से कम इंसान ना वो तो स्कूलों में भी कम से कम 5 दिन भी काफ़ी नहीं है, लेकिन
0: जी
1: कुछ ऐसी टेक्निक है खाली सेल्फ डिफेंस की कि कम से
0: ठीक
1: कम 5 5 दिन को एक प्रोग्राम होना चाहिए स्कूलों में, जिसके जरिए बच्चा ऐसा सीख सकें। स्कूल में नहीं, हर एक इंस्टीट्यूशन में
0: जी
1: बाकी या आम ग्राह में भी ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जो बच्चा अगर स्कूल मिसाल नहीं भी जाता है, खासकर आजकल का माहौल में जरा हम आए रोज सुना के बच्चियां नाल
0: ज्यादा में लगे
1: ज्यादती होने
0: जी
1: लगी, उस ना लेके के इस चीज की अशद जरूरत है कि बच्चियां ना इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चियां
0: जी
1: ना।
0: ते आपदा जी जरा ये इस तरफ थारी शो अलमारी के बीच इतना इनाम ते इतना गिफ्ट या प्राइज है कि जो अलमारी में बैठता नहीं, कोई तमने साइड में भी रखी हुई है, तो कितो कितो तमने ये हासिल किया है, कह महसूस हुआ तमना थारा
1: मेरा
0: कहा राणा ना जिस वक्त ये देखें कि इतनो इतना इनाम हमारी बच्ची ने हासिल किया।
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत प्राउड फील करा, ये मेरा अवार्ड जो है ये स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है। स्कूल स्टार्टिंग में जरा मैं मतलब इंटर स्कूल वगैरह खेल लिया, ज़्यादातर जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल को एक सर्टिफिकेट है। बाकी
0: जी
1: डिपार्टमेंट ने भी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी
0: ठीक
1: इस चीज़ ना उन्होंने एक 2021 में करियो तो डिफरेंट फील्डा थे चुनिया था, जरा मतलब जरा ने
0: जिन्हें
1: अच्छा
0: जिंदगी का
1: काम किया
0: शोभा था।
1: तो
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी तो
0: ठीक
1: उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में यूटी ऑफ जेंड के माँ पहली फीमेल जड़ी ने ट्राइबल
0: माशाल्लाह
1: इसते कबीला ते रिप्रेजेंट किया है इंडिया ना। बाकी मेरा नेशनल का अवार्ड है और डिपार्टमेंट का भी है जी, डिपार्टमेंट के अंडर भी हमने बच्चा ना ट्रेनिंग वगैरह जड़ी दी है, उसमें भी डिपार्टमेंट ने हमना हौसला अफजाई करने वास्ते जड़े इनामा देता है उन्हें की या शोर मारी है
0: जी।
1: जी।
0: तो आप जी शुरू की तरफ चला जिस वक्त तब निकल तो कि तब बिल्कुल छोटी शायद 1 साल की थी, थारे वाले साहब इस दुनिया से रुखसत हो गया था,
1: जी
0: उस हालत में और उस दिन लेके आज तक तब ने तालीम हासिल की, तब ने गेम्स खेली, सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस की और उसके बाद इंटरनेशनल पर जाके खेली और इनाम लिया और तब ना इसी वजह से सरकारी नौकरी भी मिल गई, तो क्या कितना यूँ मुश्किल था यूँ काम यूँ सफर जो तुम पहला बचपन से लेकर आज तक देखें कैसो उस वक्त हो और लगा था तुम ना कि तुम इत पहुँचेंगी या आज के महसूस करें?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फख्र हुआ है इसो, लगे तो नहीं थोड़े, लेकिन
0: जी
1: जो क्या मैंने इंसान के अंदर जिस चीज़ की चाहत हुई तो वह अल्लाह ताला फिर रहा खुद दसे।
0: ठीक
1: मेरे अंदर शौक थी दो ही चीज़ें, दो ही चीज़ें की शुरू थी शौक थी, और शौक यह थी कि हूँ कुछ ऐसा डिफरेंट करूँगा।
0: ठीक
1: अक्सर हमारा माशरा में मतलब हर फील्ड में ज़्यादातर तो डॉक्टर इंजीनियरिंग
0: जी
1: चले, लेकिन मेरे जहन में यूँ थो कि हूँ कोई डिफरेंट करूँ जो मतलब मारा मुआशरा में आज तक किसी ने ना किया हुआ। तो
0: ठीक
1: मारा मतलब खासकर गुजर बराती में मारा एरिया थे, मैं लगे कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोर थे भी स्पोर्ट्स फील्ड में कोई ऐसा नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा मतलब बच्चा अवेयर हो गया है कि और पार्टिसिपेट करें। लेकिन मेरे अंदर यह शौक थी, जब इंसान के अंदर शौक हुआ है तो फिर इंसान मतलब राह खुद ही बन जाए इंसान
0: जी
1: इस, मुश्किल काफ़ी सारी आई लेकिन इंसान ना मुश्किल नाल सामना करना पाए, मुकाबला करना पाए और ता चल के इंसान इतना कामयाबी मिले।
0: जी बहुत अच्छो। तो चलता चलता आखिर पर हमारी बरादरी की बच्चियाँ ना भी या बाकी भी जरा भी तुमने इस वक्त आकाशवाणी से नगर से सुने लगा तब सब ना अपनी तरफों के पैगाम देना चाहेंगी, माइक था रहे सामने।
1: जी मेरा पैगाम पूरा फीमेल फोक नहीं हुई है कि अपना अंदर एक हिम्मत पैदा करो और अपने अंदर जिस चीज़ की भी तमन्ना मतलब जिस फील्ड में भी थारो इंटरेस्ट है, वो एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि किसी भी अगर फील्ड में किसी भी बच्चा या बच्ची के अंदर जो टैलेंट है, पहला अपना बच्चा को टैलेंट ना देखो, उसके ऊपर ज़बरदस्ती न थोपो। अक्सर मतलब बच्चा ना प्रेशराइज करा या मतलब बच्चा ना थोप छोड़ा किसी भी फील्ड पर, लेकिन वो आगे चल के बच्चों उस चीज़ में कामयाब नहीं होता है,
0: ठीक
1: जबकि मतलब बच्चा के अंदर टैलेंट दूजी तरह को है।
0: ठीक
1: ते हम उसना कुछ और चीज थोप छना,
0: जी
1: अगर हम उसना गाइड करांगा, यूनी एक

0: कि बच्चों अगर कोई सी गलती मतलब उसके अंदर शौक है या कुछ है हम उसी ऊपर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी बाबत हमने काउंसलिंग करनी है, अगर अच्छा वो रहा है तो उसमें हमने उसका सपोर्ट करनी चाहिए, और अगर मतलब उसके अंदर कोई टैलेंट है उस टैलेंट ने हमने चेक करना चाहिए और उसी के
1: जी
0: ऊपर हमने बच्चा ना छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में कल तक उसका पछतावा ना हो और वो अच्छा काम कर सके।
1: जी
0: जी
1: एक शायद मेरा सवाल और भी वैगो थारे दा इस पैगाम के बाद आने की मुलासत दे नहीं रहता। देखो देख थारा कारखाने थारा पर एक भरोसा ता जाके तब इंटरनेशनल तक पहुंची और
0: जी
1: तमने
0: जी
1: इनाम भी लिया, खेडियो भी सारे कुछ
0: जी
1: कियो।
0: जी
1: इसी तरीका ना जिस वक्त हमारी बिरादरी का बच्चा या किसी भी बिरादरी का बच्चा
0: जी जी
1: बच्चे पर भरोसा करें,
0: जी
1: उन्हें डेरा ते कटे,
0: जी
1: उन्हें
0: जी
1: किसी भी फील्ड में
0: जी
1: चले,
0: जी
1: फिर उनकी क्या जिम्मेवारी है कि उन्हें फिर क्या करना चाहिए ताकि माँ बाप को जो ना है बरादरी को ना है
0: जी
1: वो फख्र ना उचो रहे।
0: जी बिल्कुल, इस चीज़ में वो ऐड करना चाहूंगी कि सबसे बड़ा रोल वह बच्चा की तरबियत में कार को,
1: ठीक
0: पेरेंटिंग जड़ी है वह मतलब सही नहीं होती है।
1: जी
0: आज का मुआशरा में पेरेंटिंग सही नहीं होती है, माँ बाप जड़े हैं वे अपना बच्चा ना मतलब हम अगर बच्चों जरिए करो जो हम उसका मोबाइल थमा के
1: ठीक
0: अपना आप ना फ्री कर लें, बच्चा की तरबियत सही होगी ता ही उसके मतलब वो भरोसा काबिल हो जाएगा।
1: ठीक
0: खासकर माया को रोल मेरा हिसाब माँ बच्चा बच्चा को माँ बाप दो को अगर मतलब
1: ठीक
0: माँ बाप और अक्सर जरा वालदे ने वे मतलब वालिद साहब हुए बच्चा का वे घरों बाहर हुए,
1: जी
0: माँ को काफी सारा रोल है अगर तरबियत अच्छी है बच्चा की वो फिर भरोसा खुद दे मतलब
1: ठीक
0: कायम करे।
1: जी
0: लेकिन जब हमने बच्चा ना टाइम ही नहीं तो बच्चा ना उसकी तरबियत ही सही नहीं की तो फिर
1: जी
0: हम उसना उस तो क्या भरोसा रखेंगे, उस तो क्या
1: ठीक
0: उम्मीद रखेंगे भरोसा की।
1: जी जी
0: जी
1: तो अब अख्तर जी तो हमने अपना कीमती वक्त दे दो और अपना हवाला नाल और बेहतरीन पैगाम भी दे दो, एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू की तो हमने खास तौर पर स्पोर्ट्स का हवाला नाल, सेल्फ डिफेंस का हवाला नाल या बच्चों की बाकी तालीम का हवाला नाल। आज वास्ते थारो बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया शुक्रिया थारो भी बहुत शुक्रिया हमने इस काबिल समझ वास्ते और तशरीफ आवन वास्ते।
1: जी सामिन, तुम इंटरव्यू सुन रहा था। आज की मारी मेहमान थी चौधरी आबिदा जी और इन्हों के ना गल की मोहम्मद यूनस कालूखेल साबोरा ने। जी सामिन, इस नगमा के ना ले आज का प्रोग्राम को वक्त मुकरना आयो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूकवानी ते अपना मेज़बान शबीरा सवाल दियो इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

0: सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहाँ चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने उत्त सिकल डेवलपमेंट सेंटर ते एक रेजिडेंशियल स्कूल को भी दौरो कियो। इस तू पहला वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू अबाई गिरा पहाड़पुर को भी दौरो कियो। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू ना उनका 68वां जन्म दिहाड़ा पर मुबारकबाद भी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहो कि इलम ते रूहानियत का अजीम विरसा को अहियाए नऊ ते भारत की तहजीब ते तमदन रवायत ना मजबूत बनानो आम सब को बुनियादी मकसद है। SKICC श्रीनगर में मुनकदा श्रीनगर नालंदा डायलाग नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहो कि इस तरह की मुस्तकबिल शनासी नाल हमारी नौजवान नस्ल ना अपना शानदार माजी ते जदीद टेक्नोलॉजी के नाल जोड़े जा सके। उन्होंने कहो कि श्रीनगर नालंदा डायलाग विकसित भारत ते कन्या नजरिया ना हिम्मत के नाल अगे बधाण को एक मुनफरद मौको फराहम करते रहे हो।
2: कश्मीर और नालंदा के ज्ञान के केंद्र और विद्वानों ने मिलकर पूरे विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यताओं को निर्मित किया है और इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भारत की उस महान सभ्यता का उत्तराधिकारी है। यह विरासत हमारे लिए एक प्रकाश पुंज है और श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से इस प्रकाश को बुद्धिमत्ता साहस और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का अवसर हमें मिला है। हमें शासन संस्कृति विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
1: वाजह है कि इस तकरीब को इनकाद नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल नालंदा महावीर और कश्मीर यूनिवर्सिटी का बाहमी इश्तराक ना कियो गयो थो। LG मनोज सिन्हा ने मगरबी बंगाल का योम तासीस का मौका पर उत्काल लोगों ने मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल ने मुल्क की जंग आज़ादी में कलीदी किरदार अदा कियो ते नाल ही उत्काल लोगों ने अदब आर्ट संगीत ते साइंस का शोभा जात का इरतका में भी अहम रोल अदा कियो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह रियासत तरक्की ते नमू का मजीद मनाजिल तय करेगी। सेहत तबी तालीम की वजीर सकीना यतू ने कहा कि सैलाब तो बचाव वास्ते बुनियादी ढांचा ना तकवीत देने सरकार की तरजीहात में शामिल है ताकि लोगों की सलामती के नाल अवामी असासा ना कुदरती आफात तो बचाया जा सके। वे आज लाइसुकुल गांव में फ्लड प्रोटेक्शन फंड को इफ्ताह कर रही थी। उन्होंने उत्तर सैलाब तो तहफ्फुज़ ना यकीनी बनाने वास्ते 4,96,00,000 रुमालियत का 2 जामे प्रोजेक्टों को संगे बुनियाद भी रखियो। इस तू बाद उन्होंने जिला का गुडर इलाका को दौरों करके उत लोगों का मसाइल सुने थे मौका पर ही उन हाल वास्ते अहकाम भी जारी किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने तमाम डिप्टी कमिश्नर ना हदायत दी है कि वे इल्तवा में पिया मोबाइल टावर साइट्स का मामला ना तेजी के नाल हल करें। उन्होंने अफसर पर जोर दिया कि वे UT में ऐसा रिहायशी इलाकों की निशानदेही करें जित अजें तोड़ी मोबाइल खिदमत मुयसर नहीं की जा सकी ताकि UT का तमाम रिहायशी इलाकों ना मोबाइल नेटवर्क कवरेज फराम की जा सके। भी आज स्टेट ब्रॉड बैंड कमेटी की 11वीं मीटिंग के नाल सदार कर रहा था। 12वां बैन अवी योगा डे पालक मनाए जा रहे हैं। इस साल योगा का बैन अवी तैड़ा को मौजू है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस सिलसिला में वजारत कल्चर की तरफों मुल्क भर का 100 अहम मुकाम पर योगा तकरीबात को इनका किया जा रहा है। कौमी सतह की सब तो बड़ी तकरीब कोलकाता का तारीखी रेडियो रेड रोड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुनद होगी। जम्मू कश्मीर में भी योगा का बैन अवी तैड़ा का सिलसिला में तमाम इंतजाम मुकम्मल किया गए। वादी में सूबाई सतह की सब तो बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनद होगी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वजीर सेहत सकीना यतू के अलावा कई दूजी शख्सियात शिरकत करेंगी। जम्मू में ऐसी एक तकरीब PG कॉलेज में मुनद हो रही है। हमारा नुमाइंदा खुर्शीद पडरू के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन तकरीबात का इनका वास्ते नामजद किया गया नोडल महकमों आयुष डिपार्टमेंट ने तमाम तैयारी मुकम्मल की। जम्मू कश्मीर का डायरेक्टर आयुष डॉक्टर अजय टिकू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ना तफसील दसालतामा कियो।
3: हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। SKICC में हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मैडम सकीना यतू जी और साथ में हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी बुला रहे हैं और मुझे आशा है कि इसमें कम से कम 6,000-7,000 लोग आने की पूरी हमें संभावना है। वैसे ही जो गांधीनगर में हम जम्मू में हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और वहाँ पर भी 4,000 लोग वहाँ पर आ जाएंगे। लोगों से ये अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कल सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है कार्यक्रम। हर जगह ये कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहनचरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति

0: पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर शब्द 5 मिनट सबित पेश गानी बाइन हिंदी खतर अजुक प्रोग्राम।

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيقول

शेरबीन के समय कशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, कश्मीर दुनिया के अजीम तरीन इल्मी मराकज में शुमार होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जीएमसी अनंतनाग के माहिर अमराज कल्ब संगीन इल्जाम के घेरे में। रहबर खेल मुलाजमीन को अनकरीब मुस्तकिल किया जाएगा, वजीर खेल सतीश शर्मा। और हजरत जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारतगाह की तामीर नौ अगले माह शुरू होगी।

0: अगले हफ्ते शुरू होगी। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हा?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
7: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
8: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट, तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
9: तो क्या शक्ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
8: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
9: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्राव नहीं हुआ। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
8: मगर यह है सठा द्रो?
9: हाँ ना ना, सुई कम मत, मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
10: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप तक।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
12: सेहत चु हर एकिस इंसान सुंद बुनियादी हक, मगर आज ते चु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मंज हॉस्पिटल ते सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज चु रुकावट बनान ते जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान। मगर वन चु अत हाल जेके सेहत ऐप, ये चु तुहुंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुनी ते जरूरतु ख्याल चु थावान। ये ऐप चु एंड्रॉइड ते आईफोन दोश्वनी मंज दस्तियाब। यात ऐप मंज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह ते मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक कुछ मालूमात, तो सरकारी हेल्थ स्कीम अनहिस जानकारी, बेचे आसित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस ते अवेलेबल। चाहे तू मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अक साध शहरी छो, जेके सेहत चु सारनी सूद, सिंपल, सेफ ते सिर्फ तोहे खतर।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
0: शर्मीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर माजी में एशिया के अजीम तरीन इल्मी मराकज में शुमार होता था, जहां अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और दीगर खित्तों से उलमा और दानिश्वर इल्म हासिल करने आया करते थे। आज SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा नालंदा डायलॉग 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कश्मीर और नालंदा के दरमियान एक गहरा तहजीबी और इल्मी रिश्ता मौजूद है और दोनों खित्ते दुनिया के अहम तरीन मराकज इल्म रहे हैं, जिन्होंने फलसफे, साइंस, सकाफत और फिक्री मुबाहस को नई जहतें अता की हैं।

0: सकता है, लोगों के जानों के साथ अगर इस तरह कोई खेल सकता है तो मेरे ख्याल से इससे बदकिस्मती की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जहां तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, इनिशिएट हमने इंक्वायरी की और हम ही इसको कंक्लूजन तक पहुंचा रहे हैं। आज उसका सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है, आज आगे जो भी करना होगा। मैं हर एक डॉक्टर को यही कहना चाहती हूँ, हमारी भाई है, हमारी बहने हैं, लोगों के जानों के साथ कंप्रोमाइज मत करो। आपने ऑलरेडी सरकार ने आपके पास इसके लिए तनख्वाह दी है, जो आप जॉब कर रहे हो ये लोगों के लिए है, ताकि लोगों को पेशेंट केयर में आप मदद कर सको। तो सरकार इस पे लगी है और ऑलरेडी एक्शन हुआ है, आगे भी जो करना होगा वो भी सरकार।
1: तहकीकात को मंतक अंजाम तक ले जाया जाएगा। बात कर रही थी सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू। समन जीएमसी अनंतनाग के माहिर अमराज कल्ब को जिन इल्जाम की पादाश में मुअत्तल किया गया है, उनकी निस्बत से तबी माहरीन की एक टीम ने चंद माह कबल इब्तदाई जांच करके इल्जाम को दुरुस्त करार दिया है और वाजह किया है कि मजकूरा डॉक्टर ने 27 ऐसी सर्जरियां अंजाम दी हैं जो तिबी नुक्ता निगाह से अंजाम देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। इस मामले के ताल्लुक से जाहिर है कि हतमी रिपोर्ट कुछ वक्त बाद सामने आ ही जाएगी और मामले के तमाम हकायक सब पर वाजे होंगे। सो फिलहाल मोतली का जो हुक्म दिया गया है उसकी बुनियाद भी तिब्बी नौयत की जांच पर है। आपको याद होगा कि अभी चंद रोज पहले हमने कैंसर मरीजों के लिए इम्यूनोथेरेपी के गहरे मुजर असरात के ताल्लुक से एक रिपोर्ट नष्ट की थी और ये रिपोर्ट नष्ट किए जाने से महज चंद रोज कबल खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में मुनक्किदा इम्यूनोकॉन 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी तकरीर में जोर देकर कहा था कि कैंसर मरीजों के लिए इम्यूनोथेरेपी के इस्तेमाल की निस्बत से अजसर नौ सोचने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मरीजों को देखा है जो इम्यूनोथेरेपी कराने के बाद दीगर कई अमराज बिलखसूस अमराज कल्ब का शिकार हुए और कुछ वक्त बाद ही मौत के मुंह में चले गए। दरअसल वादी कश्मीर के तिब्बी मंजरनामे की निस्बत से एक परेशान कुन हकीकत यह भी है कि यहां जचगी यानी चाइल्ड डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जर्राहियां अंजाम दी जाती हैं। मुल्क के कई बड़े माहरीन अमराज ख्वातीन का मानना है कि वादी में जचगी के लिए की जाने वाली सर्जरीज में से बेशतर गैर जरूरी होती हैं और अगर मुतल्लिक डॉक्टर फकत अपने पेशे के असल लवाजमात और हामिला खातून की मजमूई सेहत को खुशनीयती से देखे तो बेशतर मामलात में बड़ी जराहियां अंजाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सब बयान करने का हमारा एक ही मकसद है कि तिब का पेशा, डॉक्टरी का पेशा जो रिवायती तौर पर अफजल समझा जाता था, चूंकि इसका गहरा ताल्लुक इंसान की सेहत और उसकी जिंदगी से है, कहीं राह चलते चलते भटक तो नहीं गया है। इस सवाल का जवाब भी तिब्बी माहरीन ही दे सकते हैं, चूंकि पेशे की तकनीकी बारीकियों से वही वाकिफ हैं। सो हमें सिर्फ यही उम्मीद रखना होगी कि जब उन्हें किसी बेजाबतगी या मुबैना बेजाबतगी की जांच पड़ताल करने को कहा जाए तो वो इंसानियत के उसूलों की पासदारी करते हुए निहायत बेबाकाना अंदाज में अपना फर्ज अंजाम देंगे। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटे छोटे रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए लीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं और साथ ही साथ

0: आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, JK सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने आवामी सेहत के तहफ्फुज के पेश नजर इंसानी इस्तेमाल में आने वाले 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तश्कील दी गई माहिर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर लिया गया है। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि मजकूरा अद्वियाती मुरक्कबात के इस्तेमाल के लिए मुनासिब तिब्बी जवाज मौजूद नहीं है और इनके इस्तेमाल से सेहत को मुमकिन खतरात लाहिक हो सकते हैं। हुकाम के मुताबिक पाबंदी लगाई गई अद्वियात में जिल्द के अमराज, दर्द से निजात, ऐंठन या स्पाज्म के इलाज और बाज एंटीबायोटिक अद्वियात पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मुश्तरका मुरक्कबात शामिल हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि अद्वियात से मुतल्लिक तकनीकी मशावरती बोर्ड के तहत कायम माहरीन की कमेटी ने इन अद्वियात का तफसीली जायजा लिया और नतीजा अख्ज किया कि इनमें शामिल बाज मुरक्कबात साइंसी और तिब्बी लिहाज से मौसर या जरूरी साबित नहीं होते हैं, जबकि इनके इस्तेमाल से मरीजों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब होने का अंदेशा मौजूद है। यानी इससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, वक्फे से पहले जो बात हमारी हो रही थी तिब के ताल्लुक से, अद्वियात के इस्तेमाल के ताल्लुक से, अद्वियात को तजवीज करने के ताल्लुक से, उसकी कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तायीद कर ली है। इधर PDP के जिला कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा के पेश नजर बहुरीपुरा, सादपुरा और जिला बारामुल्ला के दीगर शिया अक्सरियत वाले इलाकों में इमाम बारगाहों के आसपास सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने का इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है। अलावर्जी उन्होंने शिया अक्सरियत वाले इलाकों में बिजली और पीने के पानी की फराहमी माकूल बनाए रखे जाने के साथ साथ मुतल्लिका आबादी को इजाफी राशन फराहम करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने आज TRC टंगनार दत्तपथरी में एक मीटिंग की सदारत करते हुए दत्तपथरी, तोस मैदान और खाग इलाके से जुड़े तामीर और तरक्की, बिलखसूस सियाहत से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर तवज्जो मरकूज की। मीटिंग के दौरान मजकूरा इलाकों में सड़क राबितों को बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया। बाद में MLA मौसूफ ने द्रंग बंगला पथरी और द्रंग खानका रूट्स पर नए सियाहती मकामात की निशानदेही करने के लिए दौरा किया। उनके हमरा SDM खान साहब, DFO बरगाम, SDPO खान साहब, तहसीलदार खान साहब और दीगर कई अफसरान भी थे। समय जम्मू कश्मीर में खेलकूद के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की काविशें शद्दुमा से जारी हैं और नौजवानों को खेलकूद की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत वादेबंद है। इन बातों का इजहार आज खेलकूद और उम्र नौजवाना के वजीर सतीश शर्मा ने बरगाम में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। वाजिर है कि वजीर मौसूफ ने आज बरगाम में मुनाकिद होने वाले टेक्वांडो टूर्नामेंट के अलावा चंद दीगर खेलों के लिए मुनाकिद किए जाने वाले टूर्नामेंट की तकारीब में शमूलियत की। सतीश शर्मा ने मजीद कहा कि खेलकूद के शोबे में सियासी मुदाखलत मनफी और नापसंदीदा असरात छोड़ जाती है। एक रिपोर्ट के साथ बरगाम से यूनुस पर्रे।
3: तरजीहात बहुत है लेकिन रियासत का तरजीह उरूज पर है। नौजवान खिदमात और खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन बातों का इजहार आज यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा ने जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर जयपाल सिंह के साथ वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के दौरे के दौरान किया। सतीश शर्मा ने पहले इंडोर स्टेडियम बड़गाम का दौरा करते हुए हाउस टाइकांडो चैंपियनशिप के 30वें एडिशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में रहबरी खेल के उम्मीदवार अच्छी खबर सुनेंगे और कहा कि कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया है और आने वाले वक्त में मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और तमाम खामियों को पूरी किया जाएगा। बकौली सतीश शर्मा के NYC की तनख्वाह में जल्द ही इजाफा किया जाएगा और यकीन दिलाए कि खेलों से मुतलिक तमाम मसाइल काम के तहत है और वजीरी आला उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत खिलाड़ियों मुलाजमीन के तमाम जरूरियात और मुतालबात को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और उन्होंने LG से भी अपील की कि खेलों को सियासत से पाक होना चाहिए। इसके अलावा सतीश शर्मा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर भी रोशनी डाली और कहा कि खेलों के बुनियादी ढांचे की तरक्की रियासत की बहाली समेत अवलीन तरजात में शामिल है और मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रियासत का

0: मैदान है और इसे हुकूमत की तर्जात में शुमार किया गया है। वजीर खेल ने मजीद कहा कि वो अपने महकमे में शफाफियत चाहते हैं और वो खेल और खिलाड़ी में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बकौल शर्मा की मौजूदा हुकूमत में मुस्तैक लोगों को सामने लाया जा रहा है और जिसका फल सब के सामने पहली बार हमारे खिलाड़ी ने रांची ट्रॉफी को जीतकर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल टीम की शानदार कारगिरदगी की भी सताइश की और पूरे खत्ते में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के अजम का जोर दिया।
1: बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। बारामुल्ला में आला पाए के दीनी बुजुर्ग हजरत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारतगाह की इमारत का संग बुनियाद अगले हफ्ते रखे जाने की तवक्को है। वाजिर है कि आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरखशान दराबी ने ज्यारतगाह पर हाजिरी दी और इमारत की हालत का बगौर जायजा लिया। याद रहे कि ज्यारतगाह की इमारत नए सिरे से तामीर किए जाने का मुतालबा खासे वक्त से किया जाता रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर दरखशान दराबी ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा,
2: बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, 600 साल पुराना और इसकी एक अपनी वैल्यू है स्ट्रक्चर की भी और वहाँ पे जो अवलिया किराम जिनकी नूरानी बसीरत वहाँ पे हैं, जो बसे हुए हैं वहाँ पे, एक लेगेसी है। उस लेगेसी को बरकरार रखना और उस नूरानी मरकज को बरकरार रखना ये वक्त की जिम्मेदारी है। और अब चूंकि हेरिटेज होने के साथ साथ उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हेरिटेज करार दिया गया है और उसके ज़रिए से वहाँ पर कुछ काम को हाथ में लिया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरी तरह से स्ट्रक्चर को नए सिरे से नहीं बना सकते थे। लेकिन वहाँ जो स्ट्रक्चर आज के वक्त में मौजूद है वो सारा बूसीदा हो गया है, उसको प्रिजर्व करना मतलब मुश्किल है बहुत। लेकिन अब जब हमने ये सुना और वहाँ पे गए, ऑन स्पॉट हमारा फैसला ये रहा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड इस स्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाएगा और उसकी फाउंडेशन इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक रखी जाएगी ताकि ये जो तजब्जुब हर एक के दिल को जख्मी कर रहा था कि क्या होगा।
1: ये थी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरखशान दराबी जो कह रही थी कि अगले हफ्ते हजरत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह की ज्यारतगाह की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इधर आज नगरोटा जम्मू से लगभग 9000 श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर तुलमुला के रवाना किया गया, जहां के 22 तारीख को 22 जून को यानी सोमवार को माता खीर भवानी का मेला मुनाकिद किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब।
3: सालाना माता खीर भवानी मेले को लेकर जम्मू से कश्मीरी पंडित बिरादरी की बड़ी तादाद वादी कश्मीर के जिला गांदरबल में वाका तुलमुला इलाके की तरफ लगातार रवाना हो रही है। पिछले दो दिनों से लगभग 214 बसों में सवार होकर मेले में हिस्सा लेने वाले माता खीर भवानी के जायरीन की तादाद अभी तक 8524 तक पहुँच गई है। याद रहे कि हर बरस जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से खासतौर पर कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोगों को मेले का इंतजार रहता है और हर साल मेले में हिस्सा लेने के लिए जायरीन की बड़ी तादाद वादी का रुख करती है। अकीदतमंद तुलमुला के मंदिर पहुंचकर माता खीर भवानी मंदिर में खसूसी पूजा मजहबी रसूमात और दुआओं में हिस्सा लेते हैं और तुलमुला के अलावा वादी के कई मजहबी मुकामात में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि कश्मीरी पंडित बिरादरी यहां जम्मू में भी मेले को धूमधाम से मनाती है। यहां जानीपुर इलाके में वाका माता खीर भवानी मंदिर भी इस मेले की याद दिलाता है, लेकिन तुलमुला में वाका इस मंदिर में मेले की खूबसूरती आपसी भाईचारे और प्यार की एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। मेले को लेकर नगरोटा की मेंबर असेंबली देवयानी राणा और रिलीफ कमिश्नर अरविंद कारवानी ने हरी झंडी दिखाकर अकीदतमंदों को रवाना किया। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अकीदतमंदों के लिए सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, तिबी सहूलियात, रिहाइश और दीगर बुनियादी इंतजाम भी किए गए हैं।
1: जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया को ताकीद की है कि वो मेला खीर भवानी में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों के लिए ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजाम करें ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक

0: ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहाँ चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है।
1: वजीर आजम ने वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक रेजिडेंशियल स्कूल का भी दौरा किया। इससे कबल वजीर आजम ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का भी दौरा किया। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इल्म और रूहानियत के अजीम विरसे का ही नौ और भारत की तहजीबी व तमद्दुनी रिवायत को मजबूत बनाना हम सबका बुनियादी मकसद है। एसके आईसीसी श्रीनगर में मुनक्कद श्रीनगर नालंदा डायलॉग्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की मुस्तकबिल शनासी से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शानदार माजी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर नालंदा डायलॉग विकसित भारत के नए नजरिए को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने का एक मुनफरिद मौका फराहम कर रहा है।
2: कश्मीर और नालंदा के ज्ञान के केंद्र और विद्वानों ने मिलकर पूरे विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यताओं को निर्मित किया है और इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भारत की उस महान सभ्यता का उत्तराधिकारी है। यह विरासत हमारे लिए एक प्रकाश पुंज है और श्रीनगर नालंदा डायलॉग के माध्यम से इस प्रकाश को बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का अवसर हमें मिला है। हमें शासन, संस्कृति, विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परंपराओं से जुड़ेंगे, जब भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा।
1: वाज़े रहे कि इस तकरीब का इनेकाद नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, नवा नालंदा महावीरा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने मगरबी बंगाल के यौम तासीस के मौके पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल ने मुल्क की जंग आजादी में कलीदी किरदार अदा किया और साथ ही वहां के लोगों ने अदब, आर्ट, संगीत और साइंस के शोबजात के इर्तका में अहम रोल अदा किया है। सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि सैलाब से बचाव के लिए बुनियादी ढांचे को तकवीत देना सरकार की तरजीहात में शामिल है ताकि लोगों की सलामती के साथ साथ अवामी असासों को कुदरती आफात से बचाया जा सके। वो आज लंसू कोलगाम में फ्लड प्रोटेक्शन बंड का इफ्तिताह कर रही थी। उन्होंने वहां सैलाब से तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए 4,96,00,000 मालियत के दो जामे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। बाद अजां उन्होंने जिले के गुडर इलाके का दौरा करके वहां लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज कॉस्ट कश्मीर में वर्चुअल मोड के जरिए पीएम किसान की 23वीं किस्त वागुजार किए जाने के सिलसिले में मुनक्कद तकरीब में शिरकत की। इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 9,17,000 किसानों के बैंक खातों में अब तक तकरीबन 4,209 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं। इस मौके पर खेत बचाओ अभियान और फार्मर स्कीम गाइड नामी दो किताबचे इजरा किए गए। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज मेंढर पुंछ में एक मीटिंग के दौरान वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो इल्तवा में पड़े मोबाइल टावर साइट्स के मामले को तेज तर बुनियादों पर हल करें। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो यूटी में ऐसे रिहायशी इलाकों की निशानदेही करें जहां अभी तक मोबाइल खिदमत मौसर नहीं की जा सकी हैं ताकि यूटी के तमाम रिहायशी इलाकों को मोबाइल नेटवर्क कवरेज फराहम की जा सके। वो आज स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की 11वीं मीटिंग की सदारत कर रहे थे। 12वां बैनुल अक्वामी योगा डे कल मनाया जा रहा है। इस साल योगा के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस सिलसिले में वजारत कल्चर की तरफ से मुल्क भर के 100 अहम मकामात पर योगा तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुनक्कद होगी। जम्मू कश्मीर में भी योगा के बैनुल अक्वामी दिन के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वादी में सूबाई सतह की सबसे बड़ी तकरीब एसके आईसीसी श्रीनगर में मुनक्कद होगी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर सैयद सकीना इतू के अलावा कई दीगर शख्सियात की शिरकत

सारिमपुर बक्सर से मेल हमें मौसूल हुआ है राज एस डी अंसारी और आसमा खातून की जानिब से। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती और सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म जंगबाज सिनकमा मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गंगा

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। अब पेश है फिल्म जेलर से नगमा, आवाज़ है लता मंगेशकर की और सुनने के ख्वाहिशमंद है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तन्नु करमरकर। आपने हमें पोस्ट कार्ड भेजा है बेरडी से, गाँव करकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोध और तमन्ना कांगड़ा, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सतीश मिगलानी ने मेल भेजा है मलोट कैंप पंजाब से, आपके साथ हैं सीमा मिगलानी, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्या और बाई सुच्चा सिंह पाठक। सुधीर न्यूतन ने मेल भेजा है मॉडल टाउन करनाल से, आपके साथ है किरण ठाकुर, संदीप कुकलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, सुनीता डिल्लो, विनीता वर्मा, नीलू रानी और नरेंद्र तनीजा। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। और अमरपुर छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लुम्बी श्रीवास्तव ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जेलर से नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा निवाद गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने मेल भेजा है। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति और नवनीत, छत्तीसगढ़ बेमित्री से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी ने मेल भेजा है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, श्रद्धा और दामिनी वर्मा। अरायन से डॉक्टर बनियारी जयपाल, बिमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष, दिशा और सुशांत विक्रम। और श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार वर्मा और नरेश कुमार शर्मा ने मेल भेजा है। आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में नगमा, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, सुनिए अपनी पसंद।

आस्तिक बाव, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण बाव और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन राधा, नामदेव, संजय, संदीप, अनिल जैन और दर्शन भाई, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, गंज डुंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानी शेख और अमन आफरीदी, खुर्जा से तिलक राज अरोरा, प्रकाश अरोरा और चंदन अरोरा, जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, स्वरद देशमुख, प्रणाली और कुमारी सानवी ने मेल भेजा है। आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म हमराही से नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनिए अपनी फरमाइश।

0: जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।
1: वादे की आवाज़। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8:30 हुए हैं। समीन, रवा महीने की 26 तारीख मनुष्यात मुखालिफ बैन अलाक़वामी दिन है। इस सिलसिले में पेश है आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा ये खसूसी प्रोग्राम। प्रोग्राम के मेहमान हैं मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर इम्तियाज मंसूर। इनके साथ हम कलाम हैं शेख तजम्मुल अहमद।
1: सभी नादाब शोबे खबर की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शेख तजम्मुल। सभी, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर में मनुष्यात की बिद्दत के हवाले से बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर इम्तियाज मंसूर साहब, जो एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और मकामी सतह के अलावा इन्होंने बैन अलाक़वामी सतह पर भी साइकेट्री के शोबे में बहुत सारा काम किया है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है।
2: शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए।
1: जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा प्रोग्राम जो है आज, इसका मौजू है ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो हमारे सामईन को बताएं कि ये ड्रग एब्यूज क्या है और किस तरह से ये चीजें जो है हमारे समाज के अंदर रोज अफजू बढ़ रही हैं।
2: देखिए, जैसे कि आपने बताया कि ड्रग एब्यूज है, तो नेचुरली हमारा मतलब है ड्रग से। लेकिन अब ये टर्म भी हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये टर्म भी स्टिग्मेटिक है और जो हमारे इसमें जो फंसे हुए हैं बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं, ये वो डेरोगेटरी इनको लगता है। तो हम अपने हिसाब से अब इसको सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं जी। तो ये बहुत देर से हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, तो ये अब एक एपिडेमिक हो गया है, ग्लोबल एपिडेमिक। तो उसी जद में कश्मीर भी आया है और बहुत से यूथ्स जो हैं इधर सेक्स के, मेल और फीमेल दोनों इसका शिकार हो गए हैं। हमारे पास प्रैक्टिस में ये लोग आते हैं जो कि बेचारे फंसे हुए होते हैं और कहते हैं जी हम मौलिक ड्रग्स ले रहे हैं या वो ले रहे हैं, तो हम इसके शिकार हैं। तो इसमें ये मैं कहना चाहता हूं कि बिफोर मैं किसी हार्ड ड्रग की बात करूं, मोस्ट कॉमनली कुछ लोग जो शिकार हुए हैं वो हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आमतौर कभी कभी कोई भी आता है हमारे पास और कोई स्ट्रेस की वजह से उनको कुछ दुश्वारियां होती हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो मेडिकली उनको शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉम्बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं या

0: दवाइयाँ, वो एक एक्सपर्ट उनको देता है और उनको कहता है भैया आप इसको बीच बीच में लीजिए और हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर इसको बंद कर दीजिए ताकि आपका स्लीप पैटर्न ठीक हो। तो उसमें क्या हो गया है कि अनरेगुलेटेड यूज हो गया है।
1: अच्छा, उन्होंने जरूरत से ज्यादा
0: ले लिया। तो उसके मेडिकल रीजंस भी हैं, साइकोलॉजिकल रीजन को कि हम बाद में करेंगे। उसमें ये रीजन है कि इनको नींद आने लगी, इनको आराम आने लगा और स्ट्रेसफुल तनाव सिचुएशन में ये थे, इनको मजा आने लगा, तो इन्होंने ओवर द काउंटर इसको लेने की कोशिश की। मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब ये अनरेगुलेटेड था एडिक्शन। आज तो माशाल्लाह कोई भी आपको केमिस्ट लगभग ये दवाई नहीं देगा अनलेस की प्रिस्क्रिप्शन अपडेटेड होगा। और बहुत जगहों पर मैंने देखा है केमिस्ट लोग तो अपना इसका पिक्चर उठाते हैं और वैलिडेटेड प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है, लेकिन एक वजह ये होगी कि अनरेगुलेटेड दवाइयों की वजह से एक इंसान एडिक्शन की दुनिया में आ चला गया। तो उसमें एक ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और हम एक और चीज जिसको हम कहते हैं गेटवे टू ड्रग्स इज स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग जिसने शुरू की किसी भी रीजन से वो भी एक
1: के नरगे में आ सकता
0: जी
1: है।
0: वो एक कैंडिडेट है, एक प्राइम कैंडिडेट जो कल को ड्रग्स कर सकते। तो बेसिक मुद्दा और मकसद हमारा ये है कि बेटर और बेस्ट है प्रिवेंशन इन चीजों।
1: अच्छा, एक जमाना था हमारे यहाँ वादी में, मतलब अगर किसी को नींद की गोली लेना भी पड़ती थी तो वो कोई मिडिल एज्ड शख्स होता था, बुजुर्ग होता था, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि उसको नींद नहीं आती, फिर डॉक्टर ने एक आध गोली उसको दवा की दे दी। लेकिन आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूल जाते बच्चे हैं हमारे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो भी इस मनुष्यात की बिद्दत का शिकार हो रहे हैं। तो एज ए सीनियर साइकेट्रिस्ट हु डील्स विद दिस काइंड ऑफ इशू, आपको क्या लगता है क्या वजूहत है?
0: देखिए, अब अगर हम इसके एक्चुअली वजूहत देखेंगे तो हम ड्रग एडिक्शन जो है हम इसको एक मेडिकल डिजीज लेते थे, लेकिन अब जो है अब एक और एडिक्शन आ गई है जिसको हम आज की दुनिया में कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन। तो अब जब हम डिजिटल दुनिया में आ गए तो हमारे को दिन और रात का मकसद नहीं रहा। तो जो अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने रात रखी थी नींद के लिए, तो उसमें हम लोग रात को अपना मोबाइल देखते हैं और स्क्रीन टाइम को बढ़ा देते हैं। तो नेचुरली हमारे बॉडी में खुदा ने एक टाइमर रखा हुआ है स्लीप का, ठीक है। वो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, स्लीप सेंटर। तो शाम को उसमें स्लीप हार्मोन निकलता है, उसको मेलाटोनिन कहते हैं, और सुबह होते ही वो खत्म हो जाता है, उससे हमें नींद आती है। और जब हम ये नेचुरल साइकिल को चेंज करेंगे बाय इधर रिमेनिंग अवेक होल नाइट, या स्क्रीन एडिक्शन हो जाएगी या इंटरनेट के साथ रहेंगे, तो ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और हमारा स्लीप वेक साइकिल ही चेंज हो जाता है। जो चीज रात के लिए थी वो अब दिन बन गई है, और जो दिन के लिए होगी वो रात। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे एडोलेसेंट, वो दिन को सोते रहते हैं और रात को जाग जाते हैं बिकॉज दे स्पेंड होल टाइम ऑन इंटरनेट। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इनको नींद नहीं है और ये हमारे पास क्लिनिक्स पे आते हैं। अब यहाँ पे कैच ये है कि एज ए साइकियाट्रिस्ट वी आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद स्लीप इश्यूज, ठीक है। हम देखते हैं कि रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी किसी को नींद नहीं आना ये एक मेडिकल कॉज भी हो सकता है, ड्रग की वजह के बगैर भी। तो हम लोग असेसमेंट करते हैं कि इनको नींद क्यों नहीं है, और सारी असेसमेंट के बाद अगर जरूरी पड़े हम इनको नींद की दवाई देते हैं। नींद की दवाई देना बिल्कुल लीगल है, प्रॉब्लम ये है कि इट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड अ शेड्यूल। तो वो एज एक्सपर्ट हमें पता है कि कितनी देर तक दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं। अगर उसमें कोई मेंटल कंडीशन है पेशेंट्स को, एक जेन्युइन मेंटल कंडीशन, तो उसको बहुत देर तक नींद की दवाई देनी पड़ती है। तो उसमें कुछ नोशन आ गया, कुछ केमिस्ट हजरात उनको भी देना बंद कर देते हैं। तो वो मैं आपको यही अपील करूंगा कि जेन्युइन पेशेंट को देना है और अनजेन्युइन और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वाले को बिल्कुल नहीं देना है।
1: आप चूंकि एक प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट हैं, आप ये बताएं कि इसकी ट्रैफिकिंग के पैटर्न्स क्या, जो आपके पास पेशेंट आते हैं उन्होंने क्या कहानियां ऐसी बताएं कि कैसे वो इस ड्रग की लत में पड़ गए, पैटर्न्स क्या हैं?
0: देखिए, अगर आप एग्जैक्टली ट्रैफिकिंग के बारे में पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे, बिकॉज वो जो पेशेंट होता है ये एक विक्टिम होता है और हमारे पास ये दिक्कत लेके आता है। मेजोरिटी ऑफ जब हम उनको पूछते हैं तो ये बोलते हैं पीयर प्रेशर।
1: अच्छा,
0: तो भैया मेरे दोस्त पी रहे थे तो साहब उन्होंने बोला पियो, मैंने पहले रेजिस्ट किया, फिर साहब उन्होंने कहा फिर आप हमारे ग्रुप में नहीं रहो, या मैं थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियर समझने लग गया। सबने कहा एक बार खाने से कुछ नहीं होता है, मजा आता है। एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया हमें कुछ एग्जाम प्रेशर्स थे जिसकी वजह से हमें जागना पड़ा, तो हमने उस टाइम कुछ देर के लिए ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसी में चले गए। और तीसरा चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट या किसी वजह से हमारे दिन का स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयड हैं, हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, आप यहां मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका एक स्ट्रक्चर है दिन का कि आपको सुबह यह काम करना है, दिन को आपके पास कोई टाइम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसी इमेजिन कीजिए कि एम्प्लॉयमेंट में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे जवान, हमारे बच्चे, दे हैव नो स्ट्रक्चर, तो वो बिल्कुल इजीली इसमें फॉलो आउट करते हैं अपने गम मिटाने के लिए।

0: और जबकि उनको बिल्कुल पता नहीं होती कि अगर हम एक बार ट्राई करेंगे कहीं ये हमें आदत तो नहीं बन जाएगी।
1: 11 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू से 100 रोजा कैंपेन शुरू की, एक मुहिम की शुरुआत की, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। हालांकि इससे पहले भी नशा मुक्त भारत अभियान जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था उसी की एक कड़ी को आगे ले जाते हुए उन्होंने 100 रोजा एक प्रोग्राम मुरतब किया। उसमें जहां बेदारी प्रोग्राम होते हैं मनुष्यात के हवाले से, वहीं जो इस इलिसिट ट्रेड में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जायदादें जब्त करना और गिरफ्तारियां करना NDPS एक्ट के तहत, या फिर कहीं कहीं पर इन्हिदामी कार्रवाइयां, किसी का शॉपिंग कम्प्लेक्स

0: को आगे ले जाते हुए उन्होंने 100 रोजा एक प्रोग्राम मुरतब किया, उसमें जहां बेदारी प्रोग्राम होते हैं मनुष्यात के हवाले से, वहीं जो इस इलिसिट ट्रेड में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जायदादें जब्त करना और गिरफ्तारियां करना NDPS एक्ट के तहत, या फिर कहीं कहीं पर इनहिदामी कार्रवाइयां, किसी का शॉपिंग कम्प्लेक्स गिरा दिया, कहीं पर घर गिरा दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये कितना मुफीद साबित होगी, जो ये ड्रग मेनेस है हमारे इस सोसाइटी में है, तो इसको कर्ब करने?
1: देखिए, अगर हमें ड्रग के ऊपर कॉन्क्योर करना है, अगर हमें एडिक्शन के ऊपर जीतना है, तो ये सिर्फ एक ही लेवल की स्ट्रेटजी नहीं करनी है, मतलब हमने ये सब कर दिया, दिस इज एक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। हमें एज डॉक्टर, अगर हमारे पास विक्टिम आता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे रिहैबिलिटेट करें, कैसे रिकवरी में लाएं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। तो उनको ये मैं यही अपील करता हूं कि वो लोग सामने आए, साइलेंस में सफर करने की जरूरत नहीं है। आज जो है गवर्नमेंट ने, मैं अपने टाइम नोडल ऑफिसर रहा हूं एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में, और एम्स के साथ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ हमने 2012 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किया था, उस टाइम मैं नोडल ऑफिसर था फॉर द कश्मीर। तो आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एडिक्शन सेंटर हैं जहां पे आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं, उसके बगैर रियासत के बाहर भी है, उसके बगैर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनको सामने आना है, इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर NDPS एक्ट जो भी है उसमें अगर कोई बंदा ड्रग कर रहा है और इलाज के लिए आ रहा है तो प्रोबेबली ही इज प्रोटेक्टेड बाय द एक्ट, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिकॉज ही इज कमिंग फॉर ट्रीटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ट्रीटमेंट की दो चीजें हैं जो ट्रीटमेंट की सक्सेस पे बेसिकली है, वो है नंबर वन मोटिवेशन, और नंबर टू जो है कि आपको दोबारा पीयर प्रेशर में नहीं आना है और ये सब नहीं करना है। जो रिलैप्स और रिकवरी फेज है वो आपका स्मूथ होना चाहिए।
0: अच्छा, बच्चों में ड्रग एडिक्शन या आपने कहा कि इंटरनेट एडिक्शन की बात कर रहे थे, अक्सर बेशर हमने देखा है चाहे बच्चे हों या बालिग लोग हों, जब कोई इस लत में पड़ जाता है, अगर उसके घर वाले, रिश्तेदार, माँ बाप उसको डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास या माहिर नफ्सियात के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि मैं तो एक भला आदमी हूँ। और अक्सर बेशतर केसेस हमारी तब तक रिपोर्ट नहीं होते हैं जब तक हालात बहुत बिगड़ गए होते हैं। ऐसे लोगों को जिनके वालदैन हों या घर के बड़े लोग हैं, उनको लगा कि इसकी आदत बदल गई है, उसका उठना बैठना बदल गया है, उसमें थोड़ा सा एग्रेशन आ गया है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि पेरेंट्स को बहुत अवेयर रहना है, उनको समझना है कि ड्रग अब्यूज के साइंस क्या क्या हैं, कॉमन साइंस। तो उसमें जो बच्चा है अगर वो अलग रहे, अलूफ रहे, उसके बाद अगर बॉडी में कुछ साइंस आए, जैसे जो लोग कैनबिस करते हैं, जो अफीम या चर्स करते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं, तो आंखों की तरफ नजर रखनी है, उनमें और बॉडी सिम्टम्स देखते हैं, जैसे ट्रेमर है, हाथ का हिलना है, या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, जैसे कि आपने कहा एंगर आउटबर्स्ट करे, रीजनिंग नहीं। और स्कूल में जो टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उसके ग्रेड और परफॉर्मेंस के बारे में नजर रखेगा, तो नेचुरली जो इसमें चले जाएगा उसके ग्रेड्स और परफॉर्मेंस लो हो जाएंगे, तो वो नजर रखना है, और देखना है कि उसके फ्रेंड्स क्या है, क्योंकि अब रिसर्च में बताया गया है कि पीयर प्रेशर मीन्स सेम ग्रुप ऑफ पीपल, मैं और एक 16 साल का बच्चा पीयर ग्रुप में नहीं आते, सेम ग्रुप के लोग जो होंगे वो कैसे लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एडिक्शन इज थॉट टू बी पीयर प्रेशर, तो वो देखना कि उसके अच्छे दोस्त कौन है, और स्कूल्स में ये सिखाना बच्चों को टू से नो, उसको हम assertive reasoning कहते हैं, कि बच्चे को आप नो बुलाना सिखाइए, कि मैं बच्चे को बोलूंगा आओ बेटा मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, he should say no, he should not tell me I will see, मैं लूंगा, अच्छा कल लूंगा अंकल, आज लूंगा, no, he should simply say no, so that's a assertive reasoning, उस पे ध्यान देना है, और ये साइंस देखने हैं। कभी कभी स्मेल आती है, डिफरेंट ड्रग्स की ऑडोर आती है, वो पेरेंट्स को देखना है, उसके बाद देखना है कि वो स्क्रीन टाइम कितना यूज कर रहे हैं।
0: ऐसा भी होता है कभी कि कोई नौजवान बच्चा स्क्रीन टाइम तो उसका बहुत ज्यादा है, रातों को जागता रहता है, लेकिन अभी तक ड्रग्स की तरफ नहीं गया है, अभी तक सिगरेट नोशी नहीं कर रहा है या कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करने की?
1: देखिए, बायोलॉजिकली अगर डॉक्टर के हिसाब से देखेंगे इम्पैक्ट तो वही हो रहा है ना, एक्सेप्ट दैट इन ड्रग्स ही विल ओवरडोज एंड ही मे डाई, अगर कोई ड्रग लेता है, फिजिकल ड्रग लेता है, ही मे ओवरडोज। इसमें क्या है, ये स्क्रीन एडिक्शन कर रहे हैं, ये बिहेवियर एडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल जो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट इसकी बॉडी पे वो सेम है कि इसको कंपल्सिव होगा, उसके बगैर सो नहीं सकेगा। हमारा जो DSM है उसके कुछ क्राइटेरिया हैं ड्रग एडिक्शन के, उसमें तो बिहेवियर एडिक्शन भी फिट होता है और ड्रग एडिक्शन भी फिट होता है। तो बेस्ट ये

0: है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं। बहुत एडवांस कंट्रीज ने क्या किया, खासकर ऑस्ट्रेलिया ने, बिलो 16 दे हैव बैंड सोशल मीडिया यूज,
1: मोस्ट रिसेंटली इंडोनेशिया।
0: सो गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप टुडे और टुमारो वेयर 16 साल से कम बच्चों को कम से कम सोशल मीडिया बैन करेगी, सो दैट वो बड़े हो जाए। उसका भी बायोलॉजिकल रीजन है, हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता है अच्छा बुरा सोचने में, ये बाय 25-26 ईयर डेवलप होता है।
1: डॉक्टर इम्तियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये एक मौजू ऐसा है जिस पर अगर घंटों बात की जाए तो मेरे ख्याल से कम है। बहरहाल यहाँ घड़ी इशारा कर रही है कि हमें अपने सामईन से इजाजत लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सामईन के सामने अपनी माहिराना राय रखी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सामईन को ये जो माहिराना राय आपने दिया पसंद आई होगी। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
0: थैंक यू, खुदा हाफिज।
1: सभी इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। इस प्रोग्राम के निगरान आला हैं अशफाक अहमद शाह, तरतीब तहजीब कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लॉन, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
2: समय भी आप मनुष्यात मुखालिफ बैन अल-अक़वामी दिन के सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा ये खुसूसी प्रोग्राम समाप्त कर रही थी। प्रोग्राम के मेहमान थे मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर इम्तियाज मंसूर, इनके साथ हम कलाम थे शेख तजम्मुल अहमद। आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।

0: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास

0: ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध

0: उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 78.8 मीटर ते FM 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रात संज 9 बजे समिन वलियो के कशर गजल बोजो आगाज मज बोजो शमीमा देव ने हटे कलामी रसूल मीर।

0: और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क़यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फ़रोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग की खसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राबतों की भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2,500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, CP सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम

0: ना हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आपदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपये के बड़े अखराजात के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज़ किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज़ किया, जिसका मकसद सनत की क़यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए तरबियती मराकज़ और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तश्कील पर ज़ोर देना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निज़ाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
2: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, सीसीटीवी, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। एनटीए ने कहा है कि वो बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मुशाहिदीन, राबता कारों, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ जीपीएस वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। एनटीए भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि आबनाई हुरमुज को फिर से बंद कर दिया।

0: जे एंड के गवर्नमेंट ने अपने इसमें ले लिया। जो ये इंस्टीट्यूट है तो ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, बट इसकी गवर्निंग बॉडी जो है उसमें जो हमारे चेयरमैन हैं वो हमारे बाइज़त कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स रहते हैं, और हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स रहते हैं। और करंटली जो हमारे डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो हमारे डायरेक्टर क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है।
1: मैम, ये जो सीडीए है, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, क्या ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ उसकी वाबस्तगी है? उतना तो हमें पता है
0: जी।
1: तो मैम, इसमें जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्या ये ऑटोनॉमस इदारा है जो सीडीए है, और इसमें जो इश्तराक है वो मींस एक्सक्लूसिवली कश्मीर यूनिवर्सिटी है या कोई कुछ और इदारा?
0: हमारा जो क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, इसका बेसिक मैंडेट जब शुरू हुआ था तो ये था कि एक कैटलिस्ट बने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें हमारे काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें कि हम सैम्पल्स बनाएं, प्रोटोटाइप्स बनाएं। दूसरा है हमारा वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहता है जिसके अंडर जीआई टैगिंग होती है, जिसमें हमारी एक लेबॉरट्री वहाँ है, पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, जहाँ पर जो भी हैंडीक्राफ्ट के जीआई क्राफ्ट्स हैं उनकी सबकी टैगिंग होती है, उन पे जीआई टैग्स लगते हैं। और हमारा कंसल्टेंसी भी रहता है। उसके अलावा एकेडमिक्स इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स, जो हमारा है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आर्टिज़न एम्पावर हो जाए, वो उस गरीबी से बाहर निकले। हम चाहते थे कि उनके लिए एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बनाएं जो उनका काम मार्केट में ले और उनको आगे चलाए। इसके लिए हमने एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो हम एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, वही हमारे लिए सारे एडमिशन वगैरह सब करते हैं। वेन्यू क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रहता है क्योंकि ये एक आर्टिज़न हब में है। आपको पता है कि बागी अली मर्दान खान जो है उसकी सारी सराउंडिंग्स जो हैं वहाँ पे सारे क्राफ्ट्स प्रैक्टिस होते हैं, तो इसीलिए हमने इसी इंस्टीट्यूट में ही इसको वेन्यू रखा रादर देन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी।
1: ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो एकेडमिक्स की बात हुई, अब एमबीए है, कोर्सेज हैं, उसमें तो इंशाल्लाह हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन इससे पहले जो डायमेंशन आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि इस जो आपका इंस्टीट्यूट है इसमें एकेडमिक्स भी है और बियॉन्ड एकेडमिक्स भी है, बहुत बड़ी डायमेंशन है। तो उसमें मैम आपने जी आई टैगिंग की बात की, तो उस जी आई टैगिंग के हवाले से कुछ अगर कुछ और आप तफसीलन बताना चाहें, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बियॉन्ड एकेडमिक्स अभी हो रही हो, हम आपसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसमें बताएं।
0: देखिए क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है दैट्स एन एक्ट बेसिकली, जो कि उस एरिया के लोकल्स को मिलता है। अब हैंडीक्राफ्ट्स जो है जो यहाँ खाली प्रैक्टिस होता है, जैसे पश्मीना है, वो यहाँ के लोग ही प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जीआई टैगिंग का जो अथॉरिटी है वो पश्मीना के आर्टिजन्स को मिलता है। अब हमने क्या किया, हमने एक लेबॉरेटरी बनाई, क्योंकि पश्मीना को चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए मशीन्स होनी चाहिए, उसके लिए माइक्रोस्कोप्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हमने एक बिल्डिंग में रखी जिसको हम पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सेंटर कहते हैं। वहाँ ये सारे चीज़ें, वहाँ पहले टेस्ट होती हैं, उसके बाद इस पे एक टैग लगता है जो हीट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है और टैम्पर नहीं हो सकता है, तो वो उस पे लगता है। और उसके अंदर जो होता है एक क्यूआर कोड होता है जिसको रीड करके वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि शॉल किसने बनाया है, कब बनाया है, कितना टाइम लगा है। तो जब भी ख़रीदार एक वो टैग स्कैन करता है एक सिंपल क्यूआर कोड से, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और साथ में ये भी कि असली है। ऐसा ही बाकी क्राफ्ट्स के साथ, जैसे पेपर मैशे है, वॉलनट वुड है, सोजनी है, कानी है, उन सब में ऐसे ही टैग्स लगते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट पे रहती है, कोई भी क्लाइंट किसी वक्त भी एक्सेस कर सकता है।
1: तो मैम, हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो इदारा है आपका, इसमें एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ये है कि जो क्राफ्ट्स हैं उस हवाले से भी वो डायरेक्ट एक इंटरेक्शन होता है जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते होंगे। ये जो आप प्रोग्राम है यहाँ पे एमबीए, जो हमने सुना हुआ नाम है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमबीए हो रहा है, मेन कैंपस में हो रहा है, जो उनके सेटेलाइट कैंपसेस हैं वहाँ पर एमबीए हो रहा है, और मैम हमें ये भी पता है कि जब वो एमबीए करते हैं वो स्टूडेंट्स, वो बिजनेस में ही चले, ऑब्वियस है, या तो मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, होटल बिजनेस है, और उनका जो इंश्योरेंस है, बैंकिंग के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैम आपके यहाँ जो एमबीए

0: हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोग्राम का है, इट इज वो है कि हम एक एंटरप्रेन्योर बनाएं जो क्राफ्ट इंडस्ट्री को केटर करे. उस लिए उसको एक क्लोज कनेक्शन आर्टिजन के साथ रहना बहुत ज़रूरी रहता है. तो जब हमारा कोर्स है जो MBA है, आपने देखा होगा डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं उनमें फर्स्ट टू सेमेस्टर सेम रहते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है. हमारे कोर्स में भी ऐसा ही है, सेम ही रहता है MBA, बट प्लस हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा रहते हैं. जैसे हमारा क्राफ्ट एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्राफ्ट्समैन जो हैं उनके पास लिया जाता है, उनको वो काम करता देखते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनसे पूछते हैं ये थ्रेड कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया. एक नेटवर्क बन जाता है उनको स्टूडेंट्स के साथ और वो उनकी एक लेवल पे आ जाते हैं ताकि वो समझ सकें कि क्राफ्ट्समैन भी कुछ इश्यूज़ फेस कर रहा है. क्योंकि अगर वो एंटरप्रेन्योर बने, उनका काम खाली पैसा कमाना नहीं है, उनको आर्टिजन को अपलिफ्ट भी करना है, उनको फेयर वेजेस भी देने हैं, उनको एक सोशल स्टेटस देना है. तो इसलिए हम उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्राफ्ट की हिस्ट्री पढ़ाते हैं. और जो ये सब्जेक्ट है, ये तीन सब्जेक्ट्स का एक एमलगम है. कोर जो रहता है मैनेजमेंट रहता है, उसके बाद हम इनमें डिज़ाइन देते हैं, इनको एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स देते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है, कैसे बनता है. दे डोंट हैव टू बी डिज़ाइनर्स, बट उनको डिज़ाइन सीखना होता है कि डिज़ाइन में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. एक बड़े शॉल में भर के जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर हम छोटे छोटे डिज़ाइन डालेंगे उसकी रेट उतर जाएगी, आपका क्लाइंटाइल बढ़ जाएगा. तो वो चीज़ें उनको सिखाई जाती है. और उसके अलावा उनको एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड, स्पेसिफिक टू हैंडीक्राफ्ट, वो सिखाए जाते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिखाए जाते हैं ताकि वो पेटेंट कर सके अपनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं. दूसरा हुआ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का मतलब है हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, मगर हाथ के काम का जो एक अपना वैल्यू होता है वो लूज़ नहीं होना चाहिए. हाथ का काम जो है वो हाथ का काम ही रहना चाहिए. जैसे मशीन की शॉल बनते हैं, हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट. हम टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ करेंगे जैसे कहीं पे हमें मोल्ड्स बनाने होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, हर प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड होना चाहिए. एक जो एक साइज़ का है वही दूसरे साइज़ का भी होना चाहिए. इसलिए हम जो मोल्ड्स हैं वो बनाने सिखाते हैं इनको, लेज़र कटिंग से, इससे, बाकी चीज़ों से, ताकि इनकी स्टैंडर्डाइजेशन हो. मेजरमेंट्स या वॉशिंग जो है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें जो हैं वो उनको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखाते हैं. तो वहाँ पे ये जो है इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो है हमारा MBA का जो कोर्स है क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रहता है.
1: तो मैम, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात हो रही है
0: जी,
1: और हक भी यही है कि कश्मीर की जो एक आइडेंटिटी है ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो इसके हैंडीक्राफ्ट की वजह से ही है
0: जी.
1: चाहे पेपर माशी हो, शॉल हो या बाकी चीज़ें हो. लेकिन मैम, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो एक अलमिया भी है कि जो नई जनरेशन है, जो आर्टिजन्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, शायद वो उतना एनकरेज फील नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को लेने के लिए. तो क्या क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो आपका है कुछ ऐसा है कि वो जो उनके बच्चे हैं, क्योंकि फर्स्ट गो में उनका एक फैमिली एनवायरनमेंट तो है ही,
0: बिल्कुल
1: आर्ट्स के हवाले से
0: बेस्ट, वो सबसे ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हैं इसको.
1: उस हवाले से आपका जो इनिशिएटिव है एज इंस्टीट्यूट, तो उस हवाले से अगर आप कुछ रोशनी डालें.
0: देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट जो है उनकी एक एजुकेशन स्कीम है, जिसमें वो आर्टिजन के जो बच्चे हैं उनको, जो रजिस्टर्ड आर्टिजन होते हैं जिनके पास कार्ड होता है, उनके बच्चों को एजुकेशन स्कॉलरशिप देते हैं. वो हर एक लेवल पे रहता है, स्कूल लेवल पे रहता है, कॉलेज लेवल पे रहता है, मगर जो प्रोफेशनल लेवल पे रहता है, क्योंकि हमारा कोर्स जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल लेवल पे 100% स्कॉलरशिप मिलती है. मतलब वो बच्चा जो वहाँ है उसका जो भी फीस होगा सारा रिफंड उसको वापस होगा एट द एंड ऑफ द कोर्स. जितना भी वो फीस भरेंगे वहाँ पे, वो सारा उनको वापस रिफंड हो जाएगा.
1: तो मैम, जो अब एडमिशन के हवाले से हम बात करेंगे, जो इसका एडमिशन होता है इस कोर्स का, पहले आप ये बताइएगा कि इसकी जो इनटेक कैपेसिटी है इस कोर्स में, जो ये MBA आप करवा रहे हैं, इसमें इनटेक कैपेसिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी ही इसका वो जो एंट्रेंस होता है वही कंडक्ट करते हैं या आपका इदारा अलग से इसके लिए, क्या कुछ है उस बारे में कुछ बताइए.
0: देखिए, हमारा जो कोर्स है इट्स एन MBA जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ही देती है. मैंने जैसे पहले बोला कि हमारा वेन्यू है जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, کشمیر یونیورسٹی ہی اپنے کورسز کے ساتھ ایم بی اے کورسز کے ساتھ اس کا بھی ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہے, ایڈمیشن لنکس اوپن کرتی ہیں اور انٹیک بھی وہی کرتی ہیں, وہی ہمیں پھر ایک لسٹ دیتی ہیں کہ دیز آر دا سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ.

0: हमें आप देखिए इसकी जो है पहले ग्रेजुएशन इज द बेसिक क्वालिफिकेशन विद 55% एज इन एनी एमबीए कोर्स, और दूसरा रहता है कि इसमें सीमैट स्कोर रहना चाहिए. अब सीमैट स्कोर जो है, फिर हमने यूनिवर्सिटी से एक रिक्वेस्ट की कि एज हमारे जो आर्टिजन के बच्चे हैं सारे वेल अवेयर नहीं होते हैं कि सीमैट क्या होता है, कैसे होता है, तो हम उनके लिए अलग से विदाउट सीमैट करना चाहते हैं. उसके लिए करंटली लिंक ओपन है जो 30 जून तक रहेगी, तो अभी वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें खाली ग्रेजुएशन ही क्राइटेरिया रहेगा और यूनिवर्सिटी ही उनका. फिर अगर हमें इनटेक कैपेसिटी हमारी 30 है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गए तो उसका एक शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी का बनाएगी जो हमें देगी, एंड वी विल बी टेकिंग स्टूडेंट्स, हम उनको एडमिशन करके पढ़ाना शुरू कर देंगे.
1: तो मैम आप ये कह रही है कि जो एक लिंक है एडमिशन के हवाले से वो भी एक्टिव है.
0: जी,
1: तो हम आप इस प्रोग्राम की वसादत से अपने सामीन को भी बोलेंगे जो इंटरेस्टेड है इस एमबीए में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, कि वो ऑप्ट कर सकते हैं 30 तक. मैम 30 जून तक. और मैम दूसरा पॉइंट, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों के दिमाग में जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हो सकता है उनका जहन बन जाए कि नहीं जी हम इसी में ऑप्ट करेंगे इस कोर्स में, उनके लिए भी मैं इसकी एक तकरार करता चलूं कि पहले तो जो एंट्रेंस होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, उसका एक सीमैट स्कोर रहेगा. अगर वो जो 30 सीट्स हैं उसी वहाँ पर इतने बच्चे आ गए कि उन्होंने मीन्स से 30-40 स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर सीमैट डिसाइड करेगा.
0: नहीं, ऐसा नहीं क्या है कि सीमैट का पहला एक लिस्ट निकलता है.
1: अच्छा जी, ठीक.
0: फिर हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आगे भी चाहते हैं कि कैंडिडेट्स और आए, तो आप सीमैट हटा दीजिए. तो इसलिए अभी जो लिंक है वो विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम कोई भी अप्लाई कर सकता है. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू आर्टिजन्स के बच्चों के लिए, कोई भी एवरीबडी जो भी है सारे वेलकम है वहाँ पे. वो आके हमसे मिलें, देखें क्या है वहाँ पे, और अप्लाई देमसेल्व्स.
1: और आर्टिजन्स के बच्चों के लिए ये प्लस पॉइंट है कि वो उनके बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं और उनके पास वो कार्ड जो रहता है आर्टिजन कार्ड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का, उनको एक स्कॉलरशिप मिलेगी.
0: exactly.
1: और उसमें वो जितना भी उनका पैसा जाएगा
0: वो सारा
1: वो वापस
0: मिलेगा.
1: उनको मिलेगा रिफंड होके.
0: जी हाँ.
1: ठीक, तो मैम अब कोर्स के हवाले से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, अब जो बच्चे एडमिशन लेते हैं,
0: हाँ जी.
1: अब जो 30 का बैच है, तो उनकी जो एक्टिविटीज रहती है वो एक तो ऑब्वियसली है एकेडमिक डिग्री है तो क्लासेस तो रहते ही रहते होंगे, लेकिन आप इस एमबीए की जो जान है, जो एसेंस है, वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट.
0: हाँ जी.
1: वो बच्चा अगर शॉल हाथ में लेगा कल, तो उसको समझ आना चाहिए कि क्वालिटी क्या है शॉल की, पश्मीना क्या है, बाकी उसके टेस्ट क्या है. उस हवाले से मैम जो कोर्स है, मतलब कितना वेटेज रहता है थियोरी और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं?
0: देखिए, इसमें जो मोस्टली मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रिटन रहते हैं एग्जामिनेशन, क्योंकि वो तो क्लासरूम है सारा. मगर जो डिज़ाइन सब्जेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे इनको फील्ड पे जाके एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर एक वाइवा वॉइस होता है, उस पर हम असिस्ट करते हैं उनको.
1: अच्छा मैम, जो ये पेरेंट्स सुन रहे होंगे प्रोग्राम, या वो बच्चे, माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं आज, और वो अपने कैरियर को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं.
0: जी.
1: तो अगर यूजुअल कोई एमबीए होता तो उनको पता है, दे नो एवरीथिंग, कहाँ उनके स्कोप है. जो मैंने इससे पहले भी एक ज़िमनन हाँ वो जिक्र छिड़ गया था, तो उसको तफसीलन छेड़ना चाहूँगा उस इसी बात को, कि जो ये बच्चा आपके क्राफ्ट सीडीए इंस्टीट्यूट से एमबीए करके निकलता है,
0: हाँ जी,
1: एमबीए है उसके हाथ में, डिग्री है उसके हाथ में, मैम कहाँ जा सकता है, क्या करेगा अब?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले ही बोला, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एक एंटरप्रेन्योर बनाना है. एंटरप्रेन्योर जब बनेगा वो अपने साथ 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे देगा. अब सारे कंफर्टेबल नहीं होते इनिशियली एंटरप्रेन्योर बनने में, वो कहीं ना कहीं पे कुछ एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं. तो हमारे जो मॉडर्न बिजनेस हाउसेस हैं वो प्रेफर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को लेने को, क्योंकि उनके पास पहले से ही नॉलेज है, उनको नया नहीं सिखाना पड़ता है. वो वहाँ पे एज मैनेजर्स काम करते हैं. उसके अलावा हमारे जो हम हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया है टू द गवर्नमेंट कि जो हमारे स्टूडेंट्स एमबीए सीएमई वाले हैं पास आउट करके, उनको एक प्रेफरेंस दी जाए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के जॉब्स में, क्योंकि उनका जो है उनका बैकग्राउंड पहले से हैंडीक्राफ्ट बन चुका होता है. उनको एक प्रपोज उन्होंने तो उन्होंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया है गवर्नमेंट, इसको आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, देखते हैं उसका भी क्या होता है. उम्मीदवार हैं تو وہ بھی ہو جائے تو وہاں پہ بھی ان کے ایک ایونیو بن جائے گا. مگر ابھی جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں کافی

0: जो पास आउट्स हैं दे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एज एंटरप्रेन्योर्स, माशाल्लाह उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है. और जो आप जॉब में हैं, जो इसमें डिज़ाइन स्टूडियोज़ में, नए बिजनेस हाउसेस में, उनमें काम कर रहे हैं, वो भी मैनेजर लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं.
1: माशाल्लाह मैम, आपने दो डायमेंशंस यहाँ की, एक वो जो प्राइवेट सेक्टर में है और एक होप है गवर्नमेंट सेक्टर में, एक होप ही हम कहेंगे, और वो होप बहुत ही मुस्तनद होप इस हवाले से है, क्योंकि हमने भी देखा है जो गवर्नमेंट की तरफ से हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स होते हैं जहाँ पर वो काम सिखाते हैं, क्राफ्ट सिखाते हैं डिफरेंट मोहल्लों में, या वहाँ पर कुछ वो मास्टर कैटेगरी के बंदे आते रहते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो अगर मैंने आपकी बात सही समझी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपके बच्चे वहाँ से निकलते हैं MBA करके, इसमें ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट्स तो हैं, दो साल की डिग्री है, और जो मैनेजमेंट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, दोनों दे नो एवरीथिंग. तो अब आपका इनिशिएटिव ये है कि गवर्नमेंट के पास एक केस प्लीड हो रहा है उस चीज़ को लेके कि आगे की डेट में जब भी पॉसिबल हो गवर्नमेंट इस चीज़ को संजीदगी से ले कि ये बच्चे जो MBA कर रहे हैं, दो साल दे रहे हैं और बहुत कीनली स्टडी कर रहे हैं और एक्सपर्ट होके निकल रहे हैं वहाँ से, तो उनको एक एज मिल जाए, एक प्रेफरेंस मिल जाए उस प्रोसेस में, वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वाइवा वोसी हो, जो भी हो,
0: वो डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे कि कहाँ पे उनको एडजस्ट करती हैं, कर सकते हैं. मोस्टली रिटन एग्जामिनेशन जो होते हैं वो तो सबके लिए कॉमन ही रहेंगे, तो बाकी फिर उसके बाद क्लियर करके अगर उनको मिल सके, अगर है पॉसिबिलिटी, वी आर प्लीडिंग, बाकी तो गवर्नमेंट तक है.
1: अच्छा मैम, एक अहम डायमेंशन है इसमें आपके कोर्स के हवाले से. आज जैसा कि आपने खुद फरमाया था, आप जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट आपका वाकया है CDI, वहाँ वो जो है ही हैंडीक्राफ्ट एरिया, क्योंकि मैं भी श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी पता है कि वहाँ कालीन का काम भी होता है सराउंडिंग एरियाज में, वहाँ पेपर माशी भी है, वहाँ शॉल का काम भी होता है. अब जब मैं वो आर्टिजन्स जो ग्राउंड लेवल के हैं, जो मास मीडिया के साथ भी उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है, तो मैं उनको अवेयर करने के लिए, उनके साथ टच में रहने के लिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनली एक डिग्री लेकर अपने उस क्राफ्ट को आगे बढ़े लाइफ में, उस जो डिस्कनेक्ट है आर्टिजन के बीच में और वो आपका जो डिपार्टमेंट है CD, उसको फुलफिल मतलब फिल करने के लिए, उसको वो जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप फिल करने के लिए कोई इनिशिएटिव हो रहा है आपके हैंड से मैम?
0: देखिए, CDI की तरफ से नहीं, मगर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहते हैं आर्टिजन्स के लिए, एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल्स रहते हैं. उसमें ये सब वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिजन तक ये बात पहुँचे. मगर आपका जैसे यहाँ पे आके, ये जो है ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे फार फ्लंग एरिया से भी लोग आ सकते हैं. इसमें मैं सारे बच्चों को, हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो MBA या आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, वो एक बार हमसे मिलने आ जाए हमारे इंस्टीट्यूट में, वहाँ देखें कि क्या है.
1: यानी मैम आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं जिनको लगता हो कि, और ये भी फैक्ट भी है, क्योंकि अगर मेन कैंपस यूनिवर्सिटी में इदारा वाकया होता तो बच्चों को वैसे ही पता लग जाती हैं चीज़ें. अब ये है कि ये एक पेरिफेरी टाइप तो नहीं कहूँगा मैं, बट स्टिल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से थोड़ा दूर ही है, 4-5 किलोमीटर, तो एक इनिशिएटिव की ज़रूरत है. हाँ, इस प्रोग्राम की वसादत से हम उन सामईन को, उन स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहेंगे कि आप जाए वहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूट है CDI, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, देख लीजिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं. और वैसे भी कश्मीर का जो इफ्तिखार है वो यही है कि यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो जब से वो तहजीब है हमारी, तब से हमारा शॉल है, तब से हमारी और हमारी पहचान ही ग्लोबल लेवल पर यही है. मैम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वो बच्चे जो अब डिग्रियाँ जिन्हें ले ली, और ये भी कि कितने बैचेस हैं जो अभी तक आपके इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से CDI से निकले हैं, और उनके प्लेसमेंट के हवाले से क्या ट्रैक में क्या करते हैं वो बच्चे अभी?
0: देखिए, अभी तक हमारे 8 बैचेस पास आउट हुए हैं. उसमें से हमारी जो पिक्चर है पास आउट स्टूडेंट्स की, माशाल्लाह अच्छी है. देखिए, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिजनेस बैकग्राउंड से ही आए थे, उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को आगे लिया और उसमें नए इनोवेटिव आइडियाज़ डाल के आगे चला है वो. काफ़ी स्टूडेंट्स जो है, मैंने जैसे कहा कि आर्टिज़न के बच्चे भी आए हैं हमारे पास स्कॉलरशिप पे, उन्होंने भी अपने जो आर्टिज़न इनके हैं उससे अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी है इनिशियल स्टेट में,

0: लगाकर चल रहे हैं। और काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फेयर्स सारे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
1: हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो बच्चे हमारे इंटरनेशनल फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे नई जनरेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हैंडीक्राफ्ट के हवाले से।
0: हाँ जी।
1: और यकीनन ये कंट्रीब्यूशन है आपका टुवर्ड्स द सोसाइटी कि आप इन्हें एक ऐसी यंगर जनरेशन को प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेन किया है और उनको आप कश्मीर की जो शान है हमारा हैंडीक्राफ्ट्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अक्रॉस द सीज नेशनल लेवल पर, और ये सारी चीज़ें हो रही है। और मैम जो आप ये कह रहे हैं कि जो, और ये तो बहुत ही खुशायन बात है कि अगर जो आर्टिस्ट्स हैं उनके, जो आर्टिजन्स हैं उनके बच्चे जो हैं उन्होंने खुद इनिशिएटिव्स अब लिए हैं, उनके जो वालिदैन थे वो तो हाथ से बना रहे थे चीज़ें, अब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं वो उसी को प्रमोट कर रहे हैं, वो अब एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं, वो फैमिली जो वो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें वो मार्केटिंग टच मिल गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो यकीनन क्योंकि कश्मीर में तो ये मैम बहुत बड़ी एक सिंफ है जिसके हवाले से बहुत सारे जुड़े हैं लोग इसके साथ, तो ये तो खुशायंद बात है। मैम उन बच्चों के लिए जो इस प्रोग्राम को भी सुन रहे होंगे या वो वालिदैन जो अपने बच्चों को लेके बहुत क्यूरियस रहते हैं, और हक भी है, उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां करें, और खुसूसन वो बच्चे जो MBA के हवाले से बहुत पैशनेट फील करते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, क्या कहेंगे आप उनको वो क्यों इस MBA में आए जो आपके CDA में क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहा है और जो दूसरी जगहों पर MBA हो रहा है उनको कंसिडरेशन में रख सकते हैं लेकिन वो प्रेफरेंस आपके MBA को दे, ऐसा क्या है वहाँ पर मैम, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे?
0: जो MBA CME है ये एक अकेला प्रोग्राम है जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है और ये कहीं ऑफर नहीं होता है सिवाय CDI के, इन एफिलिएशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो इसका जो है लास्ट डेट 30th of June है, तो जो भी अप्लाई करना चाहे वो जल्द से जल्द अप्लाई करें और हमारे पास आए, मिले हमसे, और अगर उनका नाम लिस्ट में आ जाए तो हम उनको अपने वहाँ पे वेलकम करते हैं।
1: और मैम कितनी सीट्स रहती हैं इसकी?
0: इसकी 30 रहती है मैक्सिमम।
1: तो मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से।
0: तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो आएगा उसका हो जाएगा।
1: और मैम इस प्रोग्राम के हवाले से आखिरी में कोई पैगाम उन बच्चों के लिए या उन वालिदैन के लिए जो इस प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं?
0: बस यही है कि जो ये MBA का कोर्स है क्राफ्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारा जो स्टेट है जाना जाता है हैंडीक्राफ्ट के लिए और उसको आगे चलाने के लिए ये MBA बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों को चाहिए कि करें, अगर पैशनेट हैं तो करें, आए जल्द से जल्द आए ताकि सीट्स ना ख़त्म हो जाएं।
1: मैम दिल तो चाहता है कि बातें और हो इस क्राफ्ट के हवाले से, इस जो बच्चों के कैरियर के हवाले से, लेकिन चूंकि दामन वक्त में उतनी गुंजाइश है नहीं, और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपने सामईन से भी और आज की जो एक्सपर्ट थी हमारी मोहतरमा नाजिमा कादरी साहिबा जो क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है और जिन्होंने हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात से नवाजा, और इसी के साथ इस आज का जो शुमारा था पेशरफ्त का अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे।

आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पेशरफ्त। आज के प्रोग्राम का मौजू था डिग्रीज एंड कोर्सेज इन क्राफ्ट डेवलपमेंट। मेहमान थे डॉक्टर नाजिमा कादरी, कोऑर्डिनेटर एमबीए क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। प्रोग्राम के मेज़बान थे तनवीर ताहिर और इस प्रोग्राम के पेशकार हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 78.8 मीटर, एफएम 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट, रात सज ठीक 10 बजे। समिन पेश फरमाइशी कशन बतन हिंद प्रोग्राम, तुहस फरमाइश।

Allah.

0: سمن تُہۍ ہیٚسِو فرمٲیشہِ کٲشرٮ۪ن بٲتن ہُنٛد پروگرام بوزان. تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ٲسۍ پیش کران رشید نظامی. یہ آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن کی آواز ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم ٹو 103.5 میگا ہرٹز پر. شب کے 11 بج رہے ہیں. اب آئیے آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن سماعت کرتے ہیں.
1: نمسکار, آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है. राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है.
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं. इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया. मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं. मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें.
2: यह मोर आंतरिक कामना.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं. उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया.
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है. केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं. जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस आग्रह का अनावरण करेंगे. इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है. 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा. इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग. मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे. रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी. ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी. इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रूपये की आर्थिक

सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
2: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी,
2: तो इस तरह की जो योजना है। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं, अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा, जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
2: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
2: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
2: जाता, अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है, तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
3: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
3: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की

0: मैं बात करता हूँ तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपके लिए है, ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है। हैं क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी कोई जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है

0: 2.2 लाख हो गई है। आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
1: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
0: स्टार्टअप
1: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इस, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट की जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
0: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
1: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
0: बहुत बड़ा समर्थन है।
1: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
0: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट
1: में, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में, 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
0: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
1: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक

0: आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
2: श्री अन्न उसको नाम दिया जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली

0: विकास समग्र होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा? क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी। पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को। तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें, तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया।
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मोर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है।
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है, एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं, वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं भी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो

0: प्रोडक्ट हैं जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे कि जो कैंप लगे थे नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
0: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है।

0: जमा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
1: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
0: सर्जना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
0: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत, अपनी जड़ों से भी जुड़ू, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी है, हो गई।
0: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना।
2: रामसर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो चार स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शब के 11:45 हुए हैं। समय हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लेकर कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर। जय हिंद।

प्रोग्राम का आखिरी गीत पहुंच रहा है आप तक रेशमा की आवाज में, और घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त आ चुका है। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक

0: बंद परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज लगे टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकरों में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने घोषणा की है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing a public gathering at Rajrangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Manjhi. He said the centre's Purvoday vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
3: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai purvi Bharat ke vikas se Bharat ka vikas. इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया।

लेंसडाउन हिल स्टेशन की वो खूबसूरत सुबह थी। पहाड़ों के खूबसूरत आंगन में चारों ओर सूरज की सुनहरी रश्मियां बिखरी हुई थी। हल्के हल्के पवन के झकोरे पेड़ों को झूला झूला रहे थे। होटल के लॉन में बैठी नंदिनी दुनिया से बेखबर किसी गहरे ख्याल में खोई थी। बीच बीच में वो पेन से पेपर पर कुछ लिखती भी जा रही थी। कभी तो उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी के बादल घिराते तो कभी होठों पर मुस्कान खिल जाती। वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को कहानी में बुन रही थी और बीच बीच में गुनगुनाती जा रही थी।

कहानी लिखने में खोई नंदिनी को पता भी नहीं चला कि कब सूरज की सुनहरी रश्मियों को बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया। हवाएं बावरी हो उठी और नंदिनी की कहानी के पन्ने इधर उधर उड़ने लगे। नंदिनी उड़ते पन्नों को समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसी बीच बारिश की नन्ही नन्ही बूंदे आसमान से बरस उठी। नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे कागज के पन्ने नहीं बल्कि उसकी कीमती यादें बिखर रही हों। वो दौड़ दौड़ कर उन उड़ते बिखरे पन्नों को बीन रही थी। तभी अचानक दो हाथ और आगे बढ़े और कागजों को समेटने में नंदिनी की मदद करने लगे। सारे पेपर जब इकट्ठे हो चुके तो नंदिनी ने सुकून की गहरी सांस लेकर उस अजनबी चेहरे की ओर देखा जिसके हाथ उसकी सहायता कर रहे थे। वो नंदिनी की ही हमउम्र एक खूबसूरत महिला थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर उस अजनबी महिला का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू डियर, अगर आज आप ना होती तो मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई होती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है, वो अजनबी महिला बोली। थोड़ी ही देर में वो दोनों महिलाएं होटल के कैफेटेरिया में बैठी कॉफी एंजॉय कर रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कैफेटेरिया में बजती धीमी धीमी गजल नंदिनी की धड़कनों से खेलने लगी।

आपका नाम जान सकती हूँ? उस अजनबी महिला ने पूछा तो नंदनी के ख्यालों की तंद्रा टूटी। जी नंदनी, और तुम्हारा? ओह सॉरी, मेरा मतलब आपका।

0: आपका नहीं तुम्हारा अच्छा लग रहा है आपका इतने अपनेपन से बातें करना। वैसे मेरा नाम आरती है, बहुत प्यारा नाम है। आरती तुम कहाँ से हो?
1: जी दिल्ली से।
0: अरे मैं भी दिल्ली से ही हूँ, यहाँ घूमने आई हो ना?
1: जी नहीं, हस्बैंड के साथ आई हूँ, उन्हें बिजनेस के सिलसिले में इधर आना था तो मैं भी साथ आ गई।
0: और तुम?
1: मैं अपने ख्यालों के साथ, अपनी यादों के साथ आई हूँ। अपनी जिंदगी को पन्ने पर उतारना चाहती थी तो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ भीड़ भाड़ से दूर चली आई, और अब रोज सुबह लॉन में बैठकर यादों के मोती चुनती हूँ और अपनी आत्मकथा में पिरोती हूँ। क्या बात है! एक बात बताऊं, मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है, खास तौर पर किसी की बायोग्राफी। तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी ना?
0: आरती ने बेहद अपनेपन से पूछा तो नंदिनी इनकार ना कर सकी और एक गहरी सांस लेकर बोली,
1: बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है आरती, कल सुबह लॉन में मिलना, तुम्हें सब सुनाऊंगी। अभी ऑफिस के कुछ जरूरी काम करने हैं, कल मिलते हैं। ये कहती हुई नंदिनी अपने रूम की ओर बढ़ गई। आरती उसे जाती हुई देखती रही। जाने क्यों उसे आरती की कहानी से अपनी कहानी जुड़ी हुई महसूस हो रही थी, और वो सोच रही थी कि हमारी जिंदगी के ये बीतते पल, किसी का मिलना बिछड़ना, ये सुबहें ये शामें ये रातें एक कहानी

अगली सुबह होटल के लॉन में बैठी नंदिनी आरती का इंतजार कर रही थी। आरती थोड़ी देर से आई तो नंदिनी ने पूछा, बड़ी देर कर दी आरती? और तभी उसका ध्यान आरती के माथे की ओर गया। और ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ नंदिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा बाथरूम में पैर फिसल गया और ये चोट लग गई। खैर इसे छोड़ो, तुम अपनी कहानी सुनाओ ना। पता है मैं कहानी के इंतजार में रात भर ठीक से सो नहीं पाई, आरती चहकते हुए बोली। नंदिनी अब अपने अतीत के पन्ने पलटने लगी थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। मामा मामी ने नंदिनी को पाल पोस कर बड़ा किया। मामी ने हमेशा ही उसे बोझ समझा और उनका बर्ताव नंदिनी के प्रति हमेशा रूखा ही रहा। लेकिन नंदिनी मामा के स्नेह के सहारे सांसें ले रही थी। अभी वो 19 साल की ही हुई थी कि मामी ने जिद पकड़ ली, उसकी शादी कर दी जाए। मामी ने उसके लिए एक लड़का भी देख लिया जो उनकी ही सहेली का बेटा था, मिलिंद। नंदिनी को अच्छी तरह से याद था वो दिन जब उसने पहली बार मिलिंद को देखा। मिलिंद ने भी पहली ही नजर में नंदिनी को पसंद कर लिया। अपनों के प्यार के लिए तरसती नंदिनी को जब मिलिंद का प्यार मिला तो उसे लगा कि उसे सारी

नंदिनी मिलिंद को प्यार तो करती थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये नंदिनी की किस्मत ही थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका सपना था एक मशहूर लॉयर बनकर पीड़ित और असहाय लोगों को न्याय दिलाना। उसे विश्वास था कि मिलिंद उसे समझेगा और शादी के लिए जल्दी नहीं करेगा। एक शाम जब नंदिनी मिलिंद से मिली तो उसने डरते डरते अपने दिल की बात मिलिंद के सामने रख दी। नंदिनी बोली, मिलिंद मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरा सपना है लॉयर बनना, तुम्हें शादी की जल्दी तो नहीं है ना? ये सुनते ही मिलिंद के चेहरे का रंग बदल गया। वो कठोर अंदाज में बोला, क्यों, पढ़कर क्या करोगी, शादी तो हो रही है ना तुम्हारी, और वैसे भी लड़कियां तो इसीलिए पढ़ती है ना कि उन्हें अच्छा रिश्ता मिल जाए। देखो नंदनी, मेरे पापा का बिजनेस है जो मुझे संभालना है, और तुम्हें घर, अगर मुझसे शादी करनी है तो पढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरे पेरेंट्स को ऐसी बहू चाहिए जो उनकी और मेरी सेवा कर सके और घर की देखभाल कर सके, और वैसे भी नंदिनी वकील बहू कौन चाहेगा? क्यों, नंदिनी ने सवाल किया। एक्चुअली जो वकील लड़कियां होती है ना, वो बात बात पर कानून की धमकी देती हैं, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी पढ़ाई के फेवर में नहीं हूं। लेकिन अगर तुम फिर भी जिद करोगी तो मैं तुमसे यही कहूंगा नंदिनी कि पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसी एक को चुन लो। नंदिनी एक दोराही पर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ाई और प्यार दोनों में से किसे चुने।

अगले दिन नंदनी ने एक फैसला कर लिया था। दरअसल संघर्ष और अकेलेपन ने उसे ये समझ दे दी थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए बहुत सोच समझकर उसने मिलिंद से शादी के लिए इनकार कर दिया। उस दिन घर में खूब हो हल्ला मचा। मामी का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। वो गुस्से में चीख रही थी और मामा से कह रही थी, देखो जी, इस लड़की को दूर कर दो मेरी आंखों के सामने से। बचपन में अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरा घर नाश करने पर तुली है। इतना अच्छा लड़का और घर परिवार देखा था इसके लिए, लेकिन महारानी को पढ़ना है। अब मैं अपनी सहेली को क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं उसे। मेरा तो सम्मान इसने मिट्टी में मिला दिया। अच्छा सिला दिया है इसने हमारी परवरिश का, जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। एहसान मानना तो दूर, अपमान अलग से करवा दिया। चुप हो जाओ सरला, ये बच्ची है अभी, ना समझ है। मामा जी ने मामी को समझाने की कोशिश की। बड़ी आई बच्ची, बच्ची दिखती है ये तुम्हें। ले जाओ अपनी बच्ची को मेरी आंखों के सामने से। इससे कहो ये घर छोड़कर चली जाए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, देख लेना। मामी बोले जा रही थी और मामा जी खामोश खड़े थे। नंदिनी ने मामा जी को आस भरी नजरों से देखा तो मामा जी नजरें चुराकर चुपचाप वहां से चले गए। नंदिनी उस रात सो नहीं पाई, सोचती ही रही। फिर एक फैसला कर उठी, कुछ कपड़े और अपने

और घर से निकल गई। घर से निकलकर वो अपनी एक सहेली के पास पहुंची जो हॉस्टल में रहती थी। नंदिनी वहीं रहकर अपना किनारा तलाशने लगी।

धीरे धीरे दिन रात के पंछी उड़ने लगे और कई बरस बीत गए। नंदिनी की मेहनत रंग लाई और उसने समाज में अपना एक मकाम हासिल कर लिया। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस मकाम पर पहुंचकर भी नंदिनी संतुष्ट नहीं थी। इन गुजरे दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था जब नंदिनी को मिलिंद की याद ना आई हो। वो मिलिंद और उसके प्यार को नहीं भुला पाई थी। अक्सर जब उसे अकेलापन सताता तो उसे लगता शायद उसने गलत फैसला ले लिया था। जब भी किसी कपल को हाथों में हाथ डाले घूमते देखती तो उसके दिल में एक हूक सी उठती और वो सोचती कि काश मिलिंद की बात मानकर वो उससे शादी कर लेती तो आज वो भी इन्हीं की तरह सुखी होती, उसकी जिंदगी में भी प्यार होता, किसी का सहारा होता जिसके लिए वो बचपन से तरस रही है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी मिलिंद के प्यार की तलब और उसकी यादों का साया नंदिनी के जहनो दिल पर फैलता जा रहा था।

अब आरती चुप ना रह सकी और बोली, नंदिनी तुमने जो भी फैसला किया था बहुत अच्छा किया था। एक बार मैं भी तुम्हारी तरह ही दो राहें पर खड़ी थी और मुझे भी शादी और करियर में से किसी एक को चुनना था, लेकिन मैंने शादी को चुना और आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा पछता रही हूं। ये मेरे माथे की चोट देख रही हो जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे पूछा था? ये बाथरूम में गिरने की वजह से नहीं आई, ये मेरे पति ने मुझे दी है, क्योंकि कल सुबह मैं तुमसे बात करने में बिजी हो गई थी और उनके कुछ जरूरी काम करना भूल गई थी। ऐसी ना जाने कितनी चोटें मेरे तन और मन पर लगी हैं नंदिनी, जिसे मैं किसी को नहीं दिखा सकती। आज मैं अपनी पहचान ढूंढती हूं जो मुझे कहीं नहीं मिलती। मेरा बस एक ही काम रह गया है, पति की सेवा करना, उन्हें खुश रखना और बदले में जिल्लत सहना। एक एक पैसे के लिए उनका मुंह देखती हूं। मेरी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरा अपना कोई फैसला भी नहीं है। हर बात के लिए बस उन पर निर्भर होकर रह गई हूं। हालांकि ऐसा सभी महिलाओं के साथ नहीं होता, कुछ की जिंदगी बहुत बेहतर भी होती है। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है नंदिनी, तुम जिसे खोकर पछता रही हो ना, मैं उसे पाकर पछता रही हूं। बोलते बोलते आरती थोड़ी रुकी, एक गहरी सांस लेकर फिर बोली, माना कि तुम अकेली हो नंदिनी, लेकिन स्वतंत्र हो। तुम्हारी अपनी एक पहचान है, अपने फैसले खुद करती हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और जहां तक खुश रहने का सवाल है ना नंदिनी, तो खुशियां किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। जिंदगी को देखने का नजरिया बदलो, खुशी तुम्हारे साथ ही है। खुश रहने के हजार तरीके हैं और हाँ, जिंदगी अभी बाकी है। और तुमने वो गीत सुना है, जिंदगी प्यार का गीत है।

अपना अफसाना सुनाते सुनाते नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चुपचाप सुनती आरती के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। आखिर में नंदिनी बोली, आरती मैं ना बहुत पछता रही हूं, काश कि मिलिंद एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं, मैं उसे मनाऊं कि वो मेरे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करे। काश कि एक बार, बस एक बार मेरा मिलिंद मुझे मिल जाए। नंदिनी को सुनते सुनते

जिंदगी अपने आप में प्यार का ही गीत है नंदनी, इसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। आरती अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी और वो किसी अनजाने डर से अपने रूम की ओर भागी। आरती चली गई तो नंदनी ने देखा कि आरती अपना पर्स वहीं भूल गई है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती नहीं लौटी तो नंदनी उसका पर्स लेने उसके रूम की ओर बढ़ी। नंदनी जैसे ही आरती के रूम के बाहर पहुंची तो उसने सुना कि भीतर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं। ना चाहते हुए भी नंदनी ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया। दरवाजा खुला तो जो शख्स सामने खड़ा था उसे देखकर नंदनी के होश उड़ गए। जी हाँ, नंदनी के सामने मिलिंद खड़ा था और आरती फर्श पर गिरी हुई थी। नंदनी आरती के पास पहुंची, उसे संभाला और अपने पर्स से विजिटिंग कार्ड निकाला। आरती को देते हुए बोली, आरती ये रहा मेरा पता, एडवोकेट दुर्गेश नंदनी। अगर तुम्हें कोई कानूनी सलाह चाहिए तो मुझे कॉल करना, और हाँ जब भी जरूरत हो बिना बताए मेरे घर चले आना। इतना कहते हुए नंदनी वापस मुड़ी और एक तीखी नजर मिलिंद पर डाली जो चेहरे पर संकोच का भाव लिए खड़ा था। नंदनी तेज तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ गई, अपना सामान पैक किया और वापस मुड़ चली दिल्ली की ओर। एक दिन नंदिनी फिर अपनी कहानी को मुकम्मल कर रही थी, लेकिन अब उसका नायक मिलिंद नहीं, वो खुद अपनी कहानी की नायिका थी, जिसमें नए सिरे से जीने की तमन्ना हिलोरे ले रही थी।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी, जिंदगी अभी बाकी है। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक

0: मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरूआत करेंगे, जहां वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

आरती फिल्म का गाना आपने सुना? रफी और लता की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इस रात पुरानी यादों की तरह कुछ पुराने गीत साथ हैं। उनकी मधुर धुनें हवा में खुलकर मन के बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोल देती हैं। हर गीत अपने साथ कोई भोली बिसरी कहानी, कोई मीठा एहसास और किसी अपने की याद ले आता है। ऐसी रातों में लगता है जैसे समय ठहर गया हो और सुरों की छाओं में मन को एक अनकही शांति मिल गई हो। पुराने गीत केवल संगीत नहीं होते, वो बीते हुए खूबसूरत लम्हों के हमसफर बन जाते हैं।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिसे तू कबूल कर ले वो दुआ कहां से लाऊं। ये एक ऐसी भावना है जिससे प्रेम, समर्पण और बेबसी एक साथ छलकते हैं। मन चाहता है कि कोई ऐसी प्रार्थना मिल जाए जो सीधे उस प्रिय के दिल तक पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो हर दूरी और हर संकोच को मिटा दे। लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ चाहते इतनी अनमोल होती हैं कि उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। प्रेम जब बहुत गहरा हो जाता है तब उसकी खो जाने का भय मन में कहीं घर कर लेता है। दिल जानता है कि ये रिश्ता विश्वास और अपनेपन से बना है। फिर भी कभी कभी भविष्य की अनिश्चितताएं मन को बेचैन कर देती हैं। शायद यही प्रेम की खूबसूरती है।

सूरज फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। इसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं बल्कि उस खुशी का उत्सव है जो किसी प्रिय के आने से दिल में खिल उठती है। जैसे सूनी राहों पर अचानक बहार उतर आए, जैसे मौसम में रंग और खुशबू घुल जाए, प्रिय की एक झलक से मन का हर कोना जगमगा उठता है और लगता है मानो प्रकृति भी उसके स्वागत में फूल बिछाने की तैयारी कर रही हो।

बहारों के सपने फिल्म से आपने गाना सुना लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।

अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:37 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

औकात दिल में एक नया एहसास छोड़ जाती है और कब अपनापन मोहब्बत में बदल जाता है इसका पता भी नहीं चलता। प्रेम अक्सर शोर से नहीं बल्कि ऐसे ही शांत और अनकहे पलों में जन्म लेता है, जब किसी का साथ आदत बन जाए और उसकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगे।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, ये दिल की उस मासूम बेबसी का इजहार है, जब किसी की मुस्कान, बातों या अदाओं का असर अचानक ही मन पर होने लगता है। दिल तो भावनाओं का घर है, वो कब किसकी ओर खिंच जाए, कब किसी की यादों में खो जाए, इसका हिसाब कहाँ रखता है।

ये रात फिर ना आएगी फिल्म से आपने गाना सुना रफी और आशा की आवाज में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जुदाई के पल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जी हाँ, हमारी आस जुदाई के पल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। जब कोई अपना विदा होता है तो दिल अगली मुलाकात की आस में एक छोटा सा वादा मांग लेता है। ये वादा सिर्फ मिलने का नहीं बल्कि यादों, अपनत्व और रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखने का होता है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म से ये आपने गाना सुना, रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 56 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। समाचारों के बाद रात सुरमई मेरे यानी राखी के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।

0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में चल रहा है। नीदरलैंड स्वीडन के खिलाफ 4-1 से आगे है। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती पर 3-0 की आसान जीत के साथ फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि विनीसियस जूनियर ने 3रा गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi said tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing the public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi. On the occasion, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Paschim Banga Diwas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. The 12th International Day of Yoga will be

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। ये रात सुरमई है, आसमान पर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है, तारे खामोशी से टिमटिमा रहे हैं और हवाओं में एक मधुर सी नमी खोली हुई है। ऐसी रात में दिल अचानक ही पुराने गीतों की दुनिया में खो जाता है। हर धुन कोई याद जगाती है, हर शब्द किसी अनकहे एहसास को छू जाता है। लगता है जैसे रात अपने आंचल में मोहब्बत, इंतजार और मीठी यादों की अनगिनत कहानियां समेटे बैठी हो। ये रात सुरमई है और दिल गुनगुना रहा है।

यादों की बारात फिल्म से आपने गाना सुना आशा और रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अब उसे वापस मांगने का मन ही नहीं करता। कुछ चोरियां ऐसी होती हैं जो शिकायत नहीं मुस्कान दे जाती हैं। दिल जब किसी का हो जाए तो उसकी हर धड़कन में उसी का नाम गूंजने लगता है।

शक्ति फिल्म का गाना आपने सुना लता और किशोर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी मोहब्बत दस्तक देकर नहीं आती, वो चुपचाप दिल में उतर जाती है। न कोई तय लम्हा याद रहता है, न कोई खास वजह, बस किसी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी मौजूदगी सुकून देने लगती है और देखते ही देखते दिल उससे ऐसा जुड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कब एक साधारण सी मुलाकात प्यार के इकरार में बदल गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के

बद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

वक्त हुआ है 2:32 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना, कंचन, मनहर और आनंद की आवाज में इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि तुम्हारी मुस्कान से दिन रोशन हो जाए और तुम्हारी याद से शाम महक उठे। ये चाहत किसी शोर की मोहताज नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों में बसी एक खामोश दुआ की तरह है।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना मनहर की आवाज में। इंदेवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप हैं राखी के साथ और प्रोग्राम है रात सुरमई।

एक दूजे के लिए फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:52, वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही इंदु पांडे के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

साहिब फिल्म का गाना आपने सुना, बप्पी लाहिड़ी और एस जानकी की आवाज में। संगीत भी इसमें बप्पी लाहिड़ी ने ही दिया है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण

0: करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:10 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। जब मन थक कर बैठ जाए कहीं, वो हौसलों की बात सुनाए सिर्फ और सिर्फ यहीं। सच यही है कि हर किसी को एक सच्चे हमराही की तलाश है, तो हाजिर है बंदा।

कभी सोचा है कि हम सब कहानियां सुनने के इतने शौकीन क्यों होते हैं? वैसे ये बात तो सच है कि हम सब एक चलती फिरती कहानी है, या यूं कहें कि एक उपन्यास का एक छोटा सा टुकड़ा बस बात करने की देरी है। तो कहानियां हम कई बार लिखते हैं, कहानियां हम कई बार कहते हैं, और कहानी कहते लिखते कई बार हम खुद कहानी हो जाते हैं। पर ये सच है कि हम सब कुछ न कुछ किसी न किसी से कहना चाहते हैं, और चलती फिरती कहानी कभी दूसरों के लिए कुछ लेकर के आती है, और कभी हम अपनी कहानी से खुद ही बहुत सारी और कहानी जोड़ के यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये है हमराही, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और हमराही है हम आपके साथ।

चलो ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन रात का समय है, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बाहर। लेकिन इस खूबसूरत रात में एक कमी महसूस होती है कभी कभी, और वो है तुम्हारी कमी। हर तारा जैसे उसका नाम लिखता हो, हर खामोश आवाज आती हो, कभी साथ बैठकर जो सपने हमने देखे थे आज वही यादें रात भर जगाती हैं। और कुछ ऐसे सीन या कोई ऐसी चीज है जो हमेशा हमें याद आती है। हमराही, तुम्हारी याद आज भी उतनी ही खास है जितनी तब थी।

बहुत सारी ऐसी अनसुनी बातें, बहुत सारी खामोशियां जो हमें लगता है कि बहुत कुछ कह रही हैं, और उन्हीं में से एक है कुछ यादें, बड़ी अजीब सी, जो दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी बड़ा गहरा असर रखती हैं सब कुछ। कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान लाती हैं तो कुछ आंखें नम कर जाती हैं। कभी किसी की हंसी याद आती है तो कभी किसी की बातें। शायद वो पल कभी दोबारा लौट के तो नहीं आएगा। समय आगे बढ़ता जाता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ तो है जो वहीं का वहीं ठहरा रहता है। शायद वो यात्रा, शायद वो पल जब लगता था कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, चांद के उस पार भी बड़े आराम से जा सकते हैं।

चलो। अगर तैयार हैं तो फिर आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ हमराही में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। अगर हम बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों की उम्र कैलेंडर से तो नापी नहीं जाती, वो तो उन बातों से बनती है जो कभी कही नहीं गई, अनकही बातों की एक लड़ी बनती है। और जब मोहब्बत थक जाती है तब हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो एक नई कहानी बन जाती है। दो लोग एक घर में तो रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों में, खामोशी तब बोलने लगती है, एक ठहराव, एक अधूरापन, एक सवाल जिसे हम हमेशा खोजा करते हैं रिश्तों की धूल भरी अलमारी में।

खो कह जाता है। ये सब चीजें कभी कभी जादू लगती है या फिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ वर्कआउट हमको करना चाहिए था, है ना।

और जो ये शुरुआत हुई उसके बाद की कहानी कई बार हम यूं ही कह सकते हैं कि पहले मैं थी, फिर हम हुए और उसके बाद हम किसी तीसरे को ढूंढने लगते हैं। और ये लगता है कि कोई तीसरा आएगा तो शायद हमारी कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही होगी जैसी कि हमने सोचा था, लेकिन हमारी सोच और सच्चाई दोनों काफ़ी अलग हो जाते हैं, बहुत अलग। कुछ घर बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसमें रहने वालों के हिस्से में आसमान थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। कई सारे घर में दीवारें, साजो सामान, सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर रिश्तों की आहट की बात करें तो वो कभी कभी ढूंढना पड़ता है। कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कब है, कई सारे सवाल हमारे पास।

चलो हमने साजे दिल छेड़ भी दिया, चलो ये माना कि इस रात की तन्हाई में तुम्हें याद भी कर लिया, चलो ये भी माना कि जो मैंने ना ना ना कहा था वो सब शायद थोड़ा और जोर से तुम पूछते तो वो हाँ भी हो सकता था, लेकिन जो समय है उसकी बात ही निराली होती है, क्योंकि जब तो फिर उसके पीछे बहुत सारी और कहानियां याद आ जाती हैं, और शायद हमरा ही होने का जो एक हमें एहसास होता है वो भी शायद लगने लगता है, है ना। आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हमरा ही है ये।

कई बार तो यूं भी लगता है कि जिंदगी की इतनी भाग दौड़ में अगर कुछ याद आ गया, कुछ याद रह गया, कुछ याद बार बार आता जा रहा है, तो शायद ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि एक कोना तो है जो सिर्फ हमारे लिए है, और वो याद जैसे कि कभी चाय के कप से उठती हुई भाप हो, जैसे कि कभी किसी पुराने गीत की धुन हो, या फिर किसी रात की खामोशी हो, वो सब कुछ याद आता है। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ भुला देता है, लेकिन कुछ रिश्ते भूलने के लिए नहीं होते, उन्हें बस दिल के एक कोने में संभाल कर रखा जाता है। आज भी जब हम चांद को देखते हैं तो यकीन बताइएगा कि बहुत सारी कहानियां याद नहीं आती कि हाँ, ये चांद जहां आज हमें दिख रहा है, किसी के आसमान में कहीं और भी तो नजर आ रहा होगा, और लगता होगा कि शायद किसी को हमारी याद भी आ जाए, क्योंकि जो दिल के तार हैं वो अगर कोई छेड़ गया है तो फिर उसको हम कैसे गुनगुनाएंगे।

0: अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। दिल का क्या कीजिए हुजूर, वो अपना होकर भी कई बार अपना नहीं रहता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है हमराही। मैं हूँ आपके साथ वही जिसको आप हमराही कहते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर कहते तो यही है कि अकेले तो तय नहीं किया जा सकता, हमराही की जरूरत पड़ती है। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:48 और ठीक 50 सेकेंड।

अजंता, उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था,

0: कुछ न रहा।
1: और वो टूटन, और वो ऐसी आवाज उस टूटन की शायद हमेशा हमारे साथ रहती है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हमराही आपके साथ है। हमराही वो नहीं जो सिर्फ साथ चले, बल्कि वो है जो खामोशी को समझे, थकान में हौसला बने और मुश्किल रास्तों में उम्मीद दे। लेकिन हर किसी का हमराही हमेशा ऐसा ही एहसास दिलाए, ये भी तो नहीं हो सकता। कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलकर पूरी जिंदगी की याद बन जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं लेकिन फिर भी याद में शायद वो उतने शामिल नहीं रह पाते जितने की होनी चाहिए। इसलिए हमराही बहुत जरूरी है। हमें प्यार, अपनापन, भरोसा और बिछड़ने के बाद भी यादों की अहमियत सिखा जाता है। पर हम बार बार यही कहते हैं अपने आप से कि पीछे मुड़ मुड़ के ना देखो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई एक ऐसा पल जरूर होता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं।

है तुमसे ही काम, अरे होए तुमसे ही जुल्फों की शाम।

थी आग में पलते, अरे होए रोशनी करते हो जलते, अरे जो

गली गली लिए तेरा प्यार अड़ है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली लिए तेरा प्यार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वज वाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड हैं। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित BMO फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में खेला गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लो भाई, साथ चलते चलते सुबह हो गई, 4:10 और ठीक 58 सेकंड हो गए, और ये पल बड़ा स्पेशल हो जाता है, बहुत ही खास, क्योंकि अचानक से ऐसे लगता है कि नींद खुल गई, सुबह हो गई और शायद हम सच के आईने के सामने खड़े हैं। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

हर बात में जिक्र हो जिसका, उसे ही मौसम कहते हैं। और जब मौसम को इशारों से बुलाने की बात हो, ये भला कैसे मुमकिन है। पर ये जरूर है कि हम इशारों इशारों में मौसम की बात करते करते बहुत कुछ सुन लेते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। ये है अरुणिमा। सुबह के 4:16 और ठीक 30 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

लो फिर आपने बुलाया, हम आ गए आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, लेकर के आए हैं हम आपके लिए अरुणिमा। और जहां तक बात है इस सौदे की, तो सौदा कुछ बातों का तो होता ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमें अपने प्रयास से मिलती हैं और कुछ चीजें हमें बस ऊपर वाला दे देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और बिना कोई वादा किए चले भी जाते हैं, न कोई शर्त है, न कोई हिसाब किताब है, है तो सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है जो हर दूरी हर खामोशी के बाद भी वैसा ही रहता है, जो हर वक्त पास रहे ये जरूरी नहीं उसकी याद भी हमारे साथ रहे। लेकिन सौदे की जब बात आती है तो कुछ बातों का सौदा हो ही नहीं सकता। कुछ रिश्ते तो बस दिल से निभाए जाते हैं, चाहे लोग साथ रहें या फिर ना रहें, उनकी अहमियत कभी भी कम नहीं होती है। है ना, आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी कभी तो ये ख्याल आता ही होगा दिमाग में।

हाँ वो एक तारा जो सबसे चमकीला है, हाँ वो एक तारा जो हमें सबसे ज्यादा अपने पास लगता है। ऐसा लगता है कि शायद हम उस तारे को हाथ बढ़ा करके तोड़ तो नहीं लेंगे, या फिर कम से कम छू तो लेंगे ही। हाँ हाँ वही वही एक तारा जो हमेशा हमारी नजर में बना रहता है।

क्या कहेंगे आप उसे। कुछ चीजें, कुछ बातें हमें सिर्फ अच्छी लगती हैं, समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन उन्हें समझ के या फिर उन्हें महसूस करके अच्छी फीलिंग आती है और लगता है कि इतना काफी है। आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे अरुणिमा है ये।

और उस सुनहरी शाम की याद अभी तक है, है ना। और जब हमारा वो जो जिसको कहते हैं ना, हमने अपने एक आशिया बनाया है, आशिया बनाते हैं, उसमें हम बसते हैं और उसके बाद फिर बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं। कई बार लगता है कि इतने सारे मेहमानों में कहीं जिंदगी रह तो नहीं गई, और उसके बाद फिर हम जिंदगी को बुलाना शुरू करते हैं कि जिंदगी तुम मेरे घर आओ, खुशी तुम मेरे घर आओ और समय तुम भी मेरे घर आओ। और कुछ चीजें जिसका इंतजार हमेशा हम करते रहते हैं, और जो आवाजें हैं वो ठीक इस गाने की तरह होती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मौसम की सरगम शुरू हो गई, इसे कहते हैं कि रात खत्म हो गई। चांद धीरे धीरे ओझल हो गया, तारों ने अपनी महफिल समेट ली। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण ने एक नया संदेश दिया है कि भाई उठो, सुबह हो गई। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे अरुणिमा। और जहां तक रही बात की, तो भाई बात तो जब निकलेगी तो फिर सुबह तो क्या काफी दूर तलक जाएगी।

न जाने कितने लोगों ने अपने अलार्म को फिर से बंद कर दिया होगा, न जाने कितने लोगों की नींद खुल गई होगी ये देखने के लिए कि भाई अभी तक अलार्म बजा क्यों नहीं। रात खत्म हो गई, सुबह हो गई, लेकिन अब भी हम आखिर क्यों ऐसे थोड़े से अनमने से हैं, थोड़े से अटपटे से हैं और थोड़े जागे थोड़े सोए से हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें यही एहसास दिलाती हैं कि हाँ हम हैं, हम हैं कि चलो उठो, हम हैं कि चलो फिर से शुरू हो जाओ एक नई उम्मीद के साथ, एक नए वादे के साथ और एक नए दिन के साथ। हम हैं तभी तो इस बात का विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। हम हैं इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। ये है अरुणिमा, हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:47 और ठीक 20 सेकंड।

न जाने क्या ऐसा है अंधेरे में और न जाने क्या ऐसा है उस अंधेरे को चीर कर आती हुई रोशनी में कि अपने आप हर चीज एक नई उम्मीद के साथ बहने लगती है, हर बात कुछ अलग सी लगने लगती है और कैसी भी रात जाए जो दिन आता है वो नया सा लगने लगता है। इसे कहते हैं नेचर का जादू और ये जादू हम सब के साथ चलता है और हर दिन का हम इसी तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं।

संभालिए क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बहुत खास है। आज का दिन अगर आप किताबों में जाएंगे, अगर आप पढ़ के देखना चाहेंगे तो भी आपको लगेगा कि कुछ तो स्पेशल है, नहीं तो फिर मैं हूं ना आपको बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। और कोई दिन कैसे खास बनता है उसकी कई सारी हमारे पास उसके आइडियाज होते रहते हैं, और आज का दिन खास है सुबह जल्दी उठने के लिए। कभी कभी संडे थोड़ा अलग हो जाता है, कभी कभी संडे कहता है कि आराम करो, लेकिन आज संडे कहता है नहीं, उठो चलो कहीं चलते हैं योग करने के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर आयोजित सामूहिक योग सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम ठीक इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे से 7:50 बजे तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसी ने कहा कि वो परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे।

0: वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत आ रहे हैं। इनमें 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड पर 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से बेतुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था की अनिश्चितताओं के बीच मजबूत तैयारी बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और संस्थागत नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार पद्मश्री पी नारायण कुरूप का कल रात केरलम में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरलम और माहे में मंगलवार तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The 12th International Day of Yoga, IDY 2026, is being celebrated today with the theme Yoga for Healthy Aging. The main event is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi is leading the nation in the practice of the common yoga protocol. We have a report.
2: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 a.m. at Garrison Ground in Sadar. After the Yoga Day event, the president will reach Rani Durgavati University, where she will attend the university's 36th convocation ceremony as the chief guest. Empowerment will organize a special Yoga Day celebration at Bharat Mandapam in New Delhi today. As part of the nationwide celebrations of the 12th International Day of Yoga, IDY 2026, the event is expected to bring together nearly 1,500 senior citizens. The celebration is being organized in alignment with the national theme of the day, Yoga for Healthy Aging. Meanwhile, in view of the celebrations of International Day of Yoga in the national capital, Delhi Metro services has commenced at 4 a.m. today from its originating stations. The Delhi Metro Rail Corporation said that the train services will be available at an interval of 30 minutes till 6 a.m. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in

दिन है सुहाना मस्ताना, ये तो मैंने गानों के द्वारा आपको बता दिया, लेकिन इस दिन की खासियत बहुत सारी है। ये माना कि आज है संडे और आपको उठना था थोड़ा लेट, लेकिन कभी कभी संडे थोड़े अलग रूप में आता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि 21 जून केवल साल का लंबा, सबसे लंबा दिन नहीं होता, बल्कि इस दिन के और भी कई सारे इम्पोर्टेंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो हम आपको यही कहेंगे कि इस शो में हम भोर सुहानी में आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये दिन आज आपका बहुत ही खास बीतने वाला है, ये हमें पक्की तरह से पता है। बस थोड़ी सी आपको, जिसको कहना चाहिए ना कि मेहनत नहीं, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ नहीं।

गीत प्यार का आप गा सकते हैं। जी हाँ, गीत प्यार का आप गा सकते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज ये सबसे लंबा दिन माना जाता है, बल्कि सूर्य की जो विशेष ऊर्जा और प्रकृति के बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये दिन हम कहेंगे कि आत्मविश्वास से भरपूर है, पॉजिटिविटी इसके अंदर भरी हुई है और स्पिरिचुअली भी ये बहुत उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम सब अपने जीवन में एक नई प्रेरणा और संतुलन हो सकता है महसूस करें अगर हम योग करें। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल।